This is the

एक नहीं आश की दूजा लग जाए, रार के आश कांडी है सभी रे समाए, चंगे चंगा धर्म ले मंदर मंदाओ, आश के नाया किये जिले खे वक्त सोई महला दूजा, साम जो आप गोले करे मुंडा कुथा जाए, नान के दोले कुडिया Thank you.

0: साथ आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिसमें लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जी होए सो गुए मुँह का कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो इन्हें आओ नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्मा चले कहीं बने अरदास पूर कमाए पूरो होए नानक सिफ्त विकास।

एक नहीं दात आपसे जो पाई है नारक साकर्मा साहेब तुठे जो मिले महला दूजा एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए ना सेवक कंडिया

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज से तैखा सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुधी सकंदा आयो असो प्रोग्राम जो आगाज ही चुको है तफसील को जिम्मे तरह थोड़ी देर में अवाम भगत कौराम जन जो सदाबार आवाज हूं तेखा पोए एक तकरीर पेश कई उन्वान है असो लोक विरसो तकरीरकार जनाब ढोलन राय उन्हीं कुछ हब वतनी गीत पेश क्या वा यहां तक असि प्रोग्राम की तफसील ये आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है हिंदर चो भगत कौराम जन जो सदाबार आवाज बुदूँ।

0: अमन भगत कौरम जंजो सदाबर आवाज बुधरे ये आकाशवाणी की सिंधी सरिसा है हेर पेश है एक तकरीर ओमान है असान जो लोक वरसो तकरीकार जनाब ढोनल राही
1: हर कौम तारीखी सिलसिले की एक अहम कड़ी है समय के समुंड में लहरों पुठियां लहरों इंदी रहन थी उनकी गहराई में लोक वरसे जा अणमया अणमुलाहता मोती मिलंदा रहन था सजन खां सचन गवासन उन्हीं तुझी दे मानायता मोती नेड़े इंसान जात के सूखड़े तौर पे दिना है शाह लतीफ के लफ्जन में ये गत गवासन जो संत सोझाऊं तेजी मंज पातार जे मोती नेड़ियाऊं आने दिनाऊं हीरा लाल हथन से लोक वर्षे जो यो अमल खजानो हर जातिय के पीढ़ी दर पीढ़ी पड़पंदो रहे है लोक वर्षे की मुराद के समझण लाए पहले लोक लफ्ज की माना वाजे करण जरूरी है लोक संस्कृत लफ्ज है जैसी माना है मानू सिंधी में लोक लफ्ज कुशा की माना में कतब अचे थो सिंधी में लोक की माना है अवाम यानी आम मानू लोक वर्षे से मुराद है सभ्यता ए संस्कृति जो उहो वर्षो जेको कहीं कौम के संदस के नामालूम ए गुमनाम अजीम फनकारन जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी पड़पंदो रहंदो आहे कला है संस्कृति जो रूह ए संस्कृति आहे सभ्यता जो पैमानो कायनात जी तामीर खां पोए रफ्ता रफ्ता इंसानी वजूद नमूदार थियो इंसान जी दिमागी विनोड़ संदस उमंगन के लर्जिश में आंदो ए संदस उमंगन एहसासन ए तजुर्बन के मुजस्म रूप के कला ए कारीगरी सजो वियो कहीं भी कौम जी कला या लोक कला मां उन कौम के अबाणे वरसे ते रोशनी पवे थी उन मां उन कौम की कहणी कथनी रहनी कहणी पोशाक पहराव हार श्रृंगार जर जेवर विश्वास अकीदे कृतकार शौक शोल विंद्र विरूह वगैरह की जान पवे थी लोक वर्षे में अवाम जो अक्स उतारियल होंद है लोक वर्षे की तारीख भी एतरी आगाठी आए जेतरी खुद इंसानी तारीख छाकाण इंसानी सभ्यता ए संस्कृति के अनंत सिलसिले में पल पल का नई कड़ी जुड़ंदी थी रहे माजी हाल ए मुस्तकबिल में अटूट ए गहरो रिश्तो है हर कौम उन रिश्ते जो मुजस्म रूप डॉक्टर अलाना चवे थो तो हर का कौम

0: अंज ए काह के पेट में पैदा थी, सुभाणे के जन्म दिए थी। जै कौम अज के हालतुन ए काल के तस्वुर के अहमियत दिनी, उहाई कौम सुभाणे सरहल थींदी। हर कौम जो लोक वरसो उते जे मुल्की ए मुकामी हालतुन, पंगती सियासी ए तमदनी असरन सां मुतासिर हूंदो आहे। पर के अहिड़ा आलमी अनासिर बि आहिनि जे समूरी इंसान ज़ात सां वाबस्ता आहिनि। जॾहिं खां इंसान पैदा थियो आहे ऐं समुझ खां कमु वठणु शुरू कयो अथसि, तॾहिं खां पंहिंजनि वीचारनि ऐं अहसासनि जो कंहिं न कंहिं नमूने इज़हार कंदो रहियो आहे। वक़्त जी नज़ाकत ऐं माहौल खां मुतासिर थी इंसान पंहिंजनि जज़्बनि ऐं अहसासनि खे मुख़्तलिफ़ रंगनि ऐं रूपनि में पेश कंदो रहियो आहे। लोक वरसे खे कुझा जी माना में खणूं त लोक कला, लोक साहित्य ऐं लोक संस्कृति लोक वरसे जे वसी दायरे में अची वञनि था। लोक कलाउनि में लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक मुसविरी, लोक संगतराशी, लोक मैमारी, लोक सनतगिरी वग़ैरह कलाऊं अची वञनि थियूं। अजंता, एलोरा ऐं खाजोराव जी बहितरीन कलाकृतियूं, सहसे आलीशान तारीफ़ी इमारतूं ऐं क़िला, मंदर ऐं मस्जिदूं, हैरत अंगेज महल ऐं मुनारा, भवन ऐं हवेलियूं अॼु बि सूंह ऐं बनावत सबबि इंसान ज़ात खे मकनातीस वांगुरु छिके था वठनि। ऐं इहे सभु असांजे लोक वरसे जा बहितरीन मिसाल आहिनि। लोक साहित्य खे नसुर ऐं नज़्म जी शाखाउनि में विरिहाए सघिजे थो। लोक साहित्य जे नसरी शाख में हिकु तरफ़ लोक कहाणियूं अचनि थियूं, जिन में इंसानी उमंगनि ऐं अहसासनि जी अकासी हूंदी आहे ऐं कूड़ मथां सच जी ऐं बुराईअ मथां चङाईअ जी जीत ॾेखारियल हूंदी आहे। त ॿिए तरफ़ प्रोजी, ॿुधारतूं, सतफुरियूं, हुनर, ॾोर, ॾहस वग़ैरह अची वञनि था, जेके इंसानी अकुल, इदराक ऐं तर्क ॿुधीअ जा उमदा मिसाल आहिनि। लोक चवणियूं, पहाका ऐं इस्तलाह बि लोक नसुर जा अहम हिसा आहिनि, जेके ॾिसण में नंढड़ा पर मानवी लिहाज़ खां गहरा, गंभीर ऐं समुझ तोड़े अकुल सां भरियल आहिनि। लोक साहित्य जे नज़्मी शाख में लोक गीतनि जा मुख्य नमूना जहिड़ो के लाॾो, लोली, छलो, मोरो, मिलण, ओराणो, पूॼा गीत, पंजड़ो, कासी, वाई, बैत, ॾोहिड़ो वग़ैरह अची वञनि था। कंहिंखे बाल कहाणियूं बि लोक कविता जा उमदा मिसाल आहिनि। लोक कलाउनि ऐं लोक साहित्य जूं नदियूं वरी लोक संस्कृतीअ जे महासागर में वञी छोड़ थियूं कनि। इन चवण में को वधाव कोन थींदो त लोक संस्कृतीअ जे समुंड में इंसानी ज़िंदगीअ जो माज़ी, हाल ऐं मुस्तक़बिल समायल आहे। लोक साहित्य में असांखे समाजिक इतिहास जा सुहिणा चित्र बि मिलनि था ऐं इंसानी भावनाउनि जूं सुहिणियूं झलकूं बि नज़र अचनि थियूं ऐं गॾोगॾु ऊच क़दुरनि ऐं सिखियाउनि जा मानादार मोती बि मिलनि था। लोक साहित्य में क़ौम तोड़े मुल्क जे प्राचीन सभ्यता ऐं संस्कृति, समाजिक ऐं सियासी ज़िंदगीअ जा लाहा चाढ़ा, क़दुर ऐं माण, आशूं, उमेदूं, कुर्ब ऐं क़ुर्बानियूं, देशभक्ति, अख़लाक ऐं आचार वहिंवार जा दिलि खे छुहंदड़ दास्तान भरिया पिया आहिनि। इन करे चई सघिजे थो त कंहिं बि मुल्क जी ॿोलीअ ऐं साहित्य जी इमारत जी पीढ़ लोक साहित्य ते ई ॿधल थींदी आहे ऐं लोक साहित्य असांजे लोक वरसे जो अहम तरीन हिसो शुमारजे थो। असांजे लोक वरसे में सियाणप ऐं अकुल जा उहे आबदार मोती आहिनि, जिन जी चमक समय गुज़रंदे पाण वधीक उजागर थींदी वञे थी। लोक वरसे में प्रेम ऐं सिंह, हिमत ऐं सुरियाई, क़ुर्बानी ऐं हमदर्दीअ जा सवें दिल आवेज़ अफ़साना समायल आहिनि। लोक वरसो सभ्यता ऐं संस्कृतीअ जो आईनादार ऐं तर्जुमान आहे। उहो असांजे माज़ीअ खे हाल सां ॻंढे थो ऐं मुस्तक़बिल जे रोशन माग जो डग पिणु ॾेखारे थो। सदियूं अॻु के निकल लाल, गुमनाम कलाकार, नामालूम साहित्यकार, अॼातल सुघड़ ऐं कारीगर, गोशानशीन फनकार पंहिंजूं ज़िंदगियूं वक़्फ़ करे पंहिंजूं शख़्सियतूं पंहिंजियुनि कलाकृतियुनि में ओते विया ऐं इंसान ज़ात खे लोक वरसे जे रूप में फनी शापारनि जा अहिड़ा अमुल हीरा मोती अता करे विया आहिनि, जिन जी चमक ऐं रोशनी जावेदान आहे। उन्हनि अज़ीम फनकारनि कॾहिं बि मक़बूलियत ऐं दौलत, उहिदे ऐं इक़बाल जी परवाह कीन कई। उन्हें पान के मिटाए पैंजुन लाजवाल रचनाओं में अमर बन गया। उन्हें रचनाओं ए कलाकृतियों अज भी इंसान जात के फख्र जो बायस आन सृजनात्मकता के सदाई प्रेरणा दी रहियो। असांजी सिंधी कौम दुनिया की सभी का वधिक खुशकिस्मत कौम है जो उहा मोहन जो दड़ो जड़ी आला तरीन तहजीब की सिद्धी वारिस है। असांजी कौम के 5000 साल अगुवारी सिंधु घाटी सभ्यता जो वसी आला तरीन लोक वरसो अता थियल है जैमा असांजी समाजी इक्तसादी सियासी धर्मी फनी वापारी जरई जिंदगी ते बखूबी रोशनी पवे थी। जायन जोड़ शहरन वसायण जे हैरत अंगेज हुनर जी जान पवे थी। हर किस्म जे कला कारीगरी जी झलकू मिलन थी। मोहन जे दड़े मां हथ आयल मूर्तू जेवर बासण हथियार सिक्का मुगरू चित्र शिलालेख असांजे अजीम लोक वरसे जा उहियाणी त आहिनि जंहिं ते न फ़क़त सिंधियुनि खे बल्कि समूरी इंसान ज़ात खे फ़ख़ुरु आहे। सुहारी ऐं बाझारी सिंध खां विछड़ी समूरा ऐं सभा जा सिंधी दुनिया जे कुंड कुछ में पखिड़ी विया आहिनि ऐं मुक़ामी माण्हुनि जे लह विछड़ में अची ॾींहो पोए पंहिंजे असलूके लोक वरसे खां बेनियाज़ थींदा पिया वञनि। छाकाणि त न का आहे संदन पेरन हेठां ख़ालिस पंहिंजी ज़मीन ऐं न को अथनि पंहिंजो निजो सिंधी माहौल। पर जेकॾहिं असीं ख़ूबसूरत ऐं रोशन मुस्तक़बिल जा ख़्वाहान आहियूं त असांखे पंहिंजे माज़ीअ जे लोक वरसे खे महफ़ूज़ रखणो ई पवंदो। छाकाणि उहो ई असांजी निजी सुञाणप ऐं असांजे शानदार तहज़ीब जो तर्जुमान आहे। शल असीं लोक वरसे जी अहमियत खे महसूसु करियूं ऐं उनखे सांडे रखी सघूं ऐं इहा अबाणी अमानत पंहिंजनि ईंदड़ पीढ़ियुनि खे अता करे पंहिंजो फर्ज़ बजा आणियूं।
1: अमर डोलन राई खां तकरीबन रहा असांजो लोक वरसो।
2: ये आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। अलावा तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुझी सकंदा आहियो। ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। हीअर प्रोग्राम अॻिते पेश आहिनि कुझु हब वतनी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं संगीत का कार्यक्रम। संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे लवली चंद्र के भजन। तबले पर संगत दी है राशिद निजामी ने, बांसुरी पर है विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं दामोदर लाल घोष।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आपने सुना लवली चंद्र की गाय भजन। तबले पर संगत दी थी राशिद निजामी ने, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा। ईश्वर करे आपका आज का दिन यानी आने वाले हर पल और जिंदगी बहुत खूबसूरत हो, सफलता और सकारात्मकता आपके जीवन में आए। और वैसे भी कहते हैं ना कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है बीते कल की गलतियों को सुधारने और नए सपनों को साकार करने का अवसर लेकर आती है। और जीवन में ना कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, जैसे सूरज हर दिन आता है वो हमें ये संदेश देता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला जो है वो अवश्य आता है। और हमारा साथ देने के लिए हमारे जो खुदा है, जो हमारा ईश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये कहें कि हम नहीं जानते हैं कि वो हमारी रक्षा किस तरह से करता है, हम नहीं जानते हैं कि वो हमें किस तरह से कई मुश्किलों से बचा के रखता है, लेकिन हाँ वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और वैसे हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, और वो ईश्वर जिसने हमें ये खूबसूरत सी जिंदगी दी है वो भी हमारे साथ है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बाकी जो साथ ईश्वर का होता है वो साथ किसी का हो ही नहीं सकता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं गीतों पर गुड मॉर्निंग, और हम कहें कि हम ना अक्सर अपनी खुशियों को बड़ी बड़ी उपलब्धियों में ढूंढते हैं, जबकि खुशियाँ ना इनमें नहीं है, खुशियाँ छोटी छोटी बातों में है। छोटी छोटी बातों में किस तरह, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, किसी की मदद करना। आप जानते हैं किसी की मदद करना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, और ये कहूँ कि एक तरह से आपका सौभाग्य होता है, या आप या उनकी कृपा होती है कि तब आप किसी की मदद कर पाते हैं। और किसी की मदद करना तो इसलिए एक है ना अच्छी बात, और साथ ही किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे आपने देखा होगा अक्सर हम जब किसी से मिलते हैं तो आप जब एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है, और ये मुस्कान ना कहीं वो छोटी सी खुशी तो दे जाती है जिसमें आपको मजा आता है ना। फिलहाल गीत भी प्यारे प्यारे हैं, आपको मजा आएगा, आप सुनिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। और वाकई अगर हम सफर हो या अपने किसी भी अपने का साथ होता है ना, तो जिंदगी और हसीन हो जाती है। और यूं कहें कि कई बार जो मुश्किलें जिंदगी में आती है ना, वो कब आती है और कैसे चली जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि किसी का साथ जो है ना वो बहुत मायने रखता है। और छोटी छोटी बातों में नाराज होना या आपने आपको कई बार सही साबित ना कर पाना, ये सब तो चलता है। लेकिन हाँ, कोई ये कह दे कि चलना छोड़, मैं तुम्हारे साथ में हूँ या मैं आपके साथ में हूँ, तो कितना अच्छा लगता है। भले ही वो मुश्किल वहीं की वहीं रहती है, लेकिन वो साथ, वो किसी का विश्वास और वो किसी का ये कह देना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, वो कहीं ना कहीं हमें एक शक्ति भी दे देता है और एक अच्छा सा एहसास भी देता है कि चलो हमें डरना नहीं है और हमें आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते जाना है। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आ रहा है मोहित चौहान की आवाज़ में।

गीतो भरी गुड मॉर्निंग सुन रहे हैं आप मेरे साथ यानी ज्योति शर्मा के साथ। और घड़ी की सुई में वक्त हुआ है 7:52 और ये पूरे हो चुके हैं 44 सेकंड।

घड़ी की सुई जो है वो इशारा कर रही है कि हमें कार्यक्रम को यही खत्म करना होगा, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना, यानी आकाशवाणी की दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के साथ जुड़े रहना है। और आपसे गुजारिश करते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो पलों के हिसाब से मिली है, और ये सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हाँ आपको हिम्मत रखनी है कि जब दुख आए तो उससे कैसे बाहर निकलना है, और जब सुख आता है तब तो हम सुखी रहते ही हैं, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर भी रखिए और दूसरे के चेहरे पर भी लाने की छोटी सी कोशिश कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ देर में यानी कि ठीक 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा. दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है. दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है.
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं. अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है. इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है.
7: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते

0: घरेलू नागर विमान बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले के शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और

0: इंग्लैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पालाकाड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा। विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं के बिसात। हिन्दुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रूचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions.

नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निजाम में बदउनवानी की वजह से काफी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि टीएमसी हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कल पीएम इकतसादी मशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इकतसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदाम और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इकतसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहत से मुतालिक मुख्तलिफ मामला पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाति तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दोतरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बैरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है।
14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए होगी, जबकि इससे

0: पहले ये 913 रुपए थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में थ्रिसूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नौर और कासरगोड के शुमाली जिलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुताबिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरिकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह ओडिशा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्त बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज माहिरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहिरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खुसूसी बातचीत की। वहीं इंकलाब ने कौमी राजधानी खत्ते में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक एनसीआर में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, शब्द जब संस्कृति का संवाहक बनते हैं तो इतिहास रचा जाता है। आकाशवाणी और भारतीय साहित्य का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, गहरा, अटूट और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ। रेडियो की सुरीली यात्रा ने न केवल

0: आवाज को घर घर पहुंचाया, बल्कि पिछले 9 दशकों में हमारे देश की साहित्यिक चेतना को भी गढ़ा है। आकाशवाणी की इसी गौरवशाली यात्रा पर आइए सुनते हैं एक विशेष परिचर्चा, आकाशवाणी पर साहित्य के 90 वर्ष। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश नीरव, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रसारण कर्मी डॉक्टर हरि सिंह पाल, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अलका सिन्हा और वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर विवेक गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर गौतम।
1: नमस्कार मित्रों, आकाशवाणी के यानी ऑल इंडिया रेडियो के कल 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस 90 वर्ष के सफर में रेडियो ने जनमानस को, पूरे देश को, दुनिया को भारत की साहित्यिक चेतना से, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से रूबरू करवाया है और एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी साधन के रूप में रेडियो भारत की आत्मा को दुनिया भर में ले गया है। उस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये तीनों ही व्यक्तित्व जो हैं वो आकाशवाणी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इसके सफर के साक्षी रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें कि किस तरीके से पिछले 90 वर्षों में लगातार नई ऊंचाइयों को रेडियो ने छुआ है और नए नए कार्यक्रम और पुराने कार्यक्रम को किस तरह से लेकर आगे वो बढ़े हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी।
2: धन्यवाद विवेक जी। वैसे तो रेडियो की शुभारंभ हमारे भारत में 1927 में हो गया था, मुंबई में और कोलकाता में, लेकिन वो प्राइवेट रेडियो क्लब थे, उनके माध्यम से उनका प्रसारण शुरू हुआ और इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। 1922 में ही बीबीसी लंदन ने अपना प्रसारण शुरू किया था। 22 में यहाँ पर जो भारत सरकार में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने परमिशन ली वायसराय से कि भाई हम यहाँ पर प्रसारण का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन जाके मिली और 23 में रेडियो क्लब बंगाल की उसमें अनुमति मिली। तो जब छोटा सा एक क्लब जैसा होता था, छोटे से कमरे में और छोटा सा उसका प्रसारण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आकाशवाणी दिल्ली की जो नीम है वो 1936 की नीम है और पहले ये भगवान दास रोड पे हुआ करता था, उसके पास राजपुरा रोड पे गया, उसके बाद ये हमारा प्रसारण भवन यहाँ पर बना। तो इस रूप में इसकी एक बड़ी ही सुदृढ़ और बड़ी सशक्त इसकी परंपरा रही है और हम जानते हैं कि रेडियो जिस समय आया था तो उस समय लोग अजूबा करते थे कि इसके अंदर से कौन बोल रहा है। कभी कभी लोग मजाक करते थे कि रेडियो खोल के उसमें से कोई अगर मरा हुआ चूहा मिल जाए तो कहते थे ये चूहा तो मर गया, रेडियो कैसे चलेगा,
1: क्या बात है क्या बात है।
2: तो इस तरह का मजाक चला करते थे। हम जो छोटे बच्चे थे तो सोचा करते थे कि भाई कहाँ से आवाज कैसे आ रही है यहाँ पर। हमारे जमाने में तो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे और वो ट्रांजिस्टर जो है जब प्रसारण करते थे तो लगता था कभी आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं। हमका भाई दिल्ली तो हमसे बहुत दूर है, वहां की आवाज यहाँ पर कैसे आ रही है। लेकिन संयोग वहां के 1964 में, जहां का मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़ का, वहां पर हाई पावर ट्रांसमीटर उच्च शक्ति प्रेषित्र वहां पर लगा, वहां पर मतलब उसकी नींव खुदी, तो उसमें कुछ हमारे भी खेत गए। जब बड़े हुए तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि विदेश प्रसारण के लिए है, उसमें अलग अलग टावर थी, एक अमेरिका के लिए थी, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए थी, एक यूरोप के लिए थी, अलग अलग प्रसारण किया जाता था, उसका प्रसारण वहां से होता था और ये तब नहीं मालूम था कि हम रेडियो में भी आ जाएंगे। बड़ी दूर का सपना था। बल्कि बचपन में हालत ये थी, जब मैं विद्यार्थी था, एक बार दिवाली का त्योहार था तो मैंने कहा भाई जब तक रेडियो नहीं आ जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई साहब शहर गए अलीगढ़, फिर वहां से खरीद के लाए, फिर वो दिया, फिर हमने दिवाली मनाई। तो रेडियो के प्रति जो एक शौक है, उसमें हम सब जैसे हमारी जो पीढ़ी के जितने लोग हैं उन सबका यही आकर्षण रहा कि ये कैसे अजूबा है कि जो बोल पाता है। जब हम इसमें प्रसारण के क्षेत्र में आए तो हमें लगा कि ये तो जितना मतलब हमें कहा जाता उससे भी बढ़कर है, क्योंकि रेडियो का जो प्रसारण भारत में शुरू हुआ उसका हमारा उद्देश्य था शिक्षा और मनोरंजन साथ में देना, कि उसके माध्यम से हम शिक्षा भी दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की शिक्षा है, चाहे वो कृषि की शिक्षा है। और सही माने में कहा जाए तो इस देश में जो हरित क्रांति हुई है वो रेडियो की देन है, जो भारत में श्वेत क्रांति हुई है वो रेडियो की देन है। हमने लगातार इसमें प्रसारण कराए हैं कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें किसानों को, पशुपालकों को बहुत जागृति मिली, उसके माध्यम से घर घर में दूध उत्पादन बढ़ा, उससे फसलें बढ़ी, उसमें गेहूं अपना उत्पादन करने लगे। वरना किसी समय अमेरिका से हम गेहूं मंगवा करके खाया करते थे, लाल गेहूं आया करते थे कि ये अमेरिका का गेहूं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: उसका स्वाद ही अलग हुआ करता था। आज से थोड़े साल पहले भी ये था कि जैसे हमारे रेडियो में संगीत विभाग में होता है एक बी ग्रेड का कलाकार, एक बी हाई ग्रेड का कलाकार, एक ए ग्रेड का कलाकार, एक टॉप ग्रेड का कलाकार। तो अगर कोई साहित्यकार है और रेडियो में नहीं आया तो उसको टॉप ग्रेड का साहित्यकार नहीं माना जाता। और अपने विजिटिंग कार्ड में, अपनी किताब के पीछे सब लोग उसमें लिखा करते थे रेडियो कलाकार, रेडियो वार्ताकार, रेडियो और साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य शुरुआत से ही, जब रेडियो शुरू 1936 हुआ तभी से साहित्य का कार्यक्रम मतलब वहीं से शुरुआत हुई थी, जिससे साहित्य जो अलमारी में बंद था वो रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचा,
3: बोलने लगा,
2: उसके माध्यम से हमने

0: उत्पन्न में बहुत बड़ा योगदान रेडियो साहित्यकारों का रहा है और यही कारण है कि आज हमारा साहित्यिक कार्यक्रम जो 1956 में शुरू हुआ था वो आज भी नियमित रूप से प्रसारित हो रहा है। एक कवि गोष्ठी हम करते हैं, कवि गोष्ठी हमारी रात को प्रसारण होती है और उसमें जो शीर्षस्थ कवि है और जो युवा संघर्षरत कवि है उनको भी हम बुलाते हैं। उसके बाद हमारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है, हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसका प्रसारण करते हैं। उसमें भारत की जितनी 22 भाषाएं हैं उसमें उनका प्रसारण कराते हैं। पहले वो क्षेत्रीय बोली चाहिए, जैसे मणिपुरी है तो मणिपुरी का पहले मणिपुरी में उसका काव्य पाठ होगा, उसका फिर अनुवाद अंग्रेजी में होगा, उसका अनुवाद फिर हिन्दी में अनुवाद होगा। सभी भारतीय भाषाओं का यहाँ प्रसारण होता है। उसके बाद एक हमारा राष्ट्रीय स्तर की साहित्य भारती पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। युवाओं के लिए का हमारा लक्ष्य कार्यक्रम है कुछ कहता है दिल, और जो बच्चे आते हैं युवा आते हैं वो अपनी कविता सुनाते हैं, कहानी पाठ सुनाते हैं, अपने व्यंग पाठ सुनाते हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम प्रसारित होता है, पंजाबी कार्यक्रम होता है, उर्दू होता है, उसमें भी साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित नियमित रूप से होते हैं। जो विदेश प्रसारण था वो भी साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित करता था और राष्ट्रीय प्रसारण है उसके माध्यम से भी हमारे साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित होते रहे।
1: बहुत व्यापक और विस्तृत।
0: जी जी,
1: तो बहुत सुंदर आपने श्रोताओं को अवगत कराया है। 1930 में जब शुरू हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ रेडियो का, तो भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कहलाती थी, लेकिन 8 जून 1936 को विधिवत इसे आधिकारिक तरीके से नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो अर्थात AIR, और 1956 में फिर आकाशवाणी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी किस तरह से साहित्य को और अन्य समाज के महत्वपूर्ण विषयों को रेडियो उठाता रहा है और एक गौरवशाली परंपरा रही है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ साथ। अब मैं लिए चलता हूं आपको, यानी हमारे श्रोताओं को, उस व्यक्तित्व की तरफ जिन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं और वो संपादक भी रहे हैं, कवि भी हैं, और उनका भी व्यक्तित्व बहुआयामी है निश्चित रूप से, और जब हम मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। मेरा आशय है श्री सुरेश नीरव जी से कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें।
2: धन्यवाद डॉक्टर विवेक गौतम जी। आकाशवाणी के बारे में मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि हवा के पंखों पर सवार होकर जो सुनाती जमाने की कहानी है उसका नाम आकाशवाणी। हम आकाशवाणी को केवल एक डब्बा या यंत्र न समझें, ये हमारी संस्कृति का, ये हमारे समाज का और ये हमारे सूचना तंत्र का मेरुदंड है। इन तीनों चीजों को जोड़ने से जो चीज बनती है उसका नाम आकाशवाणी है। आकाशवाणी के 2-3 मुद्दों पर मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि इसके जो प्रोग्रामिंग है उस पर तो चूंकि आप काम करते रहे हैं तो डॉक्टर पाल ने बोल दिया, लेकिन मैं एक दर्शक की हैसियत से साक्षी भाव से मैंने आकाशवाणी को कैसे देखा है। तो पहली बात तो ये कि हम जिस दौर में हैं, अगर हमको दहेज में रेडियो नहीं मिले तो रेडियो हमारा स्टेटस सिंबल होता था कि वो शादी में क्या मिला, बोले साहब एक स्कूटर मिला और एक रेडियो मिला।
0: नहीं, पहले जमाने में घड़ी साइकिल रेडियो वो ज्यादा मशहूर था।
2: तो रेडियो से मतलब हमारा जो संबंध है वो हमारे संस्कारों से संबंध है। रेडियो हमारे लिए एक संस्कार है। हम जब बड़े होते गए तो हमने सबसे पहले जो सुना, तो मैं तो अपनी याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर आकाशवाणी में आप तो आ रहे हैं, आपको मालूम होगा एक वेस्टर्न लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट था, उसमें वॉल्टर कॉफ थे, वो उसके हेड थे।
0: जी जी जी।
2: वॉल्टर कॉफ बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिशियन थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: और जो हमने बचपन में जिस धुन को सुनकर बड़े हुए हैं, जो रेडियो की सिग्नेचर ट्यून है, वो वॉल्टर कॉफ ने बनाई थी।
0: जा, जा।
2: और मोहिल मेहता उसके साथ थे। हाँ। उन्होंने उसमें वायलिन बजाया है जो कि जोबीन मेहता के फादर थे।
1: बहुत
2: महत्वपूर्ण। हमने जब उसको सुना सिग्नेचर ट्यून को, तो हम तो बड़े हुए तो अब वो राग कौन सी है जो आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून में जो राग दी गई है वो शिवरंजनी राग है। तो शिवरंजनी राग से सुगंध को सुनकर तो हम बड़े हुए। हमने उस आकाशवाणी से 2-3 चीजें सीखी जिस पीढ़ी में हम थे। हमसे कहा जाता था कि समय की पाबंदी अगर सीखनी है तो आकाशवाणी से सीखो।
0: जी जी जी।
2: एक सेकंड का भी जो मिली सेकंड होता था उसको लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। उन्होंने कहा 8 बजे की न्यूज आ रही है तो 8:59 और कुछ और मिली सेकंड रह गए तो कह रहे हैं कि 8 बजा चाहते हैं, 8 बजे नहीं है। और उसके बाद एकदम धम शुरू हो जाती थी कि समाज, तो हम लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। तो आकाशवाणी हमारी समय की पाबंदी का एक बहुत बड़ा संस्कार था जिसने हमें बताया कि ये केवल मनोरंजन का कारण नहीं, ये हमें एक अनुशासन भी देता है। साहित्यकारों को यह लाया गया, उनको प्रोड्यूसर एमरेटस बनाया जाता था। वो यहाँ के प्रोड्यूसर एमरेटस बनते थे, चाहे वो बीरेंद्र मिश्र हो,
0: जी हाँ, इलाचंद जोशी
2: हो, सुमंत जी हो, तो ये

0: एक बड़ी बात थी कि उनको अपना फार्म भी भरना पड़ता था कि मैं साहित्यकार हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, तो उनको लाया जाता था और वो ये तय करते थे कि आकाशवाणी में जो लोग कविता पढ़ेंगे उनका स्तर क्या है। तो एक तरह से सलाहकार समिति रहती थी कि वो तय करते थे। तो ये जो काम आकाशवाणी ने किया, हमारी भाषा के संरक्षण का कार्य किया। एक जो सबसे बड़ा कार्य किया वो लोक सुने, बधाई देता।
1: बहुत धन्यवाद श्री सुरेश नीरज जी। बड़ी बात है कि आजादी के समय 6 केंद्रों से शुरू हुआ ये एक महान यज्ञ, जो जैसे कि नीरज जी कहते हैं यज्ञ उनके बोलचाल में बहुत आता है। तो आज 230 से ज्यादा प्रसारण केंद्र हैं जो देश भर में, और जैसा उन्होंने कहा अभी कि 97% तो 92% भूभाग पर भारत के ये पहुंचा हुआ है और 98% जनता तक इसकी पहुंच है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े जनमानस को और कितने बड़े जनसंख्या को ये अपने अंदर समेटता है और उन तक सूचनाएं पहुंचाता है। लेकिन मैं अपनी बात को कम करते हुए समय की सीमा को देखते हुए आप लिए चलता हूं आपको डॉक्टर अलका सिन्हा जी की तरफ, जो कमेंट्री भी करती रही हैं 26 जनवरी की परेड की और कविताएं भी सुनाती रही हैं, कहानियों की समीक्षाएं भी करती रही हैं, उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं और उनकी बड़ी पुरानी यादें हैं रेडियो से।
2: बिल्कुल।
1: तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें।
2: तो बिल्कुल, आपने जो बात कही और जो मैं अभी तक सुन रही हूं यहां सबके बीच में, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है जब मैं पहली बार आकाशवाणी में पैर रखा था, और वो था 1982 का वक्त। मैं उस समय स्कूल के 12वीं के एग्जाम दे करके और तब यहाँ पहली बार आई थी, और अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है कि करुणा श्रीवास्तव, वो उस समय यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, उन्होंने मुझे दिया था कार्यक्रम लोक गीतों में सावन, इस पर मुझे एक आलेख पाठ करना था। तो अब से पहले मैं ये सोचती थी कि जैसा अभी हरि सिंह पाल जी भी कह रहे थे कि एक डब्बा है उसमें से आवाज आती है, तो मैं ये पढ़ती थी जब भी कि आकाशवाणी हुई तो लगता था आकाश से एक वाणी आ रही है, तो हमें ऐसे ही लगता था। अच्छा, वो मर्फी रेडियो बड़ा सा सबके घरों में हुआ करता था और उसकी आवाज ऐसी मखमली निकलती थी, तो जब पहली बार मैंने अपनी आवाज उसमें सुनी तो मुझे रोमांच हो गया और सच में लगा कि ये आवाज जो है वो कहीं आकाश से उतरकर नीचे तक आ रही है। इतना सार्थक नाम रहा आकाशवाणी का। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, आकाशवाणी हमारे साथ साथ मेरे होश संभालने से पहले से हमारे घर में था, ऐसे जैसे हम सांस लेते हैं और एहसास नहीं करते, उसी तरह से रेडियो चलता रहता था और हम उसकी गिनती नहीं करते थे। प्रोग्राम हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पीछे चलता रहता था क्योंकि उससे नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि घर में कोई न रहे, अकेलापन दूर हो जाता था, रेडियो बजता रहना चाहिए। अगर रेडियो नहीं बज रहा तो एकदम सुनसान हो जाता था। जैसी भाषा की बात आप कर रहे थे, आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित होते थे खास करके 8 बजे वाला, और उसके साथ जो ठहराव होता था, जिस तरह स्पष्ट उच्चारण होता था, जिस तरह से वो बोलते थे, उनके बोलने का ढंग, उनकी शब्दावली, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, ये शब्द तो हमने बाद में सीखे वॉइस मॉड्यूलेशन, लेकिन कैसे कहा जाता है अपनी बात को प्रभावी ढंग से, ये आकाशवाणी के जरिए हमने सीख लिया था। और मुझे ध्यान आता है जैसे सर्वभाषा कवि सम्मेलन की बात हुई, इसकी बड़ी धमक थी कि लोग सर्वभाषा कवि सम्मेलन में भाग लेकर के आ रहे हैं, अरे इतनी भाषाओं के कवि वहां होते हैं और उसका अनुवाद आप प्रस्तुत करते हैं।
3: आज भी धमक है,
2: आज भी धमक है बिल्कुल उसकी। तो मुझे याद है कि मैंने लखनऊ में हुआ था वो सर्वभाषा कवि सम्मेलन जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, और तो उस दिन बड़ी ठंड थी, बहुत हार्ड कपा देने वाली ठंड थी वहां पर,
3: जनवरी दिसंबर
2: की बात थी, और मैं रात भर उल्टियां करते बीती थी और अगले दिन मुझे कार्यक्रम देना था। तो बंगला के कवि थे, उनकी कविता का मैंने अनुवाद किया था, मंजूश दास गुप्ता का, और बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर गुवाहाटी में जब हुआ तब मैंने दोबारा इसमें हिस्सा लिया, और इसमें कश्मीरी कवि थे शहजादा रफीक, उनकी कश्मीरी कविता का मैंने हिंदी में अनुवाद पढ़ा था। तो ये सब इतने सुंदर यादगार है, आप ना एक बिल्कुल अपने देश के साथ सीधे जुड़ते हैं। इस रेडियो ने आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, आपको एक सलीका दिया कि आपको समय पर, जैसे अभी बात हो रही थी, अनुशासन कैसा होता है। मैं उन दिनों दूरदर्शन में भी काम किया करती थी, लेकिन मैंने ये जो समय की पाबंदी यहाँ देखी कि जो समय कहा गया है उसी समय ये शुरू हो जाएगा, और क्योंकि आपके पास ये सुविधा थी कि आपको माइक पर बोलना है, दिखना नहीं है, तो आप लिख कर ला सकते हैं, शब्द इधर-उधर नहीं होने चाहिए, आपका उच्चारण साफ होना चाहिए। और एक बड़ी मजेदार सी बात मुझे ध्यान आ रही है, मैं बहुत से प्रोग्राम करती थी, कविताएं लिखती थी, तो कवि गोष्ठियों से लेकर कहानी पाठ और फीचर बनाना ये सब कुछ करती थी। एक दिन मैं ऐसे ही किसी प्रोग्राम को करके निकल रही थी तो मुझे एक प्रोड्यूसर मिली और उन्होंने एकदम मुझे रोक लिया कि अलका एक मिनट रुको, हमारे लिए एक इंटरव्यू कर दो। मैंने कहा भाई इंटरव्यू के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है। तो उन्होंने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक कहानीकार है, कहानी पर पूछ लेना, कुछ 2-4 सवाल तो है कि भी कब लिखना शुरू किया, आगे क्या सोचना है, इस तरह। मैंने कहा कौन है कहानीकार, तो उन्होंने बताया मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी मेरी बहुत प्रिय कथाकार थी, उनको मैंने स्कूल के जमाने से पढ़ रखा था। तो मैंने तुरंत थामी भरी और मुझे इतना आह्लाद हुआ उस दिन कि बिल्कुल सामान्य से दिखने वाली छोटे से कद की महिला, पीछे से बांधा हुआ जूड़ा, और क्या गहराई थी उनसे बात करने में। उसके बाद तो फिर गिरजा कुमार माथुर और ममता कालिया और बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए मैंने, साहित्य के बहुत सारे कार्यक्रम किए। आप जिन साहित्यिक कार्यक्रमों की बात

0: कर रहे हैं, लगभग हर कार्यक्रम से मैं जुड़ी रही और मैंने उसको प्रस्तुत भी किया, मैं उसका हिस्सा भी बनी। मेरी खुद की भी कहानियां इसमें, कथा क्रश नाम का एक कार्यक्रम होता था आपके यहाँ, जिसको बाकायदा नाट्य प्रस्तुति के साथ रखा जाता था, तो मैं भी यहाँ की एक ड्रामा अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी थी, तो मैंने भी एक कहानी का अपना पार्ट किया था उसमें भाभी का रोल निभाते हुए। तो ऐसी कई सारी यादें हैं विवेक जी, आप खुद एक हिस्सा रहे हैं, आप खुद कितने कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में आप रहे हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं बड़े यूं कहिए कि खून का रिश्ता है यहाँ से, फर्स्ट लव।
1: बल्कि अलका की ये और विशेषता रही कि जब ये 26 जनवरी का प्रसारण हम इनसे लाइव कराते थे, इनकी भाषा साहित्यिक भाषा
0: साहित्यिक हो जाती थी। और बल्कि मुझे ये भी याद आता है, एक बार की बात मुझे और ध्यान आती है कि 15 अगस्त का एक कार्यक्रम था और इंडिया गेट के पास से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे और मुझे उसका लाइव प्रसारण देना था। अब मैं बिल्कुल तैयार थी कि मुझे तो पता है ये सब, हम लोग इतना हमारे भीतर रस बस गया कि तैयारी तो कुछ करनी नहीं है, मैं बोल दूंगी। अब जब वहां मैं पहुंची और उससे पहले मैं हमने कान में लगा रखा था ईयरफोन और उसमें ये आया कि अब आप समाचार सुनिए और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होना था। इधर समाचार मैं कान में सुन रही थी और उधर जो स्थान पर जो होना था लोकल कार्यक्रम वो शुरू हो गया। अब उसके जो ढोल नगाड़े थे वो लोक नृत्य था, वो इतनी तेज बजने लगे कि मुझे कान में बजता हुआ समाचार सुनाई नहीं दिया। और मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, मैं कब शुरू करूं, ये बंद हो तो मैं शुरू करूं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे इशारा किया कि अब आप शुरू कीजिए। तो बिना कुछ सोचे समझे लोग आंखें खोल करके आंखों देखा हाल सुनाते हैं, मगर उस दिन मैंने आंखें बंद करके आंखों देखा हाल सुनाया था ताकि मैं उनसे कहीं विचलित ना हो जो हो रहा है और फिर मैं उसको बोल सकूं।
2: क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत यादें हैं, स्मृतियां हमारे जहन में तैर गई हैं आज, और पुरानी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कल की बात है जबकि वर्षों बीत गए। और इस तरह से रेडियो भी ऐसे लगता है हमारे घर का एक सदस्य ही है और उसके बिना एक सुनापन। आज भी जब जो आपने बात कही वो मेरे साथ भी थी, जब मैं पढ़ता था तो मैं पीछे रेडियो चलता रहता था और मैं पढ़ता रहता था,
0: बिल्कुल,
2: और इतनी तन्मयता से, और महसूस ही नहीं होता था कि कब कितना समय बीत गया। तो ये बड़ा एक तरह से मानसिक सुकून जिसे कहते हैं, मानसिक शांति देने वाला अनुभव था। और मैं तो यहाँ पर कई बार आया, आप भी आए जज बनकर, तो हम तो जिंदगी में तो जज नहीं बन पाए लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने हमें जज जरूर बना दिया, और कविता प्रतियोगिता में आए या और भाषण प्रतियोगिता में आए, ऐसे ही अनुभव ये अपने आप में अनूठे हैं। और आज के युग में तो मैं देखता हूँ कि आधुनिक युग में डिजिटल जो रेडियो है, डिजिटल ऐप पर जो अवेलेबल है, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर है, युवाओं को इतना आकर्षित करता है, और OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप नई लोकप्रियता रेडियो पा रहा है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात अलका जी कही कि पढ़ाई के समय रेडियो, और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, मुझे भी शायद आज हजारों गाने याद हैं,
0: बिल्कुल,
2: खासतौर पर लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी, तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये जितने फिल्मी गायक थे, और उस जमाने में यानी जब हम बच्चे थे तो गाने भी
0: बड़े
2: मीनिंगफुल होते थे और शब्द भंडार इतना उनका शानदार होता था, वोकैबुलरी इतनी बढ़ती थी हमारी उनसे कि शायद जो आज हम कविता करते हैं और आज जो कविता में हमारे थोड़ी बहुत प्रभाव उत्पादकता है, जो एहसास है, मुझे लगता है वो रेडियो की देन है, क्योंकि हमारे जो अंतर मन में, तो साइकोलॉजी में कहते हैं अवचेतन मन में जो बस गया,
0: बिल्कुल,
2: वो कहीं ना कहीं अंदर है और वो एहसास नहीं होता कि वो क्या करवा रहा है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा करवाता है। तो ये जो अनुभव था कि भाई शब्द भंडार भी समृद्ध हुआ, और जो आपने कहा कि कैसे मॉड्यूलेशन करना है, कैसे उच्चारण करना है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन कि और की में ही फर्क नहीं है, है ना, मात्राओं में, कविता को कविता बोल रहे हैं लोग, तो रेडियो ने ऐसा सिखाया हमें कि हमारा उच्चारण बिल्कुल शब्दशः ठीक हो गया, और हम आज जैसा इन्होंने कहा कि लाल किले से भी जो रिकॉर्डिंग होती है ऑल इंडिया रेडियो की, मुझे भी दो बार मौका मिला लाल किला कवि सम्मेलन में, सर्वभाषा कवि सम्मेलन में भी मैं गया उड़ीसा में, जहां यहां पर डायरेक्टर जनरल थे लीलाधर मंडलोई जी, तो उनके साथ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे आवाज सुनकर मुझे बुलाया कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो ये एक तरह से बूस्टर था। और आज चल रहा है ये रास्ता, और बचपन की वो यादें जब हम घास में बैठ के चुनमुन सुनते थे, चुनमुन प्यारे चुनमुन, गुड्डा गुड़िया लाई हूं मैं, आजा खेले हम, तो वो चुनमुन से जो शुरू हुआ सफर वो आज अपने ऊंचाई तक पहुंच रहा है। और
0: साहित्य तो ऐसा था विवेक जी कि मतलब इसकी खून में बसा हुआ था आकाशवाणी की, कोई भी कार्यक्रम, महिला जगत का कार्यक्रम हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, चुनमुन कार्यक्रम में भी बाल साहित्य की इतनी सुंदर चीजें निकल करके आती थी, जो बाल मन होता है उसे समझना था, तो चुनमुन आप छोड़ी नहीं सकते।
2: तो ब्रज माधु से जुड़े रहे, क्योंकि मैं भी मथुरा का
3: आकाशवाणी के दो तीन कार्यक्रमों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। आप तो जानते होंगे, यहाँ एक रेडियो झूठिस्तान कार्यक्रम आता था, चरणजीत जी कर रहे थे, उनका लोकप्रिय उन्होंने पद्मश्री मिली। एक कार्यक्रम आपके पटना से आता था, लोहा सिंह
0: अरे मार बोड़नी ले,
3: एक हवा महल है ना,
2: अभी भी है।
3: तो ये जो कुछ कार्यक्रम थे जिन्होंने पूरे देश में एक
0: पहचान बनाई है कि युद्ध का समय था और हमारे उस समय ब्लैकआउट हो जाता था,
3: रेडियो झूठिस्तान
0: है ना, तो वो पूरा खिड़कियां बंद, ब्लैकआउट और बत्ती गुल। उस समय ट्रांजिस्टर चला करके हम लोग हवा महल सुना करते थे।
3: एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आकाशवाणी के लिए बड़ी उल्लेखनीय रहेगी, मैं छात्र था और ये 76 की बात है, चंबल के बीहड़ों में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य, बहुत बड़ा नाम, उसका स्क्रिप्ट राइटर थे राम कुमार भ्रमर, और उपन्यास राम कुमार भ्रमर का स्क्रिप्ट राइटिंग अमृता प्रीतम की थी। सवाल यह है कि हमारे आकाशवाणी में उस वक्त एक माथुर साहब थे ग्वालियर में, जो लखनऊ से आए थे, तो वो बहुत पसंद करते थे नई पीढ़ी के लोगों को, तो हमसे उन्होंने कहा कि आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि उनका आकाशवाणी के लिए इंटरव्यू ले आए। तो मैं चंबल के बीहड़ में जाकर मैंने कबीर बेदी का, वासु भट्टाचार्य का, बिंदु उसमें हीरोइन थी, इन सबों के, और मैं समझता हूँ सबसे कम उम्र का मैं व्यक्ति था जो मैंने ये वो किया, और मैं उसके लिए आकाशवाणी को श्रेय देता हूँ कि उसने मुझे छात्र जीवन में इतना बड़ा मौका दिया।
1: रेडियो ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, वो लोक साहित्य के संरक्षण में निभाई है, जो साहित्य हमारा है, अभिजात साहित्य, शिष्ट साहित्य तो है ही है, उसके साथ लोक साहित्य का संरक्षण संवर्धन सिर्फ रेडियो ने दिया है, आकाशवाणी ने दिया है, चाहे हमारे लोकगीत हो, चाहे हमारी लोक गाथाएं हो, चाहे हमारी लोक कथाएं हो, चाहे हमारे लोक नाट्य हो। साहित्य संसार में इसको पूछने वाला नहीं था, किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन रेडियो से लगातार हम, चाहे वो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम हो, चाहे हरियाणवी कार्यक्रम हो, या क्षेत्रीय बोली के कार्यक्रम हो, उनके साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। संगीत को जो आज भी जो शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत अगर कहीं जीवित है तो रेडियो की वजह से जीवित है, और प्राइवेट सेक्टर कोई इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता।
2: बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, मैंने देखा कि जितनी संविधान में भाषाएं हैं उसके साथ साथ लगभग 189 बोलियों में
1: आपने
2: लोक साहित्य उसका प्रसारण होता है, तो 190 बोलियां जो हैं उनको रेडियो ने अपने साहित्यिक कार्यक्रमों में रखा है, बहुत महत्वपूर्ण। और ब्रजमाधुरी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मथुरा से हुए, तो ब्रजमाधुरी में जो अलगोजे बजते थे आज अलगोजे सुनने को नहीं मिलते, और उसी अलगोजे की मिठास वो अपने आप में अनूठी होती थी, बांसुरी वो उसमें आनंद नहीं देती जो अलगोजे देते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि साहित्य में, समाज में, संस्कृति में, लोकगीतों में, लोक साहित्य में रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई है। और
1: आज भी हमारे परिवार में कोई अगर हमारा नाम रेडियो पे सुन लेता है, जैसे मेरा पोता मेरा कार्यक्रम दिखा रहा था, वो उसकी पुनरावृत्ति थी, पोते ने नाम सुन लिया, अरे दादू आपका नाम आ रहा है इसमें।
0: मतलब ये जो था ना, घर घर में पहुंचा, जनमानस से सीधे सीधे संवाद किया, और इस तरह से और किसी की पहुंच नहीं थी, दूरदर्शन इतना उपलब्ध नहीं था, लेकिन आकाशवाणी था।
3: आकाशवाणी आज भी
2: उस जमाने में जब मैसेज आते थे तो जो देखा जाए तो उपन्यास लिखने वाले कि अब ढलता हुआ सूरज और खिलाड़ियों की परछाइयां और उसके साथ वानखेड़े एंड से दौड़ रहे हैं बॉल लेकर, तो वो जो एक रोमांच पैदा करता था,
0: जो शब्द दृश्य जो होता है वो रेडियो ने हमें दिया, रेडियो की ट्रेनिंग है कहना चाहिए, और वो हमारे लेखन में भी बहुत उपयोगी रहा उस तरह से।
2: तो मित्रों, अब समय हो चला है कि हम आप श्रोताओं से विदा लें, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तीनों साहित्यकारों का, मैं श्रोताओं से विदा लेता हूं, फिर किसी खूबसूरत मौके पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
4: आकाशवाणी पर साहित्य के 90 वर्ष, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश नीरव, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रसारण कर्मी डॉक्टर हरि सिंह पाल, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अलका सिन्हा, और वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर विवेक गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर विवेक। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
5: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
6: नमस्कार, नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में पत्रकार और लेखक सुरेंद्र सिंह डोगरा से। अपनी बहुत सारी यादें और अनुभव डोगरा जी हमारे साथ साझा कर रहे थे। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं इंटरव्यू का दूसरा और अंतिम भाग।

0: भी ऐसे कोई बुजुर्ग आ या ऐसी जगह में आप चले जाते हो जहां पर कि हिंदी भी नहीं जानता कोई, तो फिर आपके पास कौन सी लैंग्वेज है। तो मैं फिल्म को यूनिवर्सल लैंग्वेज समझता हूं
1: जी।
0: और आप बिलीव नहीं करोगे, एक मेरी फिल्म है से प्लांट से प्लैनेट, जो कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई
1: जी।
0: अवार्ड तो नहीं हुई बट सिलेक्ट होना भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो लाइब्रेरी, तो आप सेफ प्लांट सेफ प्लांट की बात करें, अगर आप मूवी देखोगे 2 मिनट की भी नहीं है, 2.5 मिनट की, और अगर वो उसका साउंड वाउंड भी ना हो ना, तो भी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि क्या मैं मैसेज देना चाह रहा हूं। एनवायरमेंट के ऊपर है वो बेसिकली
1: जी।
0: तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, तो ये सब चीजें हैं। लाइब्रेरी का भी यही पर्पज था कि मैं बच्चों के अंदर उसके अंदर वो एक मीडिया एजुकेशन की, या हमारे एकेडमिक में लाइब्रेरी का क्या महत्व है हमारे स्कूल या कॉलेज लाइफ में। और बात करें मीडिया की भी, तो मीडिया में भी आप चाहे किसी भी टीवी चैनल पे काम करते हो या आप रेडियो पे काम करते हैं, लाइब्रेरी का एक अपना महत्व है। आपने अगर किसी बारे में खोजबीन करनी है, अरे आजकल तो क्योंकि गूगल, और लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता दूं, मैं आज के दौर में भी मैं भी सारे टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, बावजूद उसके आई प्रीफर बुक्स बिकॉज दैट इज ऑथेंटिक। अब आप एक बार बताइए, आप ये अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उस पे ऑथेंटिसिटी या तो आपको अनुभव हो उस चीज का, ऐसी कई बार ब्लंडर मिस्टेक्स हुई है
1: जी।
0: तो इसलिए किताबों का और लाइब्रेरी का बहुत बड़ा महत्व है। और फिल्मों की तरफ इसलिए रुझान गया कि किसी चीज को अगर आपने अच्छे से कन्वे करना है तो फिल्म इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ
1: जी। आपने सुरेंद्र जी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, लगातार सक्रियता बनाए रखी है, और अपनी ओर से जितना कर सकते हैं समाज को भी आपने लगातार कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, तो कई अवार्ड और पुरस्कार भी आपको मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब हमें कोई सम्मान मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो उसके बाद की भावना क्या होती है? ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमें और अच्छा काम करना है, या ऐसा लगता है कि हमने जो किया था उसके लिए बस हमें जो मिलना था वो मिल चुका है, अब हम आराम कर सकते हैं, क्या भाव होता है?
0: वैसे सच्ची बात तो यह है कि मैं अवार्ड सबसे बड़ा अपने काम की बात करता हूं
1: जी,
0: कि अगर आपको अपने काम से लोग अगर सराहते हैं और नहीं भी सराहते, आपको ये पता है कि आपने सच में कुछ ऐसा काम तो करा है, क्योंकि हर कोई पीठ नहीं थपथपाता, ये माइंड में रखिएगा, मेरा शेयर है इस विषय पर कि पीठ वही थपथपाता है जिसके बाजुओं में दम होता है, और एवरेस्ट वही चढ़ पाता है जिसका हौसला बुलंद होता है। तो मैंने अपने ना हौसले को बुलंद रखा
1: जी,
0: और पीठ थपथपाने वाले भी मिले नहीं भी मिले, मेरे लिए अवार्ड कुछ हद तक हर किसी के लिए मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश की ना मानसिकता यह, मरने के बाद अवार्ड देते हैं, धर्मेंद्र साहब को भी मरने के बाद ही दिया गया। तो ये चीजें हमें मानसिक, और इवन होता भी है आप कितना काम कर लेते हैं, अगर आप अवार्ड के लिए काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से काम करना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक तरफ ये भी है कि आप अगर काम करते हैं ना, तो गीता का श्लोक है, कर्म कीजिए या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो मैं उस गीता के ज्ञान को इतनी भली भांति समझता हूं और अपनी चीजों को बेहतर देने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये जरूर है, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत से अवार्ड हो गए है ना, पुराने अवार्ड, डिमके अवार्ड, और मतलब अच्छे अच्छे देश में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो है, पीछे फरवरी के अंदर, मुझे, मैं जहां से बिलोंग करता हूं हिमाचल हमीरपुर से, वहां पर ठाकुर राम सिंह जी हुए हैं, बहुत इतिहासकार के तौर पर उन्होंने मतलब भारतीय लेखकों को और इतिहासकारों को एक छतरी के नीचे लाकर कि भाई उन्होंने कहा कि जो विदेशियों ने लिखा है हमारे ऊपर इतिहास उसको ऑथेंटिक ना समझ के, क्योंकि वो तो उनका अपना परसेप्शन रहा होगा या वो कितना जानते हैं हमारे देश के बारे में, तो उन्होंने मुहिम छेड़ी। अभी उनका 111वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है वो था प्रोग्राम, वहां मुझे इतनी बड़ी ट्रॉफी जो मुझे मिली वो मेरे को इसलिए ज्यादा मतलब सुकून देती है कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैंने आपको बताया मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं बट आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां मेरी संस्था है एक रिसर्च, तो वहां पर सम्मानित होना मुझे बहुत गौरवशाली महसूस होता है
1: जी। हमीरपुर का जिक्र चला तो आपकी जो हालिया पुस्तक है मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी, टाइगर ऑफ इंडिया अनुराग सिंह ठाकुर, इसका विचार कैसे आया आपके मन में?
0: देखिये, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको ना शुरू में जब आपने मेरे से प्रश्न किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कई लोगों की आत्मकथाएं पढ़ी हैं, और मैं अब जीवन के उस पड़ाव पर हूं कि जो मेरे आसपास के रविन्द्रनाथ टैगोर या अम्बेडकर मुझे महसूस होते हैं कि जो कि समाज में इंस्पायरेशन के तौर पर देखे जाते समझे जाते हैं, मैं उन पर क्यों ना काम करूं। और जहां तक अनुराग ठाकुर जी की बात है तो वो 2008 में MP बने, मैंने उनको 1 अगस्त 2009 को दिल्ली में इधर हिमाचल

0: सदन है चाणक्यपुरी में, मैं उस समय कृषि जागरण एक पत्रिका मासिक पत्रिका होती थी और उसके लिए मैं बतौर एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संपादक था। तो मुझे मौका मिला, मैंने इनको अप्रोच करा, इन्होंने मेरे को बुलाया और हमने इंटरव्यू किया। लेकिन मैं उस पहले इंटरव्यू में, आज भी पड़ी हुई है वो पत्रिका
1: जी,
0: मैं देख के दम रह गया यार, ये यंग बंदा और जो है क्या मतलब जबरदस्त मेमोरी और मतलब और मैं सही बताऊं क्योंकि वो तो एमपी नए नए बनकर आए थे
1: जी।
0: लेकिन जो उनका ओरा था, जो उनके रिस्पॉन्ड थे, जो जो मैंने क्वेश्चन करे उनको, मेरे साथ बल्कि डोमिनिक सर भी थे जो उनके ओनर हैं, तो ना मुझे ये जरूर लगा कि यार ये ना लोकल नहीं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ऐसे लक्षण मैंने उनके अंदर देखे। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर एक बार मौका मिला मुझे, क्योंकि हमने 2011 में द्वारका परिचय करके, पहले न्यूज पोर्टल था, फिर हमने वो वीकली अखबार, फोर्टनाइटली अखबार लॉन्च किया था द्वारका से, तो फिर मौका मिला उनसे एक बार फिर भेंट होने का। तो फिर मैंने उनको एक बार इंटरव्यू किया, वो स्पोर्ट्स के ऊपर था, वो उनके शुरुआती दौर के ऊपर था, और मैंने उसमें बाई चांस अगले ही एडिटोरियल में उनके ऊपर एक एडिटोरियल ही लिखा था कि भाई ही कैन बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, और इंटरेस्टिंग बात सुनिए वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने भी
1: जी।
0: तो फिर उनका मिलना जुलना रहा, बल्कि वो द्वारका कभी एक दो बार इवेंट में आए तो फोन करते थे, बात होती थी। तो मुझे लगा कि यार ये जो है ना जिस रफ्तार से चल रहे हैं, और देखिए कमाल की बात, उसके बाद वो जो है पहले तो स्टेट मिनिस्टर हुए, उसके बाद वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन्फ्लुएंशियल ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज यूथ अफेयर्स, तो ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा फिर उनकी ना मेमोरी मैंने जो कई चीजें मेरे को लगी, फिर एक दो दोस्त थे बल्कि एक बार मिलना हुआ तो वो ना मेरे ब्रदर के ऊपर उन्होंने कंडोलेंस भेजा था, तो उनको मतलब 6-7-8 महीने बाद मिले मुझे, वो तब भी वो चीज को रिकॉल कर रहे थे। तो मुझे ये लगा यार किस्म की मेमोरी है। और फिर अभी पिछले साल की बात है, हमारे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना था, तो स्थापना दिवस तो प्रोग्राम उन्हीं के उस पर था निवास स्थल पर, तो वहां फिर मुलाकात हुई। तो निरंतर जो ये जो मुलाकातें होती रही, एक दो बार और किसी स्कूल में भी मिलना हुआ, एक बार द्वारका में मिलना हुआ, हमीरपुर में भी मिलना हुआ, और बल्कि रिसेंटली ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे अवार्ड की बात कर रहा था वहां पर भी मिलना हुआ। लेकिन उससे पहले मैं ना कल लास्ट ईयर जब मैं नेपाल गया था, गर्मियों के दिन थे, तो मेरे को जब क्योंकि लास्ट ईयर जब ये जनवरी की बात है जो उन्होंने दोबारा भेंट हुई उनके निवास स्थल पर, काफी बहुत बड़े काफी हिमाचली लोग कम्युनिटी के लोग थे, तो सब उन्हें सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये मुलाकात हुई। हेलो उन्होंने बल्कि अपनी वॉल पे मेरी उस मेरी पुस्तक भेंट करी उनको मैंने। तो मुझे लगा यार ये जो व्यक्तित्व है इनके ऊपर इसलिए लिखना जरूरी बनता है, मैं लेखक हूं, मुझे मेरे धर्म है कि अच्छे लोगों के ऊपर मैं क्यों ना लिखूं, और जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं
1: जी,
0: तो उनके ऊपर लिखने का ये कारण रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अनुराग जी से भी पीछे मुलाकात, बाई चांस एक प्रोग्राम में फिर मुलाकात हुई, बात हुई, अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन और वो छवि भी बहुत अच्छे प्रकाशन समूह से है इंडिया नेटबुक से, मुझे लगता मेरी पहली मैंने किसी पे जो है इस तरह से बायोग्राफी लिखी है, एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि ये बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि खासतौर पर उनके लिए जो भी अनुराग ठाकुर को आज जिस अंदाज में देखते समझते हैं
1: जी।
0: अब आज भी उनको लोग ये भी बोलते हैं कि सीएम हो सकते हैं वो हिमाचल के आने वाले समय में, बात सीएम और पीएम की नहीं है, मुद्दा ये है कि उस व्यक्तित्व ने कितने लोगों को प्रभावित किया है
1: जी।
0: तो उनकी लाइफ के ऊपर मैंने कोशिश करी, 18 चैप्टर है उसमें मैडम, तो बचपन से लेकर उनके सभी उनके जो भी जो उतार चढ़ाव या मैंने उसको पॉजिटिव एंगल से लिखा है, ताकि कोई भी अगर युवा अगर जीवन में कुछ करना चाहता है तो एक राजनीतिक क्षेत्र में क्या हाउ हम्बल ही विनम्रता है उनके अंदर, उन सब चीजों का उल्लेख किया है मैंने उसमें
1: जी। युवाओं को प्रेरणा देने की बात चली है तो मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि चलते चलते क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देंगे।
0: देखिए युवाओं के लिए संदेश तो जो है मेरी एक पुस्तक और आ रही है यू कैन राइज एंड साइन, वो अंग्रेजी में है, 46 उसके अंदर चैप्टर है। और युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ इतना संदेश जरूर देना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट पे ना क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र से आता हूं, लेखन क्षेत्र से और फिल्मांकन की बात करता हूं, मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा भी नहीं है,
1: और FTII से भी आप जो
0: हाँ बिल्कुल वहां से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया और जरूर करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए अगर आप ना कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए ना आपका एकेडमिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे दिशा मिलती है
1: जी।
0: और अगर आपकी दिशा सही होगी तो दशा अपने आप सुधर जाती है। तो युवाओं के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, मैं भी ऑनलाइन का प्रयोग करता हूं, लेकिन ना जो फील्ड मेरी एक बुक है रेंडेव्यू इन एंड ऑफ द फील्ड्स, उसका पर्पज ये था, मैंने जो मतलब मैंने इंटरव्यू वैसे फोन पे भी करे होंगे एक आधा कोई, लेकिन मैंने मैडम ऐसे इंटरव्यू करे

0: राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली कोच है उनको जाके स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके इंटरव्यू करना। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ना बहुत मेहनत करने की बहुत जरूरत है, काम करें वो। मैं पढ़ाता था स्टूडेंट बच्चों को जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के, कुछ बच्चे मेरे को ये कहते थे सर इंटर्नशिप दिला दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दिलवाएंगे कहीं बात करेंगे, या ऑनलाइन दिलवा दो। मैंने कहा फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी के अंदर। ये पत्रकारिता है, ये ग्राउंड पे उतर के होती है, चाहे रवीश हो, राजदीप, तो ये सब लोगों ने जीवन के अंदर अगर कुछ हासिल पाया है तो वो जमीन पे उतर के पाया है
1: जी।
0: तो ये सब चीजें, तो युवाओं के लिए यही संदेश है, खूब मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात है सपने जरूर देखें, तो उसके लिए यही है कि एक तो शांति रखें, जो आजकल बिल्कुल नहीं है पेशेंस। और उसके लिए एक फार्मूला सबसे बढ़िया बता रहा हूं आपके रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, कि म्यूजिक का जरूर शौक पालें, खेलों का जरूर शौक पालें। ये दो चीजें ऐसी हैं, आपको खेल आपको शरीर से जो है तंदुरुस्त बनाता है।
1: आप तो स्वयं खिलाड़ी
0: हैं। मैं खिलाड़ी रहा हूं, उसको मुझे बहुत लाभ मिलता है मैडम। और दूसरी बात संगीत, मैं रात को मैडम सोता नहीं, मेरा ऊपर कमरा है, मेरी वाइफ को पता है, बच्चों को पता है, मैं बिना गाना सुने और गाए सो नहीं पाता। आप एक बताइए, मैं दवाई खाने से बेहतर है ना कि मैं उस डोज को ले लूं।
1: ये नया टैलेंट हमें पता चला कि आप गाते भी हैं, तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि आपके गायन से ही हम कार्यक्रम का समापन करें।
0: चलिए आपने ये भी एक नई तो कई गाने हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है अभी अलविदा हो रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा ही गाना गाना चाहिए, है ना
1: जी।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
1: बहुत खूब। तो सुरेंद्र जी, गाना आपने बहुत अच्छा चुना, लेकिन हम इन शब्दों का पालन फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, हमें घड़ी का इशारा जो है वो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि अब हमें अलविदा तो कहना पड़ेगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपकी उपलब्धियों के बारे में और आपकी जीवन यात्रा के बारे में हम फिर से बात करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ रेडियो परिवार की ओर से। तो आज हमारे अतिथि में, हमारे अतिथि थे सुरेंद्र सिंह डोगरा। आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, साथ ही खिलाड़ी रहे हैं और सामाजिक सरोकार के बहुत सारे कार्यों से आप लगातार जुड़े हैं। अपने साथ और लोगों को भी आप जोड़कर आगे चलते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी जो हैं वो अपने समय का लगातार सदुपयोग करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला होगा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर काजल सूरी के साथ मैं नीलम मलकानिया अब हमारे अतिथि से लेती हूं आप सभी से अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी अतिथि। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक और उसके बाद होंगे समाचार और 10:10 पे आपका कार्यक्रम होगा आपकी पसंद का आपकी फरमाइश का जिसमें आप हमें भेजेंगे खूब ढेर सारे मैसेजेस। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

दिन के 10:30 पर रूबरू प्रोग्राम के तहत आज आप सुनेंगे पंडित साजन मिश्रा से जनाब विजय शंकर मिश्रा की बातचीत। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद दिन के 11 बजे नष्ट किया जाता है। 11:30 पर एक ड्रामा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिसका उन्वान है देखी सुनी, तहरीर एम एम खन्ना की होगी। 12 बजे खबरें नष्ट की जाएंगी।

12:10 से दिन के 1 बजे तक आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुन मेरा तुम्हारा दौरान प्रोग्राम प्रोग्राम तारीख साज नश्र किया जाएगा। दिन के 1 बजे आलमी खबरें नश्र की जाएंगी और इसके साथ ही 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशात इख्तिताम पजीर होंगी। सामईन, ये थी एक झलक आज की पहली मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशा खिदमत है सुबगाही प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत लीजिए सामिन अब सुनिए शब्द।

0: सामने अभी आप सांता सिंह से शब्द सुन रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम सुगाही अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे। समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। हालांकि उससे पहले जानते हैं कि आज का दिन और किन मायनों में खास है। 7 जून यानी आज का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक सुरक्षित और पोषक आहार की पहुंच सुनिश्चित कराना है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, विषैले पदार्थ, रसायन और अशुद्धताएं अनेक घातक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। ऐसे में ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है कि दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम की जाए, उनकी पहचान की जाए और लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक किया जाए। इसका थीम है कि बोझ से समाधान की तरफ जाने के लिए।
1: ट्रू,
0: बिल्कुल। तो हम एक तरह से अगर हम देखें तो भोजन से संबंधित जो बीमारियां हमको होती हैं उसका बोझ हमारे ऊपर किस तरह से हम देख सकते हैं कि साफ सफाई का हम उसमें ध्यान रख सकते हैं।
1: एग्जैक्टली exactly.
0: जब हम साफ सफाई से के साथ तैयार किया हुआ भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर वो पौष्टिकता लाएगा और शरीर हमारा

0: इफेक्ट होगा। अगर हम बात करें तो खाने की ताजगी पर भी इसमें एक पॉइंट लिया जा सकता है कि खाना कितना हम ताजा खाना खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
1: स्पेशली इट्स समर टाइम।
0: अब आपने समय की बात की तो इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि मौसम के अनुसार खाना भी हमको
1: सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट।
0: बिल्कुल, मौसमी फल और मौसमी सब्जियां जो हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में मुझे लगता है कि ज्यादा पौष्टिकता लेकर आएंगे।
1: एक्चुअली ट्रू,
0: बिल्कुल। और इसके अलावा श्रोताओं सबसे खास बात कि खाना जितना हो सके अपने घर का खाएं।
1: सो नाउ व्हाट शुड वी डू, वी शुड एक्चुअली टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन 1893 महात्मा गांधी who was practicing law in South Africa, faced racial discrimination and was denied entry to a train. So he was actually travelling from Durban to Pretoria with a first class ticket. Despite having a valid ticket, a European passenger demanded that authorities move Mahatma Gandhi to a different compartment because of his race. So Gandhiji refused, asserting his right to remain in the first class. So consequently, he was forcibly thrown out from the train at Pietermaritzburg station. So this incident, it is widely seen as a catalyst that ignited Mahatma Gandhi's dedication to civil rights and justice, and this paved the way for his future leadership in both South Africa and India.
0: बिल्कुल, और 7 जून 1929 को आज ही के दिन वेटिकन सिटी एक संप्रभु देश भी बना था। वर्ष 1975 में पहले विश्व कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में आज ही के दिन खेला गया था, और इसके 4 बरस बाद यानी कि साल 1979 में इस दिन भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम सोवियत संघ के बियर्स लेक से प्रक्षेपित किया गया। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज पुण्यतिथि है भारतीय भौतिक विज्ञानी और चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान के संस्थापक अल्लादी रामकृष्णन की। उन्होंने स्टैटिक प्रक्रिया, कण भौतिकी, मैट्रिक्स के बीज गणित, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान दिया। उत्पाद दर्शन पर उनका काम कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी में भी दिखाई दिया है। और आज ही पुण्यतिथि है नटराज रामकृष्णन की। वे भारतीय नृत्य शैली में पारंगत थे। नटराज रामकृष्णन आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे। वे संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी संपन्न किया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्णन के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्हें मराठा के तत्कालीन शासक द्वारा नागपुर में नटराज की उपाधि दी गई थी। नटराज रामकृष्णन को लगभग 700 वर्ष पुरानी नृत्य शैली पेरिनी शिव तांडवम को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। वर्ष 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम उन्हें याद कर रहे हैं जो कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे, जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की। आज उनकी जयंती है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। अब्बास ने अपनी कई फिल्मों और लेखों के लिए पटकथाएं भी लिखी। ख्वाजा ने राज कपूर की आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना जैसी फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। आइए सुनते हैं फिल्म हिना से ये कुछ गीत। अब्बास साहब ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत और अंत भी लिखा था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: Telling you about Khwaja Ahmed Abbas, a versatile writer. Well, his work spans 74 books, 90 short stories as well, around 3,000 journalistic articles and, well, a few plays as well. And, well, he's not just a jack of all trades, but king of them all too.
2: Sameen, abhi aap sun rahe the program Aaj Savere. Yeh Akashwani ki Urdu service hai. सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नष्ट की जाएंगी।

0: एजी शंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हमन सब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सड़क पार जाती तरसील सर को आसान बनाने के लिए मुश्तरक तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरक तकलीफ से मुतालिक मुफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खरान ने के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी ताउन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरक कमीशन की मुश्तरक सदारत करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल खत्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल खत्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान भारत का ताउन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल खत्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दिहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बनने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रूपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रूपये होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रूपये थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने साहेली कर्नाटक केरलम और माहे के मुख्तलिफ मुकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत अंडमान निकोबार जजायर कर्नाटक कोंकण और गोवा लक्षद्वीप महाराष्ट्र जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने 6वीं मरतबा ये चैंपियनशिप जीती है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन इमारतों की तामीर और बैन अल-अक़वामी सरहदों पर जायदाद के खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजीद मुकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत में सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपी हैं। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: वीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD3 डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अक़वाल ज़र्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मी फ़िरोज़ा।
2: हलाल और जायज ज़राए आमदनी से कमाया गया माल रिस्क हलाल कहलाता है। हलाल कमाई एक जामे लफ्ज है जिसका मतलब है کہ کمانے اور روزی حاصل کرنے کے ان تمام طریقے

सुर गाए जाते हैं सारे गामा पधा निशा, तो घराना तो सिर्फ एक स्टाइल आप सिंगिंग के नाम पे हो गया कि पर्टिकुलर कुछ घराने में स्वर लगाओ, किसी घराने में तानबाजी ज्यादा हुआ, किसी घराने में बड़ा लड़ंत बेरंत के साथ गाना हुआ। तो अगर तुम उसको, मैं कहूंगा, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं कहूंगा वो एकांकीपन है, और गाना अपना ऐसा बनाओ कि बगीचे की तरह रहे, गुलदस्ता बनाओ, ना कि सिर्फ गुलाब का बंच लेके घूम

0: ज्ञान को सुन के तुम उनसे अगर प्रभावित होते हो तो वहां से लेने में कोई गुरेज मत करना। जब इतना ओपन हो गए हम लोग, और उनकी तालीम में यही विशेषता थी कि 2 से 2.5 घंटा हम लोग को समझाते थे गाना, और उसके बाद में करीब करीब 1.5 से 2 घंटा वो लेक्चर देते थे। पुराने हमारे बनारस घराने के जो दिग्गज कलाकार हुए उनके विषय में बताना, या उस जमाने के जो बड़े लोग हुए उनके बारे में बताना, और उनका व्यक्तित्व का पूरा विवरण कराते थे हम लोगों को कि फैयाज खान साहब थे तो ऐसी टोपी पहनते थे, ऐसा मोश था उनका,
1: मेडल लगा के
0: सुरमा लगा के वो बैठते थे। तो हर व्यक्ति का एक विजन कराना, दर्शन कराना, भाई रामदास जी थे बेटा ऐसी पगड़ी बांधे हुए यहाँ।

0: तरीके से हम लोगों का गाने का शिक्षा शुरू हुआ। अहंकार नहीं आने दिए कभी, धरती पे रहो हमेशा, सब कुछ करने के बाद होश में रहो, धरती से पैर जुड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि बड़े भारी सेलिब्रिटी हो गए, पंडित राजन साजन मिश्रा कहलाने लगे, पद्म भूषण अवार्ड मिल गया या कोई भी अवार्ड मिल गया, तो उड़ना मत बेटा, धरती पे रहना और किसी का बददुआ मत लेना, दुआ लेना सबसे। तो ईश्वर की कृपा से हमारे जितने बड़े कलाकार हुए सब लोगों ने हम लोगों को दुआ दिया। और मजे की बात यह है कि जितने छोटे हैं वो भी हमारे लिए बेस्ट विशेष रखते हैं, उनका भी प्रेम है। और वो हमेशा मुंह पीछे पेड़ के पीछे भी यही बोलते हैं कि यार क्या भैया लोग हैं, कितना हम लोगों को प्यार देते हैं, हम इतने छोटे हैं फिर भी वो हमको भाई बोलते हैं। तो आप अगर दुआ लेते हैं तो ये अम्ब्रेला का काम करता है, छतरी का
1: जी।
0: कोई अगर आपका दुश्मन है, कोई आपको मारना चाहता है, तो उस छतरी पे ही पत्थर टकरा के गिर जाएगा, हमको नहीं लगेगा।
1: अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो ढेर सारे कलाकारों के बीच उठता बैठता हूँ, मिलता हूँ
0: जरूर,
1: और कभी भी आप दोनों भाइयों के लिए या आपके बच्चों के लिए किसी से भी मैंने कुछ खिलाफ नहीं सुना, शिकायत नहीं सुनी।
0: ये ऊपर वाले की और हमारे माता पिता चाचा चाची की आशीर्वाद है और सब शुभ चिंतकों का प्यार है।
1: सभी जी फिर आपको हम पीछे की ओर ले चलते हैं।
0: जी जी जी,
1: कुछ याद आता है मंच पर पहली आमद आपकी कब हुई, किस उम्र में, कहा?
0: देखिए बनारस में एक मंदिरों की परंपरा, आप भी बनारस से हैं, आप वाकिफ हैं, तो वहाँ बड़े सारे मंदिर हैं जहाँ अक्सर श्रृंगार हुआ करता था ठाकुर जी का। तो सोमवार का दिन है तो पुराने विश्वनाथ जी में जलसा होता था सत्यनारायण मंदिर के पास में, और कभी मंगलवार है तो बजरंगबली के दरबार में हो रहा है, दुर्गा जी का मंदिर है बहुत फेमस वहाँ होता था, एक गणेश मंदिर पे होता था हमारे पड़ोस में ही, एक नरसिंह चौतरा करके हुआ करता था मंदिर, वहाँ होता था। तो सबसे पहली हाजिरी जो होश की है वो मेरी उम्र रही होगी करीब 7 साल और भैया की 11-12 साल। तो उस समय नरसिंह चौतरा पे घर के पास में होने से मैं दागिन के पास में था, तो वहाँ हम लोग जाते थे। और उस जमाने में एक नियम था कि छोटे बच्चों की हाजिरी पहले होगी, फिर उसके बाद उनसे जो सीनियर है वो गाते थे, फिर उसके बाद में लास्ट में जो मोस्ट सीनियर होते थे वो गाते थे। तो एक तो सबको सुनने का अवसर मिलता था, और दूसरी बात यह है कि वहां पे गाने बजाने के बाद में हम लोगों को पूरी सब्जी हलवा सब देसी घी का खाने को मिलता था, और फिर 5 रुपए जो है वो हम लोगों को दक्षिणा के रूप में मिलता था। तो 5 रुपए का बड़ा भारी महत्व था
1: उस जमाने में।
0: हाँ जी, ये 64-65 की बात बता रहा हूँ। तो उस 5 आने का हम लोग 5 रुपए का बड़ा प्लानिंग करते थे कि पतंग ले आएंगे, कचौड़ी खाएंगे, ये खाएंगे, 5 रुपया चलेगा हमारा 10 दिन। तो ऐसे प्लानिंग करते थे, तो उसमें जाते थे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे। फिर उसके बाद 1967 या 68 में हम लोग संकट मोचन मंदिर, जो कि वहाँ बहुत बड़ा जलसा होता है, उसमें गाने का अवसर मिला। उस समय मेरी आयु थी 11 साल की और मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं भैया,
1: 16 साल
0: की उम्र थी उनकी। तो उस समय थोड़ा थोड़ा चर्चा शुरू हो गया था बनारस में कि राजन साजन कुछ कर रहे हैं और एक उम्मीद बन रही है। तो भगवान की कृपा से बनारस के जितने बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित हरिशंकर मिश्र जी, पंडित श्री चंद्र मिश्र जी, ऐसे बड़े कलाकार, और अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो महान कलाकार थे, पंडित लालमणि मिश्र जी, पंडित गंगराडे जी, राजभान सिंह जी, मतलब सभी कलाकार उस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का गायन हुआ। करीब 1.5 घंटा हम लोग 1.25 घंटा 1.5 घंटा गाए, और उसके बाद उन लोगों ने बहुत प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि अब पीछे मुड़ के मत देखना, अब आगे आगे ही चलना है और जितना परिश्रम करेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा। तो वो दुआ लेके हम लोग आगे बढ़े। फिर 70 में इंटरनेशनल लायंस क्लब का एक सम्मेलन हुआ बनारस में, जिसमें उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित किशन महाराज जी और हम लोगों का गाना,
1: वाह,
0: तो ये अवसर मिला नागरी नाटक मंडली में गाने का। तो वो पूरा खचाखच भरा था, हम लोगों ने गाया। अली अकबर खान साहब का पहली बार वहीं पे आशीर्वाद मिला, पंडित किशन महाराज जी तो हमेशा हमारे अपने थे तो वो देते ही थे आशीर्वाद। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत

0: फिर 1972 में भैया अपना एमए कर लिए सोशियोलॉजी से पंडित राजन मिश्रा जी, तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी उस समय यही निवास कर रहे थे। तो 72 में आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना प्रोफेशन संगीत नहीं बनाएंगे, हॉबी की तरह रखेंगे और इसको करेंगे। तो फिर चाचा जी ने कहा फिर क्या करना है, बोले मैं जॉब चाहता हूँ और उसके साथ साथ संगीत की साधना करूंगा और जो बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम होगा उसमें जाया आया करेंगे। ऐसे करके उन्होंने एक जॉब लिया डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल में, ऑफिसर ट्रेनी बने वो। और 6 महीना हुआ था, 1973 आ गया, तो सदगुरु जगजीत सिंह जी नामधारी संप्रदाय के
1: जी,
0: उनका यहाँ नामधारी फेस्टिवल चल रहा था। तो बेसिकली चाचा जी को आइटम बताने के लिए गुरुदेव सिंह जी सरोद्वादक हैं, वो आए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ सुरमंडल भी पड़ा हुआ खुला हुआ, तो उन्होंने कहा क्या पंडित जी आजकल आप सुरमंडल बजा के सरंगी बजाते हैं? बोले नहीं यार मेरे बेटे का है। अच्छा बेटे भी है आपके? बोले हाँ। राजन इधर हो। तो मिलवाया तो गुरुदेव सिंह जी ने कहा कि राजन जी आप क्या देसी गाते हैं? भैया बोले हाँ क्यों नहीं गाते हैं, मेरा बड़ा फेवरेट है। तो राग देसी उन्होंने सुना और वो इतने मोहित हुए कि अपने सदगुरु जी के पास जाके बोले कि सदगुरु आपसे एक प्रार्थना है, प्रोग्राम तो सब हो गया है, डिसाइडेड हो गया है, 3 दिन का फेस्टिवल, सारे आर्टिस्ट बुक हो चुके हैं, लेकिन एक कलाकार को आपको रखना है। तो बोले जगह कहाँ है? बोले कहीं भी 10-10, 15-15 मिनट कटिंग करेंगे, लेकिन उनको आपको सुनना है। इतना प्रेशराइज कर दिया सदगुरु को। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब राजन भैया अकेले यहाँ थे 73 में, मैं उस समय बीए कर रहा था, सेकंड ईयर था मेरा, तो गाना सुनने के बाद तो अवाक रह गए सदगुरु जी। और उनको पता लगा कि अभी ये ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपने पास बुलाए और बुला के उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? बोले अभी तो जॉब कर रहा हूँ, ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहा हूँ डीसीएम क्लॉथ मिल में। तो बोले मोहल्ले का असर पड़ गया है। बोले हुजूर मैं समझा नहीं। बोले भाई आप कबीर चौरा के मोहल्ले से आए हैं, एक जुलाहे का जो कार्य है कबीर जी का, वो कार्य आप डीसीएम मिल में कर रहे हैं, अब आप कृपया इसको बंद कर दीजिए और टोटल फोकस हो जाइए। तो एक संत के मुंह से ये वाणी सुन के भैया भी बोले कि ठीक है। और गाना भी ऐसा हुआ कि हेडलाइन बने पूरे फेस्टिवल का, राजन मिश्रा जी अभी भी मेरे पास में कटिंग्स हैं, तो फेस्टिवल हेड बन गए। उसमें बड़े बड़े कलाकार थे, भीमसेन जी, किशोरी जी, नसीर अहमद खान साहब, सभी लोग थे, कोई ऐसा छोटा नहीं था। तो एक उनको भी उत्साह मिला। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर वैसे तो हम अपने भाई के साथ गाते हैं। तो बोले नेक्स्ट ईयर। तो 73 में यही लकली हमारा ऑडिशन भी हुआ, 73 में हम लोगों को ए ग्रेड भी मिला, ईश्वर की दया से। उस समय लाइव होता था
1: जी,
0: तो 2 नंबर में पर्दा लग जाता था और ऑडिशन में बैठे हुए थे दिलीप चंद बेदी जी, सुमती मुटाटकर जी, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, जवाहरलाल मट्टू जी, माधुरी मट्टू जी, बिना चंद मोदगल जी। तो ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से अच्छा हो गया, वो लोग खुश हो गए,
1: सीधे ए ग्रेड
0: मिला। अब उसकी भी कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम आ गए तो साहब जो पहला कार्यक्रम मिला, लकली हम लोगों को रात को 10 से 11 का मिला, तो 10 से 11 प्रोग्राम हम लोग आगे कर रहे थे, एकदम नए नए आए थे, यहाँ भी बड़े लोग उत्सुक थे कि ये कौन आ गए भाई, कहाँ से आ गए। तो खैर बड़े सारे बुजुर्गवार थे, साबरी खां थे और अपने प्रेम बल्लभ जी थे,
1: अच्छा तबले पे
0: थे, मणि प्रसाद जी थे, बहुत लोग थे। तो सब लोग बड़ा आशीर्वाद दिए, हम लोग गाए। तो जब ड्यूटी रूम में पहुंचे तो ड्यूटी रूम से चेक लेना था, तो वहां पर ड्यूटी रूम वाले ने कहा कि वो आप लोगों की उम्र कितनी है? तो मैं 17-17.5 साल का था, 23 साल के करीब भैया थे। तो नीचे ऊपर देख रहा है तो भैया बोले उम्र पूछने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब का फोन आया था कि उनसे पूछो और मुझे बात करवाओ। तो भैया बोले अब तो 11:15 बज रहा है इस समय। बोले नहीं वो साहब मिलना है आप लोगों को, आप बात करिए। मिला दिए तो उनको विश्वास नहीं हुआ हम लोगों की उम्र पे। तो दूसरे दिन बुलाए, वो सेन साहब थे उस समय।
1: अच्छा,
0: हम लोग गए साहब उनके ऑफिस में, तो उसे नमस्कार किए, तो नीचे ऊपर देखे जा रहे हैं दोनों भाइयों को, बैठे

0: पूरा भी जैसे पूरा सर्च कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने देखते हुए कहा कि आप लोग इतनी कम उम्र में और ये आज 40 से 50 साल का उम्र का गाना गा रहे हैं, इसलिए मुझे बुलाना पड़ा। क्या स्टोरी है, देखिए आपका डेस्टिनेशन कैसे बनता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आकाशवाणी भवन में हम लोग डायरेक्टर जनरल साहब के साथ बैठ के ये बातें सुन रहे हैं, कॉफी पिलाई जा रही है, फिर उन्होंने अचानक अपने पर्सनल जो उनके पीए थे कपूर साहब, उनको बोले कपूर साहब देखिए बृहस्पति जी हैं, आचार्य बृहस्पति जी। तो वो गए तो टेबल पे नहीं थे, तो बोले साहब वो तो नहीं है। बोले अच्छा वो मंगलवार से कार्यक्रम शुरू हुआ है, जरा रजिस्टर ले आइए। रजिस्टर लाए तो अपना 8-10 मंगलवार तो सब आर्टिस्टों के नाम से बुक था।
1: नेशनल प्रोग्राम का रास्ता बन रहा है।
0: हाँ, जूनियर नेशनल प्रोग्राम उसको बोलते थे मंगलवार से। अब देखिए कहानी, तो वो वहां से जाके मंगलवार से का रजिस्टर था उठा लाए, आचार्य बृहस्पति जी थे नहीं, तो ले आए तो बोले कि देखिए कौन सा मंगलवार खाली है। तो शायद 4-3 महीने के बाद में एक मंगलवार खाली देखा, तो बोले सर ये खाली है, तो बोले उसमें इन लोगों का नाम लिख दीजिए और एक इनिशियल मेरे से ले लीजिए। ले लिए साहब, अब डायरेक्टर जनरल की बात है, बोले आप जाके वहां रख दीजिए, अगर आचार्य बृहस्पति जी हूं तो बता दीजिएगा। तो कपूर साहब जब गए और रजिस्टर रख के मुड़ रहे थे, तब तक आचार्य बृहस्पति जी का क्या पर्सनैलिटी था, वो आए, क्या बात है कपूर, कैसे आना हुआ। बोले सर वो सर ने रजिस्टर मंगवाया था मंगलवार से, तो मंगलवार से कार्यक्रम के लिए रजिस्टर मंगाया था। अच्छा आर्टिस्ट कौन है। बोले अभी पहला कार्यक्रम किए हैं और सर इतना खुश हो गए कि मंगलवार से दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। बृहस्पति जी आ गए कि सर ये क्या बात है, मतलब अभी पहली बार गाए हैं ये लोगों, इनको आप मंगलवार से दे रहे हैं। तो बोले भाई हमको गाना अच्छा लगा, हम दे दिए, हमारा भी तो कुछ

0: इवन रेडियो में भी नहीं आए थे ऑडिशन दिलवाने। तो ऐसे यात्रा शुरू हुई और उस जमाने में चेन बुकिंग हुआ करती थी रेडियो की। हम लोगों को पैसे की भी जरूरत थी, तो पहला कॉन्सर्ट हम लोगों को पूरा गुवाहाटी क्षेत्र इधर नॉर्थ ईस्ट का मिला। 16 कॉन्सर्ट हम लोग उस समय गाए थे, और ये बता रहा हूँ 74 की बात है। और 16 कॉन्सर्ट में जब हम लोगों को गुवाहाटी तक तो ट्रेन से गए, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाना था जो छोटा फ्लाइट होता है बॉम्बर, बॉम्बर में जाना था। तो हमारे साथ पंडित मिठूलाल मिश्र जी थे हारमोनियम में, और अपने बल्लू खां वारसी जी थे तबले में। यहां से तो हम लोग साहब बॉम्बर में बैठे, और जैसे ही बैठे वैसे ही अखबार रखा था, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना कि पहली बार प्लेन में बैठे तो हर चीज देख रहे हैं, ये है वो है। तो पेपर उठाए तो देख रहे हैं कि उसमें एयर इंडिया का फ्लाइट जो है बांद्रा में घुस रहा है पानी में, एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट। अब तो देखते ही पहली बार बैठे सिर मुड़ाए उले पड़े। तो खैर संकट मोचन भगवान का चालीसा शुरू हो गया जब तक यात्रा पूरी नहीं हुई ऐसे ही अपना। तो वहां से फर्स्ट जीवन में पहली बार वहां से यात्रा शुरू हुई। फिर तो धीरे धीरे
1: बनारस घराने के विषय में भी बताइए, आपका ताल्लुक इस घराने से है?
0: नहीं, बनारस घराना तो देखिए ताल्लुक तो है ही है। हमने अपने पहले ही थोड़े से उसमें कहा कि हम जरूर बनारस घराने को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सब घराने को बहुत अहमियत देते हैं। हर घराने की अपनी विशेषता है। बनारस घराने में एक चीज की जरूर ये विशेषता रही है कि गायन का जो शब्द है, जो उसका जो लिरिक्स है, उसको बड़ा स्पष्ट गाने का, ताकि लोग उस भाव से जुड़ जाएं। और दूसरा ये था कि लड़ंत गड़ंत उड़ंत,
1: अच्छा
0: लड़के भी गाओ, गड़े हुए में भी गाओ और उड़ो भी। तो वहां का उपज का जो एक प्रचलन रहा है वो कोई बंधा हुआ नहीं रहता है। जो मन में आ गया, जो समय पे आ गया, वही अपना उपज हो गया
1: जी।
0: तो बनारस घराने की एक बड़ी भारी विशेषता रही। और शब्दों को प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। सुर के प्रति भी आप उतने ही चैतन्य रहे जितना लय के प्रति है। तो बहुत सारे लोग हुए, विद्वान लोग हुए।
1: आपने शुरू से ही अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्र जी के साथ गाना शुरू किया
0: जी।
1: पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है।
0: बिल्कुल।
1: और उसने पंडित राजन मिश्र जैसे कलाकार को भी हमसे छीन लिया।
0: बिल्कुल।
1: इस समय आप अपने बेटे स्वरांश के साथ गा रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका कुछ और हो सकता है
0: जी।
1: कि आप जब उनके साथ गाते थे तो कार्यक्रम की बागडोर उनके हाथ में होती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अभी जब आप स्वरांश के साथ गा रहे हैं तो कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथों में है।
0: बस अब ये उनका आशीर्वाद है।
1: कैसा अनुभव करते हैं?
0: ये देखिए, जिसके साथ हम 57 ईयर स्टेज पर शेयर किए, 57 साल दोनों भाई हम लोगों ने शेयर किए, तो उसकी कमी तो कहीं से पूरी नहीं हो सकती। और रहा बात हमारे बेटे स्वरांश का, तो इनका भी फील्ड एक अलहदा फील्ड के ये थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में 2 बच्चे गाते हैं,
1: रितेश
0: रजनीश मिश्रा। तो ये था कि भाई अच्छा ये बड़े स्वच्छंद है और हमारे बड़े भैया के बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनसे ये खुल के बात करते थे। हम लोग तो थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन छोटे होने के नाते उनके बड़े लाडले थे। तो उनके गुजरने के बाद में इनसे हमने कहा कि देखो बड़े पापा गुजर गए हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। वो हमेशा कहते थे कि यार वो भी करो वो भी करो। तो जी जी जी पापा मैं देखूंगा। तब तक स्पीक मैके का प्रोग्राम आ गया। हम 5 महीना से गला नहीं लगाए थे, हम और बेटा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको गाना ही है। तो खैर हम लोगों ने गाया दोनों ने, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। तब से हमने कहा कि चलो बैठो हमारे साथ गाओ, हमको भी थोड़ा सा वो लगेगा कि नहीं कोई है हमारे साथ में बैठा हुआ। और अब करीब अभी हम लोग 10-12 कार्यक्रम कर चुके हैं। तो आप सबसे बस यही है, हमारे जितने शुभचिंतक हैं, कि वो सब उनको भी दुआ दें, हमको भी दुआ दें कि हम उस परंपरा को जीवित रख सके।
1: सजन जी, इन 2 वर्षों में कोरोना ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है
0: जी।
1: और ऑनलाइन म्यूजिक एजुकेशन, ऑनलाइन प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक साजों का उपयोग, ये सब शुरू हो गया है
0: जी।
1: एक क्लासिकल म्यूजिशियन होने के नाते आप इसको किस दृष्टि

0: विश्व देखते हैं, बहुत संक्षिप्त में।
1: देखिए ये मजबूरी है, मजबूरी बस ये सब करना पड़ रहा है गुरु को भी और शिष्य को भी, जबकि इस संगीत के लिए आपको अपने गुरु के सानिध्य में ही बैठ के, क्योंकि उस समय जो गुरु का एक्सप्रेशन है, भाव है, उनको अगर आप रीड नहीं कर पाए तो आप ये ऑनलाइन से आप उस चीज को रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु का सानिध्य, अब देखिए भगवान के दया से कोविड खत्म हो गया है और जो शिष्य ऑनलाइन थे उनको चाहिए कि वो अपने गुरु के पास आवे, गुरु का आशीर्वाद लें, क्योंकि सामने से जो बारीकियां समझी जा सकती हैं, जो त्रुटियां हैं उनको हटाई जा सकती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, संभव नहीं।
0: सजन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। आज घड़ी की सुई कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही है
1: जी।
0: मैं आपको विदा कहूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक म्यूजिकल नोट्स के साथ आप इस कार्यक्रम को विराम दें
1: जी।
0: मैं इन शब्दों के साथ विदा लेता हूं। चमन तुझसे इबारत है, बहारें तुझसे जिंदा है, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। और अब माइक आपके हवाले, एक म्यूजिकल नोट्स।

नहीं पसंद प्रोग्राम का पहला नगमा आपने सुना फिल्म आज और कल से आवाज मोहम्मद रफी की, नगमा निगार सनी लुधियानवी, तर्ज बनाई थी रवि ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश हिना फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, नगमा निगार और मौसीकार है रविंदर जैन।

सामेन अभी आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म से ये दो गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफीक का गाया हुआ यह प्यारा सा नगमा, फिल्म है नीला आकाश। और इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत।

0: والدي كنت بني أحسن
1: लेकिन मिलेगा क्या? अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, जेवर या गरम हुआ खजाना।
0: तो ठीक है फिर, आप आ
1: जाओ। ये कबक पत्थर जा सकते हैं।
2: अरे कोई बात नहीं,
1: यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
0: अरे अच्छी तरह देखो, जरूर कुछ होगा।
1: नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पत्थर पत्थर देखो, इस तरफ भी तो कुछ लिखा है क्या? लिखा है पत्थर को फिर सीधा कर दो।
0: सीधा कर दो,
1: कोई दूसरा बेवकूफ आता होगा
2: तो हम बेवकूफ बन गए।
1: हम बेवकूफ, आओ आओ इस पत्थर को फिर सीधा कर दो,
2: बेवकूफ बन गए।

0: अरे आप?
1: हाँ हाँ मैं। तुम क्या बात है?
0: कुछ नहीं, मगर आप और इस वक्त घर?
1: बस यही काम खत्म हो गया और घर चला आया।
0: नहीं जरूर कोई बात है, तुम तो लेट लतीफ हो, 8-9 से पहले घर कहाँ आते हो?
1: अरे बाबा कोई खास बात नहीं।
0: तो आम बात क्या है?
1: बात तो कुछ नहीं, आज तुम्हारा कबाब बनाने का प्रोग्राम था ना?
0: हाँ हाँ, मैं उसी के लिए मसाला तैयार कर रही थी।
1: जरा ज्यादा ही बना लेना।
0: क्यों, किसी और को दावत दे आए हो?
1: दावत? मैं भला क्यों किसी को दावत दूंगा, मगर वो किशोर है ना,
0: वो आर्मलॉक वाले।
1: हाँ आज उन्होंने अपने आप ही खुद को मधु कर लिया है।
0: अपने आप ही?
1: हाँ, मेरे मुंह से तुम्हारे हाथ से बने हुए कबाबों की तारीफ सुनकर उनके मुंह में भी पानी आ गया।
0: और अब ये पानी कबाब खाकर ही खत्म होगा।
1: हाँ।

0: अब तुम मेरी आदत तो जानती हो, जहाँ तुम्हारी इज्जत का सवाल है
1: वहाँ तुम कहीं चुकने वाले हो। फौरन हाँ कर दी होगी।
0: एकदम हाँ थोड़ी की है, पहले मना किया वो फिर भी नहीं माने, मैंने फिर कभी आने के लिए टाल दिया, फिर उन्होंने आज के लिए जोर दिया।
1: किस्सा कोता आप मान गए।
0: अब तुम ही बताओ, कौन मत नहीं चाहता कि उसकी बीवी के हाथ के बने हुए खाने की तारीफ हो।
1: तारीफ होगी तो और लोग भी तो कबाब खाने को अटकेंगे जनाब।
0: नहीं नहीं मेरी तौबा, मैं किशोर साहब को भी मना कर दूंगा कि किसी से तुम्हारी तारीफ न करें। हाँ तो बेगम, आज का प्रोग्राम तो पक्का रहे ना?
1: ठीक है, आज तो कबाब खिला दूंगी, मगर ये दावते रोज रोज नहीं चलेंगी, समझे?
0: समझ गया बेगम, बिल्कुल समझ गया।
1: मगर एक बात और।
0: बोलो बोलो।
1: तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है, तुम खामखा दूसरों को और ज्यादा खाने पर मजबूर करते रहते हो।
0: मैं क्या करूं बेगम, जहाँ कोई तुम्हारे खाने की तारीफ करता है मैं भी थोड़ा सा और खिलाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ।
1: तो कान खोलकर सुन लो, आज ये नहीं चलेगा, जितना मसाला है उसी के हिसाब से कबाब बना देती हूँ, लेकिन और लाने के लिए जोर मत देना।
0: नहीं नहीं, आज कुछ नहीं कहूँगा, चाहे वो तुम्हारी कितनी ही तारीफ क्यों न करे।
1: बिल्कुल,
0: आज तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं, अब जाकर कबाब बनाने शुरू करो और वो आते ही होंगे।
1: अच्छा मैं चलती हूँ।
0: अब जा भी चुको। आइए आइए आइए जनाब आइए।
2: क्यों जनाब, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई?
0: नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए।
2: लगता है भाभी जान कबाब बना रही हैं। सारी गली में खुशबू आ रही थी, तुम्हारा घर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
0: बेगम बेगम, कबाब बन गए हूँ तो ले आओ।
1: अभी लाएगी।
2: आदाब बजा रहा हूँ भाभी जान।
1: आदाब, ले लीजिए कबाब।
2: आज भाई साहब ने आपके हाथ के बने हुए कबाबों की इतनी तारीफ की कि मैं खाने के लिए हाजिर हो गया।
1: आइए आइए, शौक से आइए, ले लीजिए, जैसे भी बने हुए कबाब हाजिर है।
0: खाओ और हमारी बेगम को दुआएं दो।
2: वाह मजा आ गया, कितने खस्ता और करारे बने हैं कबाब।
0: जरा सॉस से मिला के खाओ, फिर देखो इनका स्वाद।
2: मैं खाऊं?
0: अरे भाई लो भी।
2: खा तो रहो।
0: बेगम सुनना, कबाब खत्म हो गए हैं और ले आना।
1: और कबाब? हाँ हाँ अभी लाई, ये लीजिए।
2: भाभी आप भी बैठी है ना?
0: हाँ तुम भी खाओ।
1: मैं भी खा रही हूँ।
2: भाभी ये कबाब बनाने का आर्ट कहाँ से सीखा?
1: अपनी अम्मा जान से।
2: मेरी बीवी अपने मायके से आ जाए तो उसे भी सिखा दीजिएगा कबाब बनाने का तरीका।
1: हाँ जी जरूर सिखा दूंगी, कब तक आएंगी वो?
0: किशोर तुम कबाब खाओ।
2: हाँ खा रहा हूँ।
0: कबाब तो खत्म हो गए, बेगम और बना लाओ ना।
1: भाई साहब आपके यहाँ इस किस्म की कौन सी चीज बनती है?
2: आलू मटर के कटलेट।
1: तो हो जाए किसी दिन दावत कटलेट की।
2: हाँ हाँ जरूर,
0: क्यों नहीं बेगम, कटलेट तो खाएंगे ही, मगर यहाँ कबाब नदारत हो चुके हैं।
1: कबाब? हाँ तो मैं कह रही थी।
2: बस बस भाभी अब तो पेट भर गया, मगर इतने मजेदार कबाब बने हैं कि नीयत ही नहीं भरी।
0: अभी देखती क्या हो, और कबाब बना लाओ।
1: कबाब? हाँ
2: बस बस, बहुत मजा आया आज कबाब खाकर।
0: अभी लो लाओ ना, किशोर साहब भी क्या याद करेंगे कि हमारी बेगम के हाथ के बने हुए कबाब खाए थे।
2: बस बस भाई साहब अब मैं चलूंगा। भाभी जान बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया की क्या बात है, मगर वो कटलेट की दावत नहीं भूलिएगा।
2: हमारी घर वाली आ जाए तो दावत पक्की।
0: मगर इन्हें कबाब तो और खिला दो।
2: नहीं नहीं बस। अच्छा आदाब भाभी जान।
1: आदाब।
2: आदाब भाई जान।
0: आदाब। क्या हुआ, मजा आ गया, बहुत खुश गया है तुम्हारे कबाब खाकर।
1: खुदा का शुक्र है इज्जत रह गई।
0: क्या मतलब?
1: मैं पूछती हूँ तुम्हारी आदत कब ठीक होगी?
0: मैं समझा नहीं।
1: जब मैं तुम्हें बता चुकी थी कि कबाबों के लिए ज्यादा मसाला नहीं है, तुम और लाने के लिए जोर न देना।
0: मैं बेगम कबाब की तारीफ करता रहा और मैं भूल गया कि मुझे और कबाब लाने के लिए मजबूर नहीं करना।
1: मैंने उसे इधर उधर की बातों में लगाने की बहुत कोशिश करी, मगर तुम बार बार और कबाब लाने के लिए ही कहते रहे।
0: बेगम मेरी आदत, मैं क्या करूँ बेगम?
1: मैंने तुम्हें कई बार इशारा भी किया मगर तुम फिर भी नहीं समझे।
0: नहीं मैंने तुम्हारा इशारा नहीं समझा।
1: और फिर मैंने हार कर मेज के नीचे तुम्हारा पाँव भी दबाया ताकि तुम समझ जाओ कि और कबाब नहीं है।
0: क्या तुमने मेरा पाँव दबाया था?
1: हाँ हाँ दो बार।
0: दो बार तो तुमने मेरा पाँव नहीं दबाया, तुमने गलती से किशोर का पाँव दबा दिया है।
1: हाय अल्लाह, तो क्या मैं किशोर?
0: हाँ तुम उसका पाँव दबाती रही और वो समझ गया कि और कबाब नहीं है।
1: तभी तो वो खाते खाते एकदम उठ खड़ा हुआ था। हाँ ये क्या हो गया।

दोबारा टेप रिकॉर्ड और फिर कुछ सिग्नल दे रहा है, शायद कुछ सुनाना चाहता है। जिंदगी से अनमोल चीज क्या होगी, वो इन दो मोहब्बत करने वालों की।

0: Tony? Tony? Tony?
1: Oh, sì, Carlo.
0: Sì? A pesante di me?
1: Non mi dica. Sì, Carlo. Non è capimento, questa carità.
0: Per te non mi leggono?
1: A chiave tanto, mi dica, Carlo. Ma... इसमें कोई मुश्किल न फंसा हूँ
0: अजू हम भी तो सुने क्या मुश्किल है कुछ बताओ ना
1: सीता सीता मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ
0: भूल जाओ ये कैसे हो सकता है टोनी कितनी सीढ़ियां प्यार की तो तय कर ली अब जब मंजिल सामने है तो मुझसे कहते हो भूल जाओ
1: हाँ सीता कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सके तो मुझे माफ कर देना बस बस मैं मैं कुछ और नहीं कह सकता
0: मगर तुम्हें हुआ क्या है किसी और से तो
1: कैसी बातें करती हो रीता मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की तुम मेरी जिंदगी हो रीता
0: किसी और से प्रेम विरेम तो नहीं हो
1: गया ओ, प्रेम विरेम तो क्या हो गया रीता अब तो ये खाली फ्रेम रह गया है
0: साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ब्याह नहीं कर सकता
1: नहीं नहीं तुम ठीक कहती हो रीता मैं तुम्हारे साथ ब्याह करके बेवा नहीं बना सका
0: बेवा ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो
1: मैं सच कह रहा हूँ रीता
0: लगता है तुम किसी चक्कर में पड़ गए हो कहीं किसी जोची वोचे ने तो कुछ नहीं कह दिया तुम्हें
1: अरे कहना क्या है रीता ये बीमारी का चक्कर है
0: नो बीमारी
1: हाँ रीता रीता मैं बहुत बीमार हूँ
0: मगर देखने में तुम बिल्कुल अच्छे भले लग रहे हो
1: हाँ रीता ये मैं हर वक्त तो कम नहीं करता

गरीब मदारी का भी भला। आज तो भाइयों मैं यहाँ झोली बिछा देता हूँ, सिर्फ चक्कर लगाऊंगा। हिंदू देगा राम के नाम पर, मुसलमान देगा खुदा के नाम पर और सिख देगा वाहे गुरु के नाम पर। अच्छा तो मैं चक्कर लगाता हूँ।

0: ये क्या हो रहा है? बांसुरी कौन बनकर रहा है? छू छू काली महाकाली, खाए पान बजाए ताली। मेरे साथ शरारत हो रही है, ये कौन है भाई जो मेरी बांसुरी बनकर रहा है? मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुझ गरीब की रोटी क्यों छीन रहे हो भाई? क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? मेरी रोजी बर्बाद कर रहे हो? चीज चटा दम दम दम जंतर मंतर, मंतर तंतर काम तरंतर जंतर मंतर। छू छू छू तो नहीं मानता। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चक्कर लेकर ही रहेगा। तो बता तू कौन है? है माई का लाल है तू सामने आए, एक बार करे एक बार सहे। अरे अरे चुप क्यों है, चुप क्यों है, सामने क्यों नहीं आता? अरे उसे पीर उस्ताद की कसम, पीर उस्ताद वाला है तो सामने आए। अरे आप कौन है जो मेरा डंडा और ये झोला उठा रहे हैं?
1: बारी इतनी देर से तो बुला रहा था।
0: ओह तो तुम हो वो बहादुर जो मुझ पर छुपकर वार कर रहे थे? क्यों भाई, मुझे किस तरह यकीन आए कि मेरी बांसुरी तुम ही ने बंद की?
1: हमने बांसुरी बंद की है, खोल कर भी दिखा सकते हैं।
0: अच्छा तो खोलो बांसुरी।
1: छोटी का दूध, दूध बहुत का खून, बहा का सुरमा, तालाब का रून।

0: मेरी बांसुरी बंद नहीं हुई थी, मैं तो नाटक कर रहा था।
1: अच्छा, बांसुरी बंद नहीं हुई थी तो अब हो जाएगी।
0: अरे तुम बंद करोगे?
1: हाँ, तेरे उस्ताद की दुआ से।
0: और जो बंद ना हुई तो?
1: तो मैं तुम्हारी शागिर्दी कर दूंगा, बोलो तो तुझे मेरा शागिर्द बनना पड़ेगा।
0: मंजूर, रखो शीरनी।
1: बोलो, 1000 रुपया तेरी रखो।
0: अरे ये लो। और तो भाइयों, अब मामला कुछ संगीन है, जरा खामोशी से खड़े रहे भाइयों। लेकिन लेकिन अपनी जेब पॉकेट से होशियार, कहीं ऐसा ना हो आप तमाशा देखते रहे और माल मनिया ऑर्डर हो जाए और रसीद भी ना मिले। मेहनत करूं मैं और कीमत कोई और ले जाए। अब तो अजनबी, तू मेरी बांसुरी बंद करेगा?
1: करेगा।
0: अरे तो करो बंद, मैं बजाता हूँ बांसुरी।
1: आज इस मेदारी को संभाल।
0: बासी बंद हो गई। हाँ भाई, अरे तुम हो पीर उस्ताद वाले, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो भाई। भाई तुम जरूर कोई पहुंचा हुआ जादूगर है। मैं अपने बड़े बोल पर तौबा करता हूँ, तू जीता मैं हारा, आज से मैं तेरा शागिर्द और तू मेरा उस्ताद।
1: तो अब आया सीधी राह पर।
0: लेकिन लेकिन उस्ताद, मुझे वो राज तो बता।
1: वो राज है, वो तावीज मेरे बाजू पर बंधा हुआ है। जी हाँ, ये तावीज, इस काले धागे में लिपटा हुआ ये कागज का पुर्जा मेरे पहाड़ की गुफाओं में एक बुजुर्ग ने आता किया था और कहा था, जा बच्चा जा, दुनिया का भला कर, इससे हर तकलीफ दूर होगी। हाँ, बीमारी से नजात, मुकदमों में जीत, दुश्मनों की हार, महबूब से मुलाकात, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न हो, मिलने के लिए बराबर तैसेगा। दुनिया भर का जादू टोना इस ताबीज पर असर नहीं कर सकता।

हमनाए हुरमुज में बैनुल अक्वामी बहरी सलामती को खतरा बन रहे इन यकतरफा ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। सेंटकॉम ने बताया कि ये ड्रोन्स स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबी गुजरगाह में तिजारती और बैनुल अक्वामी जहाज रानी के लिए खतरा बन रहे थे। सेंटकॉम ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजें हाई अलर्ट पर हैं और खत्ते में मजीद किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत की। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया था कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। रूसी हुकाम ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाके में गैर मुतवक्के हमला किया है। लेनिनग्राड खित्ते का मुहासरा करने वाले 140 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया है। गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजेंको ने 4 साल से ज्यादा अरसे कबल जंग शुरू होने के बाद पहली बार रिहायशियों से घर के अंदर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है, तहम कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की इत्तला मिली जिससे रिहायशी इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क के ड्रोन्स ने सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके में 1000 किलोमीटर का फासला तय किया था, जिसने रूसी बहरिया के हथियारों और रोंडेट्स में एक अड्डे को निशाना बनाया। रूसी बहरिया के बाल्टिक बहरी बेड़े की मरकजी चौकी क्रोनस्टैट भी वाक है। तो है कि जेलेंस्की आज यूक्रेन के कुछ मजबूत यूरोपीय इत्तेहादियों वजीर आजम सरकी स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के लिए बरतानिया का दौरा करेंगे। कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेशगी रसाई और फरोख्त से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी ग्रोहों का काम है जो तलबा और उनके कुटुंबों की बेचैनी पर पनपते हैं। एनटीए ने कहा कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। एनटीए ने कहा कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुक्काम से इसे हटाने और कार्रवाई कराने में मसरूफ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन न करें, न ही इस तरह के किसी मैसेज को आगे बढ़ाएं और न ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। एनटीए ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नजरअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए एनटीए की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इनसार करने की अपील की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 14.2 किलोग्राम वजन वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रूपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 942 रूपये हो गई है, जिससे पहले 913 रूपये थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकाम पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत, अंडमान और निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकाम पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह ओडिशा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डॉन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता वर्षों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का ताउन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफी मजबूत हो रहा है और अगली एक दहाई

0: के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मरतबा ये चैंपियनशिप जीती है, जो कि एक रिकॉर्ड है। फाइनल मैच में मैच शुरू होते ही भारत शुरू से ही बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जाजा ने गोल करके भारत को सबकत दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की जानिब से ऋतुपर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैनफीडा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से बढ़त दिला दी और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया। इस तरह भारत ये मैच 3-1 से जीत गया। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में आज भारत न्यू चंडीगढ़ में खेल के दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स शुरू कर रहा है। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने भारत की पोजीशन काफी मुस्तहकम कर दी है, जबकि शुभमन गिल 103 रन पर अभी भी खेल रहे हैं। साहिद अहसन ने भी 81 रन बनाए, लेकिन वो पहले टेस्ट सेंचुरी बनाने से महरूम रहे। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। खेले गए फाइनल मैच में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती वर्षों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। और अमरीकी फौजों ने आबनाए हुरमुज के करीब ईरान के 2 हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम, मिले सुर मेरा तुम्हारा।

मैंने सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम का पहला नगमा आपने सुना फिल्म विष्णु देवा से, आवाज़ें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, नगमानिगार अनजान तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

नगमाता फिल्म साजन का घर से आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की, बागबानगार समीर तर्ज बनाए थी नदीम शरवन ने। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना फिल्म वक्त से। साहिल लुधियानवी के बोल को मौसीकी से सजाया है रवि ने।

0: फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मार्गो में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। मंगोलिया में उलान बातर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट के तीसरे दिन भारत ने मजीद 6 तमगे जीते हैं, जबकि एशियन गेम्स में खेलने वाले जगलान और नौ उम्र पहलवान काजल दोचक ने अपने अपने जोरों में सोने के तमगे जीते। खास खबरें एक बार फिर, भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अमरीकी फौजों ने अबनाए हुरूज के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। रूसी हुकाम ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को ऐसा हमला करार दिया है जो माजी में कभी नहीं हुआ है। और फुटबॉल में भारत ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी मर्तबा खवातीन की सेफ चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती विरसों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अमरीकी फौजों ने अबनाई हुरमुज के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। रूसी हुकाम ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले को ऐसा हमला करार दिया जो माजी में कभी नहीं हुआ है। और फुटबॉल में भारत ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं मरतबा ख्वातीन का सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। सामेन, ये थी इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। यह वक्त होता है पहले मजलिस के इख्तिताम का। सहपहर 3 बजे हम अपनी दूसरी मजलिस की नशात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।

0: इस मधुर गीत के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: वैसे
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी सुपरहिट फिल्म है 20 साल बाद, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर आपके साथ आपके प्यारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी एक परिवार की है जिस पर 20 साल पुराना अभिशाप मंडरा रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि एक औरत की आत्मा ठाकुर परिवार से बदला ले रही है। ठाकुर और उसके बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद अब खतरा ठाकुर के पोते कुमार पर है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है महान गायक हेमंत कुमार ने।
5: नजरों से कह दो जी

वाह, हेमंत कुमार की आवाज का जादू आज भी वैसा ही महसूस होता है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपको एक बार हमारा ईमेल पता हम आपको बता दें। आप इस मेल के जरिए हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। तो इस पर आप हमें अपना मेल भेज सकते हैं। आपका मेल जरूर शामिल किया जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में। और आपको आज की फिल्म की कहानी और उसके गीत कैसे लग रहे हैं, इस बारे में भी हमें मेल भेजकर जरूर बताएं। तो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब कुमार गांव आता है तो उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुमार का किरदार यहां बखूबी निभाया है विश्वजीत ने। इसी बीच कुमार की मुलाकात होती है गांव की चंचल, सुंदर और भोली भाली लड़की राधा से। राधा की भूमिका निभाई है हिंदी सिनेमा की उत्कृष्ट अभिनेत्री वहीदा रहमान ने। वहीदा जी ने अपनी सहज अभिनय और खूबसूरत अभिव्यक्तियों से इस किरदार में जान डाल दी। धीरे धीरे कुमार और राधा के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है, लेकिन दूसरी ओर रहस्य भी गहराता जाता है। क्या है वो रहस्य? क्या सचमुच कोई आत्मा कुमार यानी विश्वजीत का पीछा कर रही है, या फिर कोई इंसान इस पूरे खेल के पीछे छिपा है? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म 20 साल बाद का एक और लोकप्रिय गीत,

ये हम आपके मेल शामिल करने वाले हैं। पहला मेल हमें मिला है, अजीत भवसार का। उन्होंने लिखा है, प्रिय आरजे जी, नंदा जी नमस्कार, तो आपको भी मेरा नमस्कार। मेल भेजा है, शामिल करें, कुछ आरजे मेल नहीं पढ़ते। सर ऐसा नहीं हो सकता है, आप सब हम सभी का मेल शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, समय की पाबंदी की वजह से हम कभी कभी कोई एक आध मेल छूट जाता है। ये मेल हमें मिला है वीरम गांव गुजरात से, और अजीत भवसार परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हमें मिला है संजय ढींगिया जी का, इनके साथ है नमन और अपार ढींगिया जी। नमस्कार, आज की फिल्म 20 साल बाद के गीत और जानकारी पसंद आ रही है। लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है, ये हमारे अगले श्रोता हैं, अगले दोस्त हैं, धर्मेंद्र छिप्पा जी, कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार आदरणीय मैडम जी, आपको भी मेरा नमस्कार। 20 साल बाद फिल्म के बारे में आपने बेहतरीन प्रस्तुति के साथ विस्तार पूर्वक जो बातें बताई, इनको बहुत पसंद आ रही हैं। इनको इनके नगमे भी, इस फिल्म के नगमे भी बहुत पसंद आ रहे हैं, धन्यवाद। ये मेल हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिप्पा जी के साथ कपिल और पूजा परिहार ने हमें ये मेल भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है संजय ढींगिया जी का, बागपत उत्तर प्रदेश से। इन्होंने भी आज की, इनको भी आज की जानकारी, फिल्म से जुड़ी जानकारी इनको पसंद आ रही है। लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये मेल हमें भेजा है, पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर से। तो हमें मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका, आप हमें अपने संदेश भेजते रहिए और हम आपका संदेश अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। और एक और मेल मैं ले लेती हूं। स्वरण सिंह का मेल हमें मिला है गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से। इन्होंने भी, इनको भी ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इनको गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। स्वरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी हमें मेल मिलते रहेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूं। तो मेल के बाद हम फिल्म 20 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुमार सच का पता लगाने में जुट जाता है। अंत में खुलासा होता है कि ये किसी भूत प्रेत का मामला नहीं, बल्कि रामलाल नाम के व्यक्ति की बदले की योजना थी। रामलाल की बेटी ही वो औरत थी जिसके साथ ठाकुर ने अन्याय किया था। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए रामलाल ने ये पूरा रहस्य और डर का जाल बिछाया था। सच्चाई सामने आने के बाद रामलाल आत्मसमर्पण कर देता है और कुमार तथा राधा का मिलन हो जाता है। फिल्म के अंत में इस बात का पता चलता है कि ये किसी आत्मा का नहीं, बल्कि एक इंसान के बदले का खेल था। यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। फिल्म अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की दूरी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी शॉर्ट में। यदि आपको इस फिल्म का पूरा आनंद लेना है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों 20 साल बाद फिल्म में हर कलाकार ने अपनी बेहतरीन कलाकारी से हम सभी का दिल जीता है। फिल्म के नायक विश्वजीत ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि दर्शक उनके प्रशंसक बन गए। फिल्म की नायिका वहीदा रहमान के अभिनय की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि हर दृश्य में दर्शकों की नजर उन पर टिक जाती थी। एक और रोचक बात यह है कि फिल्म की प्रेरणा प्रसिद्ध लेखक ऑथर कॉनन डायल के उपन्यास द हाउड ऑफ द बास्करविल्स से जुड़ी मानी जाती है, यानी भारतीय परिवेश में प्रस्तुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रहस्यमय कथा। अब बात करते हैं फिल्म के पुरस्कारों की। फिल्म 20 साल बाद के लिए शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया। लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, केशव नंदा को सर्वश्रेष्ठ संपादन और SY पाठक को सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया। दोस्तों फिल्म 20 साल बाद केवल एक रहस्य फिल्म नहीं थी, ये उस दौर की ऐसी फिल्म थी जिसने साबित किया कि बिना बड़े बड़े तकनीकी प्रभावों के भी दर्शकों को सीट से बांधकर रखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फिल्म 20 साल बाद से जुड़ी जानकारी और उसके मधुर गीत। तो अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। और चलते चलते सुनते जाइए इस फिल्म का एक और मधुर गीत, और गीत के साथ साथ मैं कुछ संदेश भी शामिल करूंगी। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को विदा दीजिए। नमस्कार।

आपके संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अगला संदेश मिला है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगाधर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का।

अगला मेल हमें आया है देवेंद्र भाटकर जी का नागपुर से। इन्हें फिल्म की कहानी अच्छी लगी और साथ में गीत भी अच्छे लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए।

एक और मेल मैं शामिल कर लेती हूँ। ये मेल हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है शांति नगर सोनीपत से। इन्हें भी आज की फिल्म की कहानी और गीत पसंद आए। आपका बहुत बहुत

हमें मिला है अहमद फूल वाले जी का, इन्होंने ये भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से, इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य। प्रसारक जी को दिल से आदाब, आदाब आपको भी नमस्कार। आज की फिल्म 20 साल बाद के सभी नगमे और कहानी हमें खूब पसंद आई, तो आप

संदेश हमें मिला है, उषा मोहन जी ने हमें ये संदेश भेजा है। नमस्कार, नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुति के लिए, धन्यवाद। ये मेल हमें भेजा है पीटीआई संसद मार्ग से। इसी के साथ आज का हमारा एक ही फिल्म से प्रोग्राम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:40 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: देने के लिए कहा। ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कोई समस्या का समाधान होगा।
1: विश्व साइकिल दिवस से संबंधित पंजाब के नेता जी कुमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला ने 7 किलोमीटर साइकिलिंग रैली करवाई के तंदुरुस्ती से अपना जीवन शैली और वातावरण स्थिरता में उत्साहित करने वाला संदेश दिया। इस साइकिलिंग रैली 300 तो वर्ष साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। उधर डेकाथलॉन जलंधर वालों भी फिट इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेल भारतीय पंजाब जिला साइकिल एसोसिएशन जलंधर और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब के सहयोग में विशाल साइकिलोथॉन करवाई गई। करीब 5 किलोमीटर के साइकिलोथॉन की जलंधर समेत पंजाब के वक् जिलों के साइकिलिस्टों और स्काई राइडर्स के कई होर क्लबों समेत साइकिलिंग समूहों ने हिस्सा लिया। पंजाब के होरना जिलों में भी विश्व साइकिल दिवस के संबंध में वक् वक् प्रोग्राम करवाए गए। खास खबर एक बार फिर सुनो। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया सांझे कमीशन की मीटिंग की सह प्रधानगी की। सरकार का कहना है कि भारतीय घरों में विश्व पद्धर से सब तो घट कीमतों से रसोई गैस मिल रही है। भारतीय चोन कमीशन वालों वोटर सूचिया की विशेष गहन सोध के मद्देनजर पंजाब के सारे 24,453 वोट केन्द्रों से विशेष कैंप लाए जा रहे हैं। अज विश्व खुराक सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सुरक्षित भोजन प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। इसके नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6 बजे लेके होगा। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे कलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीके खास मौजूदात हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाकवामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखने पर जोर दिया है। सीबीएसई के 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच के लिए आज आधी रात तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। खबरें तफसील से। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगी ओनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ करना जरूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉ जयशंकर ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं के बारे में तफसीली गुफ्तगु के मुंतजिर हैं, जिसमें सियासी, दिफाई सिक्योरिटी, बहरी, तजारती, सरमायाकारी, सेहत, दवासाजी, खुराक की यकीनी फराहमी, सियाहत, तालीम और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। हमारे नामनिगार का कहना है कि भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतहर्रिक जाने कलीदी साझेदारी का जायजा लिया जाएगा और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत और 9 मादियाती तारीख है और दोनों मुल्कों ने अपनी आजादी के बाद सियासी खुद मुख्तारी, इकतसादी खुद के पालक और आजादाना खारजा पॉलिसी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इकतसादी, दिफा, नीज साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताबुन में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। जनवरी 2001 में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के बाद वजाय खारजा की सतह पर एक मुश्तरका کمیشن طریقہ کار کی تشکیل ہوئی تھی اور 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جکارتا کے دورے کے بعد بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے تعلقات کو جامع اسٹریٹجک ساجیداری کی سطح تک پہنچا دیا. اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے بھارت بین الاقوامی خطے میں بحری اشتراک سے متعلق ایک مشترکہ ویژن اختیار کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے جس سے

0: ने कहा कि मनुष्यात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मनुष्यात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरहदी जिलों में माली डिसिप्लिन को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। वज़ीर मौसूफ ने यह हिदायत दी कि कलेक्टरों और जीएसटी अहदेदारों को तरबियत दी जाए और बराह रास्त टैक्सों का मरकजी बोर्ड जाली करेंसी के ताल्लुक से सर्वे कराए। इस मीटिंग में त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा, चीफ सेक्रेटरी जेके सिन्हा, डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग धनखड़ और दीगर सरकर्दा अहदेदार, नीज सभी 8 सरहदी जिलों के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट मौजूद थे। सरकार ने कहा है कि एलपीजी की बैन अल्कोमी कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद भारत में घरेलू सारिफिन को जिस कीमत पर खाना पकाने की गैस मिल रही है वो आलमी सतह पर सबसे कम कीमतों में शामिल है। एक बयान में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि भारत में गैस सिलेंडर किसी भी पड़ोसी मुल्क के मुकाबले सस्ता है और साथ ही इसकी कीमत अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी जदीद मईशतों वाले मुल्कों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत से कहीं ज्यादा कम है। वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद साल में पहले 4 सिलेंडर पर 300 रूपये की बहरास्त रियायत हासिल करने के बाद 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 642 रूपये अदा करते हैं, जबकि दिल्ली में आम सारिफिन के लिए एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा कीमत अब 942 रूपये हो गई है। अगली दहाई के दौरान तेल की आलमी मांग में इजाफे में तकरीबन आधा हिस्सा भारत की तरफ से होगा, जबकि बिजली की आलमी खपत में इजाफे का 15% हिस्सा भारत का होगा। सेंट पीटर्सबर्ग बैन अल्कोमी इक्तसादी फोरम ने इजहार ख्याल करते हुए रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सरबराह इगोर सेटिन ने कहा कि 2035 तक भारत की तेल की खपत में 44% तक इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है और इस तरह ये बढ़कर 80 लाख बैरल यूमिया हो जाएगा। सीबीएसई के 12वीं क्लास के इम्तिहान के लिए नतीजों के बाद के सर्विस पोर्टल पर पर्चों की दोबारा जांच और मुख्तलिफ उमूर की तस्दीक के लिए दरख्वास्त देने का आज आखिरी दिन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कहा है कि मस्कूरा पोर्टल आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तलबा से कहा है कि वो वक्त की हद खत्म होने से पहले अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल करके दाखिल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता मलयाली अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 साल के थे। वो एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सलीम कुमार ने शुरू में स्टेज पर दूसरे अदाकारों की नक्काली करके और टेलीविजन के कॉमेडी शोज के जरिए शोहरत हासिल की। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख माडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक के जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 77वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर माडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाज हिस्सों, तमिलनाडु के बकिया हिस्सों और शुमाल मशरक रियासतों में अगले 2-3 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भारत ने आज सुबह अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत के इस बड़े स्कोर में केएल राहुल

0: first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to first class for a re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Sunil Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564/8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का राजा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा

0: जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अमित शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी ट्रस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिन्हें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य

0: और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा कृष्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्ची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इश्कमानु मोरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य

0: सांघिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है दोपहर के 2:30 और प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार, आदाब। एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी का एक बार फिर हर रोज की तरह सिने जगत के एक बेहतरीन कलाकार की बातें, उनकी सदाबहार फिल्मों के किस्से और साथ ही प्यारे प्यारे गीत लेकर जुड़ गए हैं हम आपके साथ इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से। साथियों, आपकी बेसब्री को दूर करते हैं और बता देते हैं हमारे आज के कलाकार कौन हैं। हमारी आज की कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट युग की एक बेहद प्रसिद्ध और खूबसूरत भारतीय अभिनेत्री बीना रॉय। जी हाँ, तो जो श्रोता हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टाइम से फिल्में देखते आ रहे हैं उनको याद आ गई होंगी हमारी आज की कलाकार बीना रॉय। वैसे उनको हम मुख्य रूप से उनकी फिल्म अनारकली, घूंघट और ताजमहल जैसी फिल्मों के लिए भी, बेहतरीन भूमिकाओं के लिए भी जानते हैं।

वाह, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। लता द्वारा गाया ये अमर गीत, जिसमें बीना ने अनारकली और प्रदीप कुमार ने सलीम की भूमिका निभाई थी, दो संस्करणों में प्रस्तुत किया गया था। सी रामचंद्र ने इसकी धुन तैयार की थी और राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे थे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में हो गया, अलविदा का मुखड़ा बेहद खूबसूरती से गाया गया। साथियों, आज आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में बीना रॉय के बारे में, अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। साथियों, बीना रॉय का जन्म 4 जून 1931 को लाहौर यानी जो अब पाकिस्तान में है वहां हुआ था, और बीना रॉय का असली नाम कृष्णा सरीन था। अगर बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो इसकी शुरुआत बड़ी संघर्ष से भरी रही, क्योंकि उनके परिवार में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, जैसा कि हम अधिकतर परिवारों में देखते हैं। लेकिन कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेने की जिद करी, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी कर दी और घर वाले आखिर मान ही गए। यहाँ हम आपको बता दें कि वो प्रतियोगिता जीत कर 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार भी ले आई। आप समझ सकते हैं उस समय 25,000 रुपए की क्या कीमत रही होगी। जी हाँ, और इतना ही नहीं, किशोर साहू की फिल्म काली घटा जो 1951 में आई, उसमें मुख्य भूमिका भी निभाने का मौका शामिल था। इस तरह उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, तो कामयाबी और शोहरत भी मिलती चली गई।

साथियों, ये मधुर मिलन हो रहा है हमारा इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और हमारी आज की कलाकार हैं अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा बीना रॉय। साथियों, बीना रॉय ने अपने 18 साल के करियर में लगभग 28 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई ऐतिहासिक और क्लासिक साबित हुई। आपने बीना रॉय की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? हमें लिख भेजिए उन फिल्मों के नाम अपने पसंदीदा उसी फिल्मों के गीतों के साथ। हो सकता है आज के कार्यक्रम में सबसे पहले उन्हीं श्रोताओं से हो शुरुआत। तो भेजने के लिए ईमेल एड्रेस तो आप सबको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ एक बार दोबारा, ipradiodelhi@gmail.com। तो बने रहिए अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ और स्वागत कीजिए आई झूमती बहार के इस गीत के साथ।

आशा करते हैं आपके दिलों को भी करार पहुंचा होगा इस गीत को सुनकर, क्योंकि इतने खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आज आपको गीत सुनने को मिल रहे हैं, जिसकी फरमाइश आप हर दम करते हैं अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ पर किसी न किसी कार्यक्रम के दौरान। और आज कार्यक्रम है एक ही कलाकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीना रॉय की। साथियों, गीत से पहले हम हमारी आज की कलाकार बीना रॉय की कुछ बेहतरीन फिल्मों की बातें कर रहे थे, तो यहाँ सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे उनकी फिल्म अनारकली का, जो 1953 में आई थी। इस फिल्म में शहजादा सलीम के साथ उनकी अनारकली की भूमिका अमर हो गई और इसके गाने आज हम सबकी जुबान पर है। और जहां तक मैं स्क्रीन पर देख रही हूं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इस फिल्म के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने। और अगर आपको याद हो तो कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी फिल्म के एक खूबसूरत से गीत के साथ हमने करी थी। लेकिन इससे भी पहले उनकी एक और फिल्म घूंघट की बात करें, जो 1960 में आई। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं फिल्म ताजमहल में प्रदीप कुमार के साथ उनका मुमताज महल का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ। आइए इस बात पर यहाँ एक उन्हीं की फिल्म का लोकप्रिय गीत सुनना तो बनता है ना।

वादे के मुताबिक हम आ गए हैं गीत के बाद एक बार फिर और जुड़ चुके हैं आपसे कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो साथियों, हमारी आज की कलाकार बीना रॉय ने अपनी पहली फिल्म काली घटा के सह कलाकार और दिग्गज अभिनेता प्रेमनाथ से शादी करी। साथियों, अपने अभिनय करियर की चरम सफलता के बाद उन्होंने 1968 में फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक शांत निजी जीवन बिताया। 78 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको हमारा नमन।

साथियों, हमारा जिया तब लगता है जब हम आपके मेल अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि आपको कार्यक्रम सुनकर कैसा लग रहा है। तो आज के कार्यक्रम में हमारी जो सबसे पहली ईमेल आई है वो आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके सभी साथी। और अगली मेल हमारी जो आई है वो आई है हमारी सोमदत्त जी की, नाभा जिला पटियाला पंजाब से। सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, और इन्होंने किसी फिल्म का नाम लिखा है। तो साथियों, ये फिल्मी प्रोग्राम नहीं है, ये एक ही कलाकार प्रोग्राम है। तो अगर हमारी ये कलाकार इस कार्यक्रम में, इस गीत में होती तो हम जरूर सुनवाते, तो शायद आपने कार्यक्रम को ध्यान से नहीं सुना। और अगली ईमेल आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी की, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, खुश रहो खुशियां बांटो के स्लोगन के साथ। तो भाई आप भी खुश रहिए। और अगली ईमेल आई है कार्यक्रम एक ही कलाकार में, हमारी साथी हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। पहले हम साथी का नाम बता दें, धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार जी। और बकायदा कार्यक्रम के बारे में लिखा है, दौर के बेहतरीन दिग्गज कलाकार बीना रॉय पे लिखा, अभिनेत्री बीना रॉय की जानकारी के बारे में उन्होंने ढेर सारी जानकारी दी है। तो इसके बारे में हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना, इतने गौर से सुना। तो आप सभी साथियों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और अगली जो ईमेल है वो है मसूर हसन जी की, ये है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके साथी। अगली ईमेल आई है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, और ये लिखते हैं शुभ दोपहर, नमस्कार जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, गाने, जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद साथी जो आपने इतने अच्छे से कार्यक्रम को सुना और उसकी सराहना की। आपकी सराहना, आपकी प्रशंसा हम लोगों में उत्साह वर्धन करती है। और अगली ईमेल आई है वड़िंग खेड़ा से, पंजाब से आप हैं मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, माफ कीजिएगा। और ये अगले साथी हैं हमारे छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, कार्यक्रम एक ही कलाकार, आज के कलाकार हैं बीना रॉय, और फिल्म ताजमहल गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और इसके बारे में आपने जानकारी लिखी है तो अच्छा लगा ये जानकारी पढ़कर जानकर। और अगली जो आई है ये है, ये ईमेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। तो धन्यवाद साथी। और ये आई है नवी हसन जी की, लेकिन आपने कहाँ से भेजी है ये नहीं लिखा है। अगली ईमेल आई है हमको सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने भी थैंक्स लिखा है और बहुत सारी विशेस लिखी हैं, थैंक यू सो मच आपका। और इसी के साथ आई है हमें दिग्दर्शन गौड़, स्वर्ण सिंह, हीरामणि, डीकेपी परिहार और बहुत सारे साथियों की। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और इसी गीत के साथ अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए इजाजत।

0: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामع कलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूआत हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाकवामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और इमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती विरसों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयाली अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। अमरीकी फौजों ने अबनाए हुरमुज के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। और क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ व्हाइट टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं। मीटिंग के आगाज पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ करना जरूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के कायम के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉ जयशंकर ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं के बारे में तफसीली गुफ्तगू के मुंतजिर हैं, जिसमें सियासी, दिफाई, सिक्योरिटी, बहरी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत व दवासाजी, खुराक की यकीनी फराहमी, सियात, तालीम और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। हमारे नामा निगार का कहना है कि भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुताहरिक जामع कलीदी साझेदारी का जायजा लिया जाएगा और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सड़क पार जाति तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मुफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉ एच जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी ताउन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब सुशील खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाकवामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन, इमारतों की तामीर और इमलाक की खरीदो फरोख्त पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया है। जनाब अमित शाह ने त्रिपुरा के सरहदी इलाकों के ताल्लुक से बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर कोर्ट हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किदा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यह हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला ने यह हिदायत भी जारी की है कि पिछले 5 साल के जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली दहाई के दौरान तेल की आलमी मांग में इजाफे में तकरीबन आधा भारत की तरफ होगा, जबकि बिजली की आलमी खपत में इजाफे का 15% हिस्सा भारत का होगा। सेंट पीटर्सबर्ग बैन अलाकवामी इकतसादी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए रूस की तेल कंपनी रूसनेफ्ट के

निर्वाह इगोर सेचिन ने कहा कि 2035 तक भारत के तेल की खपत में 44% तक इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है और इस तरह यह बढ़कर 80 लाख बैरल योमिया हो जाएगा। उन्होंने भारत को क्लीनी साझेदार मुल्क करार दिया और कहा कि तवानाई की आलमी खपत में भारत सरकर्दा रोल अदा करने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि तेल मार्केट में भारत का एक मुनफरिद मकाम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि यह एहसास मेजर अभिलाषा की शानदार खिदमत और अक़वामे मुत्तहिदा की कायम अमन से मुतालिक कोशिशों में भारत के तवील अरसे से जारी इश्तराक व तआवुन का एक एतराफ़ है। नौजवानों के उम्र और खेलों के महकमे के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग से कुरैर्स साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 77वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉ मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया इख्तियार करें। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि ये एक तहरीक बन गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता मलयाली अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 साल के थे। वो एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तीन दाइयों पर मुहित अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में अदाकारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुद्दाकार अदाकार सलीम कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सलीम कुमार ने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान हमाजैद और यादगार किरदारों के जरिए अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी है। आज दुनिया भर में फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद फूड सेफ्टी को एक मुश्तरका हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करना है। साथ ही ये दिन इज्तिमाई तौर पर इकदाम करने का एक बासर मौका भी फराहम करता है। इस साल का मौजू है मसले से हल तक हर जगह महफूज खुराक। ये दिन सफाई सुथराई और खेत से लेकर खाने तक साइंसी तौर तरीकों के जरिए फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने ज्यादा सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए महफूज और हाइजीनिक खाने के प्रति सरकार के अहद का इरादा किया। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गए हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद हिस्सों, तमिलनाडु के बकिया हिस्सों और शुमाल मशरकी रियासतों में अगले 2-3 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और साहली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को आज 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के आखिर में अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद ये एक वसी तर इलाकाई बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया जिसमें एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए और आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खतरा पैदा हो गया और साथ ही लबनान में फिर से कशीदगी बढ़ गई। इधर अमरीकी मरकजी कमान ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हुरमुज के ऊपर परवास करने वाले ईरान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मरतबा ये चैंपियनशिप जीती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन की 2026 की सैफ चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल का मुजाहरा किया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। इसमें जामा क्लीदी साझेदारी और भामी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलावी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और इमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर

0: स्रोत दिया है। भारत ने बातासे मराकिज और सिकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं और कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

बाजीगर फिल्म का नगमा भी आपने सुना कुमार सानू और साथियों का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण को सुनिए, फिल्म का नाम है बेवफा।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब सुनिए जनाब रिफत सरोज का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है दिलों के रिश्ते।

0: की शाम इतना ही। ये लिदर की बहने की नगमा रेज आवाजें, ये देवदार के झूमते दरख्तों से अटकेलियां करती हवा, ये चीड़ के सेहत बख्श झोंके, क्या जन्नत इससे भी हसीन होगी? किसी ऐसे ही माहौल में किसी ने ऐसा कहा है, गर फिरदौस बर रूए जमीं हस्त, हमी हस्त। आज यहां बरसों बाद आया हूं, एक नशा सता रही है। कितना तरस गया था मैं इस नजारे के लिए,
1: यहाँ कौन ठहरा हुआ है?
2: एक मेरी बीबी है।
1: अरे भाई, वो नाम हम कुछ मालूम है?
2: मालूम है साहब, बगैर पूरी मालूमात के तो हम यहाँ किसी को ठहरने ही नहीं देते। कोई गुलाम खादर है।
1: अच्छा अच्छा।
2: सेंट्रल लैंड के उधर से आए हैं अपनी बीबी के साथ, अमन कारवा के साथ कश्मीर घूमने आए हैं।
1: अच्छा,
2: वो इधर के हैं साहब और उनकी बीवी उधर की है।
1: मैडी भाई, तुम तो बड़े होशियार चौकीदार हो। पूरी मालूमात हासिल कर ली है।
2: गेस्ट हाउस के मैनेजर साहब पूरा इत्मीनान करने के बाद ही किसी को यहाँ ठहरने की इजाजत देते हैं। साहब, दोनों मियाँ बीवी बहुत शरीफ हैं।
1: अच्छा अच्छा। अरे भाई, शराफत चेहरे पर नहीं लिखी होती
2: है। कुछ तो कुछ लिखा होता है साहब चेहरे पर, और मेरी बूढ़ी आंखें चेहरे पढ़ सकती है।
1: अच्छा अच्छा, सुनो, अगर उनका नाम गुलाम कातिर है तो ये लो, ये मेरा कार्ड उन्हें दे दो।
2: अच्छा साहब, मगर आप कौन है साहब?
1: मैं श्रीनगर के एक अखबार का एडिटर हूँ।
2: ठीक है, ठीक साहब, ठीक। मैं आपको पहचान गया था। आप तो यहाँ कई मीटिंगों में आ चुके हैं।

0: con...
1: ¡Arre! ¡Arre!
0: ¡Arre! ¡Shahiriza! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Va, va, va!
1: ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Shahiriza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Andra ahí, andra ahí! ¡Nafisa! ¡Enséñamelo! ¡Ye mere bachpan ke dost hai! ¡Shahiri! ¡Journalist hai!
2: ¡Acha!
1: ¡Aur ye hai tumhari bhabhi! नफीसा
2: आदाब
0: आदाब नहीं वाकई बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर
2: अरे तशरीफ रखिए ना
1: भाई बहुत सवेरे सवेरे आ गए
0: अरे भाई फिर तुम घूमने निकल जाती ना तुमने मुझे तो आने की इत्तला दी नहीं देखा ना मैंने अपने जराए से मालूम किया और तुम्हें ढूंढ निकला

0: दरअसल शहीदी साहब, मैं अपने इस विजिट को मुश्तहिल नहीं करना चाहता था। इरादा किया कि खामोशी से आऊं, कुछ दोस्तों से मिलूं और चला जाऊं। नफीसा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, जरा नाश्ते का बंदोबस्त करो।
1: हाँ, क्यों नहीं, अभी।
2: हाँ भाई, तो अब बताओ दोस्त, भाई क्या प्रोग्राम है, क्या टारगेट है तुम्हारा?
0: बोलो बोलो।
2: शादी?
0: तुम्हें शायद यकीन नहीं आया कि मैं सिर्फ अपने माजी से मिलने आया हूँ यहाँ। अरे, तुम तो जर्नलिस्ट हो, हर शख्स को शको शुभा की निगाह से देखते हो। दोस्त, एक लम्हे के लिए सोचो, क्या जरूरी है कि हर आदमी खुफिया प्रोग्राम बनाकर यहाँ आए? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और जानते हो कि मुझे इस जगह से कितना लगाव है। देखो, हमें कल ही किसी बात मालूम होती है, हम लोग जिसमें तुम भी शामिल थे, कॉलेज के दिनों में यहाँ किस तरह आते थे और खूब धूम मचाते थे।
2: बैटबाजी करते थे।
3: अरे मैं क्या याद दिलाया तुमने बाबा।
1: भाई, हम बैटबाजी इस शर्त पर खेलेंगे कि गुलाम कादिर अपनी शेर ना सुनाए।
0: क्यों नहीं, आपको शेर ही तो सुनने हैं।
2: हाँ भाई, मैं भी शगुफ्ता से मुत्तफिक हूँ। मैं गुलाम कादिर की ये ऊट पटांग शायरी हमारे खेल में नहीं चल सकती।
0: देखो देखो, तुम्हें मेरी शायरी को ऊट पटांग कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कॉलेज मैगजीन का एडिटर हूँ और कॉलेज के मुशायरों में हमेशा इनाम जीतता हूँ।
1: वो बात अपनी जगह, मगर आज इस वक्त हम आपकी शेर नहीं सुनना चाहते।
2: बिल्कुल,
0: जो मिजाजे यार में आए।
3: अच्छा अच्छा भाई, बहस खत्म, बहस खत्म। भाई, मैं और शाहिदी एक तरफ और तुम दोनों एक तरफ, शगुफ्ता और कादिर।
1: अच्छा,
3: ठीक है। लेकिन मैं, एक शर्त है मेरी।
1: क्या?
3: यार कोई घटिया शेर नहीं पाले जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मंजूर है। नात के शेर से शुरू करो।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो भाई, अर्ज किया है
3: जी।
2: हाँ भाई
3: जी जी,
2: तो अर्ज किया है
3: जी।
2: मोहम्मद हुस्न यूसुफ
3: जी,
2: हरफे ईसा नूर यज़ा है।
3: वाह, बेशक बेशक।
2: मोहम्मद वजह हस्ती बाई से तख्लीक इनका है।
3: वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: नून का शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए।
3: क्या बात है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए।
1: पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
3: भाई शगुफ्ता साहिबा, मुलाहिजा कीजिए।
1: निशात
3: जी, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी आपने शेर दिया या शगुफ्ता से कुछ कहा?
3: भाई ऐसा है, अपनी अपनी समझ है।
1: ये का शेर
3: जी।
1: याद थी हमको सभी रंगारंग बज्म आराइयां। याद थी हमको सभी रंगारंग बज्म आराइयां, लेकिन अब नक्शो निगार ताकि निसियां हो गयी।
2: भाई अब मीर का शेर अर्ज करता हूँ
3: जी,
2: और खास आपके लिए।
3: क्या बात है, क्या बात है।
2: न हम समझे न तुम आए कहीं से, नाम समझे न तुम आए कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जमीन से।
0: पसीना पोंछिए अपनी जमीन से। जी जनाब, क्या मैं इसे छिंटेबाजी कह सकता हूँ?
3: जी नहीं, सिर्फ शेर आई है। और पसीना पोंछिए जमीन से अपनी।
1: ये का शेर दिया है।
3: हाँ, ये का, ये का।
1: सुनिए
3: जी, बताए।
1: यही तो जवाब मोहब्बत था नक्शब।
3: वाह,
1: यही तो जवाब मोहब्बत था नक्शब। मेरे शेर उसने मुझे को सुनाए।
2: वो खुलते जाते हैं अब बज्म नाज में। अर्ज किया है
3: जी,
2: यानी वो खुलते जाते हैं अब बज्म नाज में
3: जी।
2: क्या फर्क रह गया भला नाजो नियाज में।
3: क्या बात,
1: मेरा ख्याल है मौसम खराब होने वाला है, बादल गरज रहे हैं।
2: हाँ, गलेनी आज भी हर्फ आरज़ू लब पर ना सका, मौसम बदल गया। ये नफी हमारे किस्मत के मिसाल यार होता।
1: चलते चलते अलिफ का शेर। अभी तो जिंदगी बाकी है किस्मत आजमाने को।
3: अभी तो जिंदगी बाकी

0: आती है किस्मत
1: आजमाने को, अधूरा छोड़ते हैं दोस्तों अब इस फसाने को।
2: अच्छा भाई तो शगुफ्ता अब तुम कहवा बनाओ, हम लोग अभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: बेतबाजी ने बीते दिनों की याद दिला दी। क्या शादी चुप क्यों हो गए? शगुफ्ता बहुत अच्छी लड़की थी, मगर मगर मगर वही हुआ जिसका डर था। मेरा सेकुलर नजरिया और गरीबी आड़े आई। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो कॉलेज की तालीम पूरी किए बगैर अपने वालदेन के साथ पाकिस्तान चली गई। उसके बाद
2: उसकी शादी हो गई?
3: शायद नहीं, मगर फिलहाल रसूला नहीं है। अब रास्ते खुले हैं तो इरादा कर रहा हूँ कि उधर जाके देखूं। हाँ, तुमसे भी इस बारे में मशवरा करना है।
2: शादी मैं तो कहता हूँ कि ख्याल अच्छा है। दरअसल ये जोग्राफियाई दूरियां दिलों को दूर नहीं कर सकती, पर आजकल तो हालात बहुत साजगार होते जा रहे हैं। अब देखो ना, तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि आ मिले हैं सीना चाकाने चमन से सीना चाक।
4: वाकई कादिर, तुम्हारे आने के बाद तो ऐसा महसूस होता है जैसे यकीनन वो मेल मिलाप और मोहब्बत का जमाना लौट के आ जाएगा।
2: हाँ दोस्त,
4: जब बीते दिनों की वाकयात की याद करता हूँ तो दिल में एक होश से उठती है। कैसे कैसे दोस्त थे, वो रमेश कौल, वो मदन काचरू, अरे कितनी जवानी से उर्दू बोलते थे। और बात बात पर इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे।
2: क्या बात है, तुम तो एक जर्नलिस्ट हो, आखिर क्या वजह है कि दूरियां इतनी बढ़ गई हैं?
4: दूरियां कराई गई हैं, मसनूई हैं। और हाँ, तुम्हें याद है वो जगदीप टिक्कू?
2: जगदीप टिक्कू?
4: हाँ,
2: वो कॉलेज के ड्रामों में हमेशा पीर जी का रोल किया करता था।
5: वही,
2: पहचानना भी मुश्किल था कि वो हिंदू या मुसलमान।
5: अरे भाई भाई, वही भाई, आज तो वो एक बहुत बड़ा लीडर है।
2: अच्छा,
5: और कश्मीरी तहजीब का दिल दादा है।
4: और भाई बिल्कुल सही कहता है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर की कोई तस्वीर मुकम्मल हो ही नहीं सकती।
2: बेशक।
4: पर हाँ, उसे हाल ही में अपने दोस्त वो क्या नाम है रहीमुद्दीन डार के साथ मिलकर श्रीनगर में एक फैक्ट्री भी लगाई है।
2: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: अरे भाई, आप लोग बातें करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी?
2: अरे जरूर खाएंगे।
1: आइए आइए ना, मेज पर गरम गरम चाय और पकौड़े आपका इंतजार कर रहे हैं।
2: आइए शायरी साहब, फिर हो जाए चाय।

0: भाई दोस्तों, आज की शाम हमारे दोस्त गुलाम कादिर के नाम। आज ऐसा लगता है कि बीता वक्त लौट आया है। श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड की चहल पहल और इस रेस्तरां में हम सब मिलकर वाजवान खाएंगे। ये शाम हमारे सरहद पार से आए हुए गुलाम कादिर और उनकी बेगम नफीजा के नाम। भाई गुलाम कादिर ने तो अपना बचपन और जवानी के दिन यहीं गुजारे। इस रेस्तरां में न जाने कितनी शामें हम लोगों ने मिलकर गुजारी और वाजवान खाए हैं। और आज खास तौर से इस्तकबाल है नफीजा भाभी का, वो शाहिदी की ही नहीं अपने इस देवर जगदीप टिक्कू की भी मेहमान है, पूरी वादिये कश्मीर की मेहमान है। वो अमन के कारवां की शान बनकर हमारे शहर में आई हैं। उन्हें श्रीनगर का एक एक चप्पा दिखाना है।
1: शुक्रिया टिक्कू भाई, कादिर साहब ने मुझे बहुत जगह बहुत पहले ही दिखा दी हैं। हम पहलगाम में दो दिन रुके, फिर गुलमर्ग और खिलनमर्ग गए। इन खूबसूरत मकामात के नजारों को मैंने अपने कैमरे में बंद कर लिया है और अब रावलपिंडी वालों को जाकर दिखाऊंगी। मुझे तो यहाँ के

0: लोगों की सादगी, मेहमान नवाजी और मासूमियत बहुत ही पसंद आई और शालीमार और चश्मे शाही पर बहुत लुत्फ आया।
1: तो क्या आपने डल झील में शिकारे की सैर नहीं की?
0: अरे कैसे नहीं की, भला उस सैर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। डल झील में शिकारियों की चलती फिरती दुकानों से फल फूल खरीदने का लुत्फ ही कुछ और है। हाँ। और फिर कादिर मुझे चार चिनारी ले गए। वहाँ हम काफी देर बैठे और बारी बारी चिनारों के साये का लुत्फ उठाया।
1: भाई देखिए, हम आपसे तो शिकायत कर नहीं सकते, लेकिन हम गुलाम कादिर से तो शिकायत कर सकते हैं कि श्रीनगर में अकेले अकेले सैर की और हमें शरीक नहीं किया, हमें मेजबानी का मौका नहीं दिया।
2: अरे भाई टिक्कू, सच्ची बात तो यह है कि हमें यह अंदाजा ही नहीं था कि तुम वादी में वापस आ गए हो।
1: वापस आ गए क्या मायने? भाई ये वादी मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है। हम कश्मीरी पंडितों ने इस वादी को और हसीन बनाने की कसम खाई है। मैंने यहाँ गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर पश्मीना की शालों की फैक्ट्री भी लगाई है।
3: अरे भाई हमारे जगदीप टिक्कू तो भाई एक मिसाल है आज के माहौल में, और इनकी वजह से रमेश कौल, हमारा वो पुराना दोस्त, वो अरे वो हंसी का फुब्बारा, वो क्या नाम है, वो मदन काचरू भी, भाई वो दिल्ली से श्रीनगर वापस आ रहा है।
2: अरे हाँ शायरी, तुम्हें शगुफ्ता का अता पता मालूम है?
3: अब हाँ।
2: तो वो कहाँ है?
3: मेरे दिल में।
2: अरे यार शायरी मत करो, अगर तुम उसका पता बता दो तो मुमकिन है कि नफीसा इस सिलसिले में कुछ मदद कर सके।
0: क्या सिलसिला है?
2: पुराना सिलसिला है।
0: अरे बताइए ना शाहिदी भाई, मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरी खुशनसीबी होगी।
2: नहीं भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा।
0: अच्छा आप अपनी बेगम से कब मिला रहे?
3: बेगम?
2: बेगम
3: ख्वाब देखा था, मगर ख्वाब की ताबीर कहाँ भाभी साहिबा।
2: यूँ कहिए, आपके इश्क में वो सोजो तासीर कहाँ।
3: अरे यार तुम क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत नोर देकर छोड़ना अच्छा।
4: वाह भाई वाह।
0: अब कुछ कुछ आया मेरी समझ में।
2: आ गया ना?
3: भाई दोस्तों, अरे भाई आप लोग खाने के साथ भी इंसाफ करते रहो।
2: चल रहा है, चल रहा
0: है। अभी तो नहीं है। ऐसा लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया।
2: वाकई?
0: बस नाम ही सुना था, वाजवान, और आज शेर होकर खा रही हूँ।
3: हाँ तो भाभी, वो शेर किसी शायर ने कह दिया होगा, वरना मैं तो इसे बदसूरत मोर ही कहूंगा। एक ऐसा मोर जिससे दिलों के फासले नाकाबिले उबूर हद तक बढ़ गए।
0: मुझे आपसे इख्तलाफ है शाहिदी भाई, दिलों में कुर्बत हो तो दूरी हो ही नहीं सकती, फासला होता है सिर्फ जिस्मों में, और दिल एक गोश्त के लोथड़े के अलावा कुछ और भी है। दिल एहसास का दूसरा नाम है। अब बताइए कादिर, क्या मामला है?
2: नफीसा, मैंने आपको बताया तो था, मुझे यही आकर मालूम हुआ कि हमारे ग्रुप की एक बेहतरीन साथी और बेहद शगुफ्ता शख्सियत, यानी शगुफ्ता, जिसने शाहिदी के दिल को गुलजार बना रखा था, वो जमाने की उथल पुथल और हालात के नरहे में आकर पाकिस्तान चली गई।
0: और वहां शादी?
2: नहीं, शादी इसने की न उसने।
0: तो इंतजार तवील हो गया, क्यों शाहिदी भाई?
3: हरी छोड़िए नफीसा भाभी, ये गुलाम कादिर तो हमेशा ही आसमान में थिगली लगाता रहा है।
0: इसमें तो कोई शक नहीं, और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मुझे इन्होंने अपना बनाकर ही छोड़ा।
2: मेरी शाहिदी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें शगुफ्ता से मोहब्बत ही नहीं रही?
3: बेवफा कह के छेड़ने वाले, तूने कुछ और कह दिया होता।
2: अच्छा जी,
1: यानी भाई इधर तो आग बराबर लगी हुई है और उधर क्या हाल होगा?
0: खबर तो मैं दूंगी अगर मुझे अता पता मिल जाए। क्यों शायरी भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई खबर ही ना हो।
3: वो सुना है वो इस्लामाबाद के कॉलेज में पढ़ाती हैं।
0: इस्लामाबाद के कॉलेज में? और क्या पढ़ाती है?
2: अरे यहाँ तो शायरी को ऐसा सबक पढ़ा गई है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा।
0: अच्छा अच्छा, ये तो सच्ची बात है ना कि इनकी शादी नहीं हुई।
2: अब है तो सच्ची, क्योंकि उनके खानदान के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, उनसे कभी कभार उनकी खैरियत मिल जाती है, मगर वो लोग मुझसे कमी की खातिर हैं।
0: मेरा आना जाना इस्लामाबाद रहता है, और जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने उनकी तकरीर सुनी है। अगर ये वही डॉक्टर शगुफ्ता फरीदी हैं, तो इनके बाएं गाल पर एक खूबसूरत सा दिल है,
2: माशाल्लाह।
0: चेहरा किताबी, बाल गुंगराले, आवाज शीरी, और कदो कामत के एतबार से न बहुत दुबली न मोटी।
2: अरे भाभी, आपने तो पूरा नक्शा ही खींच दिया।
0: मैं सिर्फ अंदाजे से कह रही हूँ, अगर ये वही शगुफ्ता है तो ये अपने कॉलेज में बहुत मकबूल है। उनसे हमने अपने भाई का रिश्ता दिया था, जो बड़ा ही काबिल है।
2: लड़की के वालिदैन को लड़का बहुत पसंद था, मगर लड़की ने यह कहकर बात हवा में उड़ा दी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो मजीद तालीम के लिए अमेरिका जा रही हूँ।
4: तो वो चली तो नहीं गई अमेरिका?
0: क्या पता।
2: यार क्या जरूरी है कि ये वही शगुफ्ता हो जो तुम्हारी शगुफ्ता है?
0: सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि अगर ये वही हुई तो आप, मेरा मतलब है आप भाईजान शादी के लिए तैयार हैं?
2: तैयार? अरे ये तो सिर के बल जाएंगे दूल्हा बनकर।
3: मगर इसमें मेरे सिर का खतरा है।
2: क्यों भाई?
3: अरे भाई, इसकी वजह मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, और इस इख्तलाफ ने उस वक्त मुझे शगुफ्ता से दूर कर दिया था।
5: हेलो हेलो, प्रोफेसर इलियास शर्की है? जी जी जी हाँ, मेरा ख्याल है आप सदारत फरमाएं। मैं नहीं, नहीं शर्की साहब, खैर देखूंगी। जी जी, बस मैं चल रही हूँ। सकीना, मेरे जूते जल्दी कर।
6: ये लीजिए।
5: अच्छा, दोपहर को मैं नहीं आऊंगी, शाम को आलू कीमा बना लेना।
6: जी बीबी जी।
5: प्रोफेसर इलियास शर्की साहब और हिंदुस्तान से आए हुए मौजूद मेहमानों, आज का दिन इस्लामाबाद की तारीख में एक अहम दिन है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अदीब, शायर और सहाफी खैर सगाली और बाहमी दोस्ती और इंसानियत का पैगाम लेकर आए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की तारीख एक है, तहजीब एक है। ये खित्ता दुनिया की अजीम तारीख का गहवारा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कदीम तहजीबें हिंद पाक के कदीम और महजब होने की गवाही देती हैं। ये खुश आइंद बात है कि खैर सगाली के जज्बे लिए हुए कल्चरल डेलीगेशन इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने लगे हैं। मैं तहे दिल से अपने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करती हूं। अब मैं इंडियन डेलीगेशन के सरबराह जनाब SM शारिक से गुजारिश करती हूं कि दो लफ्ज कहें।
7: हजरात, मुझे तकरीर करनी तो आती नहीं है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और अपनी बात एक शेर में कहता हूं। हिंदो पाकिस्तान का दिल एक है, हिंदो पाकिस्तान का दिल एक है, कारवां दो और मंजिल एक है।
0: डॉक्टर शगुफ्ता नर्स,
6: फरमाइए।
0: रावलपिंडी से मैं खास तौर से आपसे मिलने आई हूँ। आपने बहुत अच्छी तकरीर की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कदीमी और तहजीबी रिश्तों पर रोशनी डाली।
6: शुक्रिया।
0: दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ।
6: इस वक्त तो मैं बहुत मसरूफ हूँ।
0: जी,
6: ये मेरा कार्ड लीजिए।
0: जी शुक्रिया।
6: और आज शाम को फोन करके मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, आपके साथ कहवा पियेंगे।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया।
6: आइए बहन, आइए।
0: मैं नफीसा गुलाम कादिर।
6: गुलाम कादिर, कहाँ रहती हैं आप?
0: घबराइए नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, इसी सरजमीन में पैदा हुई। अलबत्ता मेरे शौहर श्रीनगर के रहने वाले हैं, और हम लोग अमन कारवां के साथ चंद माह पेशतर श्रीनगर गए थे।
6: ठहरिए, गुलाम कादिर, मुझे सोचने दीजिए,
0: وہی جو اپنے پیشے کے اعتبار سے

वहीं आप सुन रहे थे रिफत सरोज का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान था दिलों के रिश्ते, पेशकश थी मोतीलाल कचरू की, और हिस्सा लेने वाले फनकार थे नीरज शर्मा, माला कुमार, राजेंद्र वर्मा, आशा ब्राउन, सतीश महाजन, सतीश कक्कड़ और अली मोतशिम रजा। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाजों में ये था नगमा। फिल्म थी कृष्ण कन्हैया। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है प्रेम दीवाने।

लता मंगेशकर के साथ ये थे आनंद बख्शी, फिल्म थी मोम की गुड़िया। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए, फिल्म है कुछ मीठा हो जाए।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में यह नगमा था खाक की ये फिल्म से। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है।

है अब आपके लिए मेहनत से खबरें सुनिए। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे कलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाकवामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपे हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोचीन में इंतकाल हो गया है। अमरीकी फौजों ने आबनाए हुरमुज के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। और फुटबॉल में भारत ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी मरतबा खवातीन की सेफ चैंपियनशिप जीत ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। खबरें तफसील से। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगीहोनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ करना जरूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीली गुफ्तगू के मुंतजिर हैं, जिसमें सियासी, दिफाई सिक्योरिटी, बहरी, तजारती, सरमायाकारी, सेहत, दवासाजी, खुराक की यकीनी फराहमी, सियाहत, तालीम और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। हमारे नामा निगार का कहना है कि भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतहरिक जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लिया जाएगा और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफत और नौआबादियाती तारीख है और दोनों मुल्कों ने अपनी आजादी के बाद सियासी खुद मुख्तारी, इकतसादी खुद कफालत और आजादाना खारजा पॉलिसी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इकतसादी, दिफा, नीज, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन में खातिर खा इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बाराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एजाज मेजर अभिलाषा की शानदार खिदमत और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के क़याम अमन से मुतालिक कोशिशों में भारत के तवील अरसे से जारी इश्तराक व ताउन का एक एतराफ़ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाकवामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन, इमारतों की तामीर और अमलाक की खरीद व फरोख्त पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया है। जनाब अमित शाह ने त्रिपुरा के सरहदी इलाकों के ताल्लुक से बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स पर मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यह हिदायत दी गई। वजीर दाखिला ने यह हिदायत भी जारी की है कि पिछले 5 साल के जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। जनाब अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मनुष्यात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरहदी जिलों में माली डिसिप्लिन को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। वजीर मौसूफ ने यह हिदायत दी कि कलेक्टरों और जीएसटी अहदेदारों को तरबियत दी जाए और बरह रास्त टैक्सों का मरकजी बोर्ड जाली करेंसी के ताल्लुक से सर्वे कराए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नो प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती वर्षों से मुतालिक प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसीले जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरक तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरक तख्लीक से मुतालिक मुफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तनाव से काम कर रहे हैं।
यूरोपीय यूनियन का एक आला सतह वफद कल दो रोजा दौरे पर आसाम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगा। इस दौरे का मकसद भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के साथ तआवुन को मजीद मजबूत बनाना है। इस दौरान बातचीत

0: ऑल इंडिया रेडियो दास सिराय की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडे किते प्रोग्राम घिन के। मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो ते वाला शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम। सब तो पहला मैं तुहा को एक कहानी सुनने दी पई हाँ। कहानी का नाम है कंजूसी दा फल। कहानीकार हैं
1: मैं प्रेम सरूजा। अपने सब सुनने वाले भेणा ते भरावां को राम राम ते नमस्ते करे ना। अज मैं तुहाडे वास्ते एक कहानी गिन के आया हां। हूं कहानी का नाम है कंजूसी का फल। एक गांव विच एक जमींदार रांदा हाई हुंदा नाम छज्जू मल हाई। छज्जू मल आखण को ते सेठ हाई पर हाई बहु कंजूस। कंजूस ही एडा के ढेड भर के रोटी भी कहना खांदा हाई। उत्तों ना अपनी कुआर को खावन देंदा हाई। तुसा आप सोचो जड़ा बंदा एडा कंजूस होवे ओ अपने नौकर को पूरी रोटी कित्थू देसी। हेक डीं दी गाल है हुंदी कवार सवेरे सवेरे हुंदे कोल आ खड़ोती। छज्जू मल ने आख्या के गाल है सवेरे सवेरे आ खड़ोती है। हुंदी कवार ने आख्या तुहाडी मां कल राती मेरे सुपने विच आई हाई। वल क्या थिया छज्जू मल ने आख्या ओए थीवना के है तुहाडी मां मेको अखेंदी है मेको भुख लगी खड़ी है कोई शह खावन को दे। वल तू क्या कीता छज्जू मल ने आख्या ओए करना के आई थोड़ी जी मिठाई रसोई विच पई आई मैं वो मिठाई मां को दे दिती। ए गाल सुनदे ही छज्जू मल को भा लग गई। ओ उच्चा उच्चा अपनी कवार नाल लड़न लग पिया। हुंदी उच्ची उच्ची आवाज सुन के गांव वाले आ खड़ोते। उन्होंने छज्जू मल को पुछया के गाल है छज्जू क्यों अपनी कवार नाल लड़दा पे। छज्जू मल ने आख्या इन्हें मेरा बहु वड्डा नुकसान कर दिते। गांव वाले पुछन लगे कई शायद नुकसान कर दिते स। छज्जू मल ने आख्या इन्ने मेरी मां को मिठाई खवा दिती है। ओए तेरी मां ते 5 साल पहले मर गई आई इन्ने कड्डू हूं को मिठाई खवा दिती। ओए कल रात को मेरी मां हिंदे सुपने विच आई हाई ही मोई ने हूं को मिठाई खवा दिती। गांव वाले आखन लगे के छज्जू के गल ग्रेंदा पे तेडी कवार ने मिठाई सपने विच खवाई है सचमुच थोड़ी खवाई है। छज्जू मल ने आख्या भाई जी अगर खवावनी आई ते रात दी रोटी बची पई आई हुकू खवा देंदी मिठाई खवावन दी के लोड़ आई। ए गाल सुन के गांव वाले पिट मरे ते छज्जू दी कंजूसी दी गल्ला करेंदे होए अपने अपने घरां को चले गए। जो आदमी सुपने विच भी खर्च कहनी कर सकदा ओ कितनी कंजूस होसी तुसा सोच सकदे हो। इवे ही छज्जू मल दी कंजूसी दे कई किस्से मशहूर हन। होले होले हुंदी कंजूसी दे किस्से आस पास दे गांवां विच भी फैल गए। हुण ते छज्जू मल एड़ा बदनाम थी गया कि हुंदे कोल कोई भी मजदूर कम करन ना आवे। इनी वजह नाल ओ बहु परेशान भी थी गया। हुकू परेशान देख के हुंदी कुवार ने आख्या मैं अपने गांव तू एक मजदूर सड़वा देनी आ। छज्जू मल परेशान ते हाई ओ ही गाल वास्ते फौरन राजी थी गया। हुंदी कुवार ने अपने प्यो को संदेशा भिजवाया कि एक मजदूर मेरे गांव भेज दियो क्योंकि इना दी कंजूसी दी वजह नाल कोई मजदूर कैनी मिलदा पिया। ए संदेशा सुन के हुंदे प्यो ने अपने गांव दे वड वडेरिया नाल सलाह कीती। उना सब ने आख्या कि हिंदी कंजूसी दी आदत छुड़ाओ ता ही साडी थी सुखी थी सी। हुण गांव विच एक भाषी नाम दा छोकरा रहंदा आई। ओ बहु मेहनती ते समझदार हाई। उना सब ने हुकू सड़वा भेजिया। भाषी भजदा होया उथा आ खड़ोता। उना ने हुकू डसया कि उथा तेडी भेण दुखी है तू इवे कर तू हुंदे कोल चला वण ते तेकू अपनी समझदारी नाल हुंदी कंजूसी दी आदत भी छुड़ावनी पोसी। सारी गाल सुन के भाषी अपनी भेण दे गांव को चल पिया। शाम थींदे थींदे ओ उथा पहुंच गया। जेड़े वेले उन्ने छज्जू मल दे घर दा पता पुछया ते गांव वाले ने उन्दे कोल पुछया कि के वास्ते तू छज्जू मल को मिलना चाहने। भाषी ने आख्या कि मैं हुंदे खेतां विच कम करन वास्ते आया हां। ए सुन के हूं गांव वाले ने आख्या ओ ते बहु कंजूस आदमी है ओ ते ढेड भर के रोटी भी कहनी देंदा होर ना ही मजदूरी पूरी देंदे। भाषी ने आख्या कोई गाल नहीं तुसा मेरे को हुंदे घर दा पता दस देवो। हूं गांव वाले ने हुकूम छज्जू

गीत के नाल ही प्रोग्राम इथे ही खत्म थींदा है। तुहाकू साडा प्रोग्राम किंजदा लगा साकू खत लिख के दसो, असि तुहाडे खतां दी उडीक करसा। ते हुण हरजीत कौर को इजाजत देवो।

सामिन तुसी सुन रहे सिसरा की जुबान का प्रोग्राम झोक माहिती आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवाएं हुण सामिन पेश कर रहे प्रोग्राम देश पंजाब।

0: ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਿਆਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨਿਆਏ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ। ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026 ਦਾ। 21-22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
2: ਪਰ ਕੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ?
1: ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
1: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sei.gov.in ਤੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2026 ਹੈ। 4501-2311-2428 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2: ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026 ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
1: ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ। आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
4: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: सोनी भाई, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं
1: जी,
0: वो फसल का बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक दिन रात काफी मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: चाहे उसमें वो फिर भाई देखिए खाद देने की बात हो, सिंचाई की बात हो, यानी सब कामों में मेहनत करते हैं। और उसके बाद भी यदि कोई भाई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जिसमें देखे भाई बारिश अधिक होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना इस तरह के, और ओलावृष्टि होना, इस तरह की अगर आपदा आ जाए तो भाई देखिए उनकी सारी फसल खराब हो जाती है और काफी नुकसान होता है। देखिए भाई, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते सुनी भाई, लेकिन इनको देखिए जो इनसे जो नुकसान किसान भाइयों की फसल का होता है उसका वही देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी के लिए शुरू की गई कि उसके नुकसान की भरपाई हम कर सके
1: कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल जी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भी देखिए किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे होने वाले फसल के नुकसान की वित्तीय सुरक्षा और मुआवजा

0: प्रदान करना। यह योजना बुआई से लेकर कटाई के बाद के सभी चरणों के जोखिम की कवर करती है। साथ ही भाई देखिए, इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि भाई देखिए, इस योजना में सभी खरीफ रवि फसल और चाहे भाई बागवानी की बात हो, मोटे अनाज की बात हो, दलहन तिलहन यानी सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। और खरीफ फसल की अगर बात करें तो देखिये भाई, अगर प्रीमियम इसमें किसान भाइयों को बहुत ही कम देना पड़ता है। सेस प्रीमियम की जो राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उठाती हैं। और खरीफ फसल की अगर बात करें तो 2%, रबी फसल में 1.5% और व्यावसायिक या बागवानी फसलों की बात करें तो 5% प्रीमियम किसान भाइयों को देना पड़ता
1: है। और देखिए ना, कहीं ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है इस योजना को शुरू करने का, किसानों की को फसल हानि से की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, खेती में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रकृति आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देना, जो हमारे सुनील भाई ने अभी ऑलरेडी बताया ही है, किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना, कृषि क्षेत्र में किसानों का विश्वास बढ़ाना, इस योजना के तहत किसानों को ये जरूर सहारा जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें जरूर देख रहा है का मतलब यह है कि योजनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं किसान की जो मेहनत है, जो भाई प्रकृति आपदा के कारण जो भी, जैसे सुनील भाई ने कहा कि हम आपदा को रोक नहीं सकते या आप उसका अंदाजा लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि अगर प्रकृति आपदाओं से किसान की फसल अगर कहीं ना कहीं नष्ट होती है तो कहीं ना कहीं किसान को उसका मुआवजा उनको देकर उस नुकसान की भरपाई की जाए, यही योजना का मूल मंत्र है। जिसमें
0: जी असली भाई, इसका फायदा यह भी है कि देखिए, इस तरह की योजना जब किसान को मिल जाती है और वो उसकी फसल किसी कारण से नुकसान होती है तो मानसिक रूप से भी वो नहीं टूटता और आगे भी वो फसलें लगाते रहते हैं। और इस योजना का जो आरंभ है वो 2016 में किया गया। देखिए, इसके आवेदन करने के लिए अगर बात करें तो जो किसान भाई, जो लोन लेने वाले किसान भाई हैं, यदि आपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड, KCC या कृषि लोन लिया है तो आपकी फसल का बीमा स्वतः कर लिया जाता है। लेकिन जो भाई किसान ऋण नहीं लेते, वे जन सेवा केंद्र, SSC और कृषि विभाग के कार्यालय, सीधे आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते।
1: बिल्कुल, तकनीकी में इसको आसान बनाया गया। आजकल डिजिटल युग का युग है जिसने फसल बीमा की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। किसानों को मोबाइल और ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आवेदन, जानकारी, दावा और प्रतिक्रिया की स्थिति भी जान सकते हैं। इस पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं किसानों की सहायता के लिए। और अगर आप सुनील भाई यहाँ पर बात करेंगे, खेती केवल मेहनत का ही नहीं बल्कि समझदारी का भी एक काम है, जिसमें जिस प्रकार से अपने घरों और परिवार की सुरक्षा करते हैं उसी प्रकार अपनी फसल की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। ऐसी योजनाओं का किसानों को लाभ उठाना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं रेडियो के माध्यम से, हर किसान को कहीं ना कहीं ये फसल बीमा योजना जरूर जरूर जरूर लेनी चाहिए।
0: तो असल भाई देखिए, बातचीत भाइयों से और भी करेंगे। रविवार का दिन है, कृषि पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है, खत आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, खत भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शीश राम के गाये उपदेश से। और इसको सुनने के लिए भाई, जैसा हमने बताया था, कुछ फरमाइश हमें और मिली है। ये पहली फरमाइश मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, परमजोत मिशन और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है तहसील बदरा गांव कलाना और विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बड़ौदा चैना विमानी से, उसको भेजने वाले हैं महिपाल, नेहरू, उत्कर्ष और उनका समस्त परिवार।
1: दादा बाबू रोड से गिरी से झारखंड से पत्र मिला है मोहम्मद यासीन अंजाज और सहमास हुसैन, बाबू आहद, फिक्री नवाज बेबी और उनका पूरा परिवार। ये पत्र डांडी हाड़ा खेड़ा जिला सिरसा से पत्र शामिल करते राधे राम शर्मा, इंद्र शर्मा और सातक शर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़, ऋतु सिंह, हिमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंधा, जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें भाई फरमाइश जो मिली है, सुनी भाई आप क्या और भी फरमाइश दिखाई दे रही है।
1: जी जी, ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और ये पत्र लिखा है इन्होंने पिंके वाला चौक जलंधर से। एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, रामगढ़ टेक से ये पत्र मिला है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का पत्र है जिन्होंने सुनना चाहा है। और ये है, ये पत्र में लिखा है छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है, ये है चित्रलेखा साहू, शंभू शाहू और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, सीएम आर्यन, लवीस, मुनेश देवी की। और एक

0: मैं ये आशीष राम की आवाज में उपदेश सुना है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक पत्र हमें मिला है। ये पत्र लिखा है गांव काकूपुर लिखने वाले विनोद कुमार हैं। ये मूंगफली की बुवाई करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि बुवाई का सही समय क्या है और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी रहनी चाहिए जिससे फसल उत्पादन अच्छा हो, बीज दर क्या ले सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होनी चाहिए और मूंगफली कितने दिनों में तैयार हो जाती है और इसके बारे में संक्षिप्त में एक इनका उत्तर दें।
1: विनोद कुमार भाई, देखिए मूंगफली की बुवाई आप करना चाहते हैं सही समय पर, आपका कहता है जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई का दूसरा सप्ताह इसके लिए सबसे उचित माना जाता है। जहां तक मिट्टी की बात है तो मूंगफली की फसल दोमट बलोर और हल्की दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है और इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है भाई। और जहां तक आपने उन्नत किस्मों की बात की है तो देखिए ज्योति, कौशल जी 201, M13, ICGS11, ICGS44, JL24, TG1, विक्रम, J11, ICGS37 जो प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप उन्नत किस्म ले सकते हैं।

0: सकते हैं। और जहां तक बीज दर और बुआई की बात आपने की है, तो देखिए भैया, यदि आप गुच्छे वाली किस्मों की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर। जहां गहराई की बात है तो 5 से 7 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है और प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। और भाई देखिए, मूंगफली जो फसल है उसमें निराई गुड़ाई का विशेष महत्व होता है। बुआई से 35 दिन तक खरपतवार की वृद्धि अधिक होती है, अतः फसल में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें विनोद भाई। और बुआई से 12 से 15 दिन के पश्चात और करीब 15 से 20 दिन के बाद फिर से दोबारा निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। और जहां तक भाई बात है, मूंगफली में कई तरह के रोग भी आ जाते हैं, जिनमें रोजेट रोग, टीका रोग, रोकी लाइली, मूंगफली की माऊ, लिक्की माइनर आदि प्रमुख हैं। तो इनसे भाई फसल को बचाना है। और जहां तक सिंचाई की बात है, मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सिंचाई करना भी सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। और भाई फसल की बुआई यदि जल्दी करनी हो तो एक प्लेयर की आवश्यकता पड़ती है, और यदि पौधों में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो तो उस समय भाई सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा की मात्रा के अनुरूप सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। और मूंगफली की जहां तक आपने पूछी है कि भाई कितने तैयार हो जाती है, तो देख मूंगफली की फसल जो मुख्य रहता है किस्म के हिसाब से भाई 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। शीघ्र पकने वाली किस्में सितंबर अक्टूबर में, सदैव से पकने वाली किस्में अक्टूबर नवंबर में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधे पीले पड़ने लग जाएं और उन्हें की पत्तियां मुरझा जाएं तो भाई खुदाई आपने कर लेनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और मूंगफली फसल की समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे भरपूर उत्पादन।
1: तो लीजिए विनोद जी, आपके इस सवाल का जवाब दे दिया गया है। अगर इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल का उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुन लेते हैं योगेश कुमार की आवाज में।

0: मैंने आपसे ना योगेश कुमार की आवाज में ही उपदेश, और चलते चलते हम आपको कल के कार्यक्रम की जानकारी दे देते हैं।
1: और कल के कार्यक्रम से बारे भाई देखिए मौसम के बारे में सुने भाई थोड़ी बात कर लें। मौसम की अगर बात करें तो देखिए बीच में तापक्रम थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब आने वाले समय में पता जा रहा है कि भाई अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 29 से 31 डिग्री, और उसके बाद अगर कहीं किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत बारिश होती है तो भाई थोड़ा सा तापक्रम कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का, और साथ ही भाई 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में एक परिचर्चा आपको सुनवाएंगे, 90 वर्षों की जनसेवा आकाशवाणी का गौरवशाली सफर। और योजना की बात करें तो योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही भाई 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे मत्स्य पालन एवं ग्रामीण रोजगार के बारे में, और योजना की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही भाई जो हरियाणा की चुनिंदा मंडियां हैं उनके बाजार भाव की भी जानकारी देंगे। और अब भाई देखिए आपको कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए भी जल्दी से एक बार पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कृषि एवं ग्रह एकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली 1100।
0: और हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है feedback@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं, हमें कार्यक्रम कैसा लगा इस पर हमें आप अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव मंदल्ला, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: करने की भी यही।
2: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना,
2: आरबीआई की
3: शुरुआत करो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दो?
4: ओहो, भूल ही गई थी, सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं इससे शॉपिंग हो जाए।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2,800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्य रात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल।

0: दिल्ली में सार्वजनिक यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2800 एयर कंडीशन नो फ्लोर बस दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
1: इस अभियान में 1409 मीटर और 1412 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली में सार्वजनिक यातायात तक पहुंच बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। ये पहल दिल्ली सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात के लिए डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो एमिशन आधारित यातायात संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। दिल्ली में लगभग 4300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार के इस पहल से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और लोगों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अभियान में नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 14 जून को आयोजित होने वाले यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहभागिता से ही स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी यमुना व उसके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक अपशिष्ट वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष का अभियान और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की उत्कृष्ट सेवा और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के लंबे योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश की अनेक युवा बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में मेजर बराक की उत्कृष्ट कार्यकुशलता और अनुकरणीय नेतृत्व ने वैश्विक पटल पर देश का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

0: उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज वरुणालय में क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने पर बल दिया। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निवासियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में साइकिलिंग अभियान पैडल द बीट संडे ऑन साइकिल आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस रैली में बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और फिटनेस प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अभियान का आयोजन जनकपुरी में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।
2: संडे ऑन साइकिल भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। खेलों और फिटनेस के इकोसिस्टम को प्रमोट करने की भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहल है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस पहल को दिल्ली की गलियों तक ले जाना फिटनेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने का एक प्रयास।
1: दिल्ली पुलिस ने आज करावल नगर में एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर संडे रेस कार्यक्रम का आयोजन किया। भागता भारत नाम का यह संगठन राष्ट्रीय स्तर के धावक बनने की आकांक्षा रखने वाले पेशेवर धावकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रत्येक रविवार को अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ईयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापेमारी की। यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी से एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी जब्त की गई। मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सी ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत में आज दोपहर आग लग गई। 3:40 पर घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर

0: पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। श्रोताओं, कविता सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होती, ये वो धड़कन है जो समाज के सुख दुख को अपनी आवाज देती है। और जब बात आकाशवाणी की हो तो यह मंच गवा रहा है भारतीय काव्य परंपरा के उस स्वर्णिम काल का, जिसने इतिहास की दशा को बदला है। 9 दशकों का ये सफर दरअसल हमारी भावनाओं, हमारे आंदोलन और हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक ऐसा गंतव्य है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सींचा है। इस ऐतिहासिक पड़ाव यानी आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं प्रोफेसर राम रतन प्रसाद, डॉक्टर संध्या रानी, श्रीमती रश्मि भटनागर, श्री राकेश धर द्विवेदी। कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री राकेश धर।
2: ये बड़े हर्ष का विषय है कि आकाशवाणी 8 जून को अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है। इस गोष्ठी के प्रारंभ में हम डॉक्टर राम रतन प्रसाद साहब, जो सहायक प्रोफेसर है आत्माराम सनातन महाविद्यालय के, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आए और अपनी कविताओं को यहाँ पर प्रस्तुत करें।
3: नमस्कार, मेरी कविता है इंतजार किसान का। 80 बरस का हो गया हूँ, फिर भी खेती करता हूँ। वर्षा भिगाया खेत को, सूखने का इंतजार करता हूँ। धूप सुखाया खेत को, हल चलाने का इंतजार करता हूँ। हल चलाया खेत में, मेर छांटने का इंतजार करता हूँ। मेर छांटा कुदाल से, जंगल बटोरने का इंतजार करता हूँ। हल चलाकर बीज बोया, पानी पटाने का इंतजार करता हूँ। पानी पटाया खेत में, हरी भरी होने का इंतजार करता हूँ। हरी भरी हुआ खेत में, फसल काटने का इंतजार करता हूँ। फसल बह गई बार में, कर्ज चुकाने का इंतजार करता हूँ। डूब गया हूँ कर्ज में, कर्ज चुकाने का इंतजार करता हूँ। 80 बरस का हो गया हूँ, फिर भी खेती करता हूँ। दूसरी कविता है मौन। मौन रहकर मैं हंसता हूँ, मौन रहकर मैं सुनता हूँ, मौन रहकर मैं गाता हूँ, मौन रहकर मैं सहता हूँ। कौन है तू मौन? मौन रहकर मैं कल्पना करता हूँ, मौन रहकर मैं क्रांति करता हूँ, मौन रहकर मैं सृजन करता हूँ, मौन रहकर मैं गरीबी झेलता हूँ। कौन है तू मौन? मौन रहकर मैं सीखता हूँ, मौन रहकर

0: मैं चलता हूँ, मौन रहकर मैं बुलाता हूँ, मौन रहकर मैं समाता हूँ। कौन है तू? मौन, मौन मेरी प्रमाणिकता है, मौन मेरी शालीनता है, मौन मेरी कर्मण्यता है। कौन है तू? मौन। मेरी तीसरी कविता है निर्माण। निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा, सोच समझ कर जिंदगी के थपेरों ने समझा दिया, फिर भी संघर्ष कर रहा। एक न एक दिन होगा सामना, निर्माण के लिए धारा प्रवाह बहा चला जा रहा हूँ। यही मेरी जिंदगी है। कोई देश का निर्माण कर रहा है तो कोई राष्ट्र को विकसित के राह पर। न हम सोचते मेरी मंजिल क्या है, भटक रहा हूँ निर्माण के लिए। किस वक्त कहाँ थम जाएगी ये जिंदगी क्षण भर के लिए। निराश न हो, कार्य के प्रगति पर। एक और कविता है जीवन के रंग। जीवन के गहराइयों में उतर कर रो पड़े हैं आज हम। मेरी जिंदगी ठहर गई है, भटक रहा हूँ राहों पर, कमरे में कैद पड़ा हूँ। लगता है जीवन रो पड़ा है, सोचकर मैं घबरा गया हूँ। खुद से लड़ाई लड़ जाऊं उन्हीं गहराइयों में, जीवन कैद है। अंधेरे में सवाल उबल रहे हैं, किनसे सवाल करूं, उन सवालों के जवाब नहीं। गहराइयां पताल से भी गहरा है, छटपटाहट मेरी सोच है। यही सोच शामिल है गहराइयों के जंजीर में। तोड़ दूंगा उन जंजीरों को जीवन के गहराइयों में उतरकर। जीवन के गहराइयों में उतरकर।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: मैं अगली प्रतिभागी के रूप में रश्मि भटनागर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने रीति गागर नाम की किताब लिखी है और DPS की सेवानिवृत्त अध्यापिका है। वे अपना काव्य पाठ करें।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। यह आकाशवाणी है, 1936 में जन्मी, अब 90 वर्ष की सयानी है, पर सच मानो लगता है कोई अलहड़ गुड़िया दीवानी है। ये खबरों का खजाना है, गीतों का अफसाना है, कभी हास्य व्यंग्य का पिटारा है। यहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, मौसम का अनुमान है, कृषि तकनीक की पहचान है और हर नई खोज का भान है। यहाँ खेल जगत की चर्चा है, राजनीति की परिचर्चा है, किसने कब क्या हारा जीता हर एक हिसाब का पर्चा है। यहाँ देश विदेश की जानकारी मिले और गीत संगीत की फुलवारी खिले, कवि सम्मेलन के लगते मेले, कलाकारों के किस्से अलबेले, जीवन का दर्शन मिलता है, यहाँ मान सम्मान भी मिलता है। पर अनैतिकता की आलोचना है, अनुचित है जो उसकी भर्त्सना है, संवाद से समस्या सुलझती है, बेईमानी की दाल नहीं गलती है। यहाँ पल पल कुछ घटता रहता है, एक सिलसिला चलता रहता है, कभी माँ लगती है कभी सहेली जैसी, कैसे हर पहलू छू लेती है एक पहेली जैसी। जन जन के दिल में इसकी कहानी है, भारत के विकास की निशानी है। जी हाँ, ये आकाशवाणी है, आकाश से उतरती हम तक पहुँचती सत्य की अलौकिक छवि है। ये सत्य की वाणी, सत्य की खोज, आकाशवाणी है सत्य का उद्घोष, इसीलिए तो यह आकाशवाणी है। मेरी अगली कविता, यदि आकाशवाणी का दिल होता तो कुछ ऐसा संदेश देता जैसा ये गुलाब दे रहा है।
1: बहुत अच्छे।
2: मेरी अगली कविता गुलाब। आज अपनी एक डायरी खोलकर देखी थी कई दिनों के बाद, तभी पाया कि गुलाब का एक सूखा पत्ता मेरी किताब के खाली पन्नों में जाने कब से छिपा बैठा था, उदास गुमसुम मुरझाया सा। धीरे से लिया मैंने हाथों में, निहारा सहलाया और पूछा, कौन हो तुम प्यारे, यहाँ कैसे पधारे। वह बोला, गुलाब हूँ मैं, अपनी डाली से झरकर उड़ता भटकता, जाने कब आ बैठा यहाँ। मैंने कहा, हाय रे गुलाब, मेरी डायरी में तुम्हारा स्वागत है, पर तुम्हें पनाह भी मिली तो इन पन्नों में, यहाँ क्या मिला तुम्हें, वीरानी गुमशुदगी और इस किताब की कैद। उसने कहा, आज मैं गुलाब की याद भर हूँ, पर कभी खूबसूरत था मैं, कुदरत की नियामत था, अपनी डाली की शान, अपने बगीचे

0: मेले की रौनक था मैं। बहती हवाओं को महकाया है मैंने, झूम कर सबको हंसाया है मैंने। आज मैं कुछ भी नहीं, फिर भी ये तसल्ली है, दो दिन के जीवन में दो पल खुशियां तो बांटी। तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या बांटा? कितनी दुआएं समेटी, कितनी मुस्कानी बिखेरी, कितने आंसू पोंछे, किसके दर्द बांटे? दो पल भी अपने जीवन में इनमें से कुछ किया है तो आज तू भी एक गुलाब है, तू भी एक गुलाब। शुक्रिया। मुझे लगता है जैसे आकाशवाणी हमें एक सूत्र में बांधती है, रास्ता दिखाती है, दुनिया से परिचय कराती है, कुछ इसी तरह माँ भी हम सबको जोड़ती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो कुछ पंक्तियाँ, मुझे याद नहीं आता कि जितना सुकून माँ की गोद में मिला था उतना कभी और पाया था, ना ही याद आता है कि जितनी सुरक्षित मैं माँ की बाहों में थी उतनी कहीं और रही थी। जब जब माँ ने मेरा माथा चूमकर जगाया वो सुबह सबसे सुंदर थी, जब जब माँ ने थपकी देकर सुलाया वो नींद कितनी गहरी थी। माँ की लोरी सबसे प्यारा गीत था और माँ का आंचल जैसे ठंडी घनी छांव। माँ का प्यार मुझे ईश्वर का वरदान है और माँ का विश्वास मेरा सबसे बड़ा संबल। जब माँ ने प्रोत्साहन दिया तब मेरी जीत पक्की थी, जब माँ ने हमारा घर जोड़ा उसकी नींव पक्की थी। जब जब मैं टूटकर बिखरी माँ के धैर्य ने समेटा, जब जब मेरा आत्मविश्वास डोला माँ के शब्दों ने सहेजा। मेरे आंसुओं से पहले माँ रो देती हैं, मेरी मुस्कानों को अपने दिल में बसा लेती हैं, मेरे सपनों को वो अपना सपना बना लेती हैं, मेरी ऊंची उड़ान के लिए वो अपनी जी जान लगा देती हैं। माँ तुम मेरी गुरु, मेरी सखी, मेरी आत्मा, मेरी प्रेरणा हो। माँ तुम मेरे जीवन में हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी परछाई बनकर खड़ी हूँ, परछाई बनकर खड़ी हूँ। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो इस तपती दोपहरी में काम करते हैं उन्हें अर्पित है। मजदूर छैना हथौड़ी कल पुर्जे लिए हाथ, करता प्रहार देता आकार, फर्श दीवारों छतों में भरता जान, सदियों से बनाता आया है महल मीनारें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, देखकर दुनिया तारीफ करते नहीं थकती। नाम होता है किसी राजा महाराजा या बिल्डर का, इस मजदूर को कोई याद नहीं करता, फिर भी ये जुटा रहता है अपनी कृति बनाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में। जी हाँ, मजदूर है ये।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: कारखानों में फैक्ट्री में लोहे की भट्टी पर गढ़ता है बर्तन कल पुर्जे वस्तुएं, तपाता झुलसाता है अपना बदन, आग की चिंगारियों की परवाह नहीं करता, सुबह से सांझ भट्टी में कोयला झोंकता पसीना टपकाता, धूलि धूसरित करता जाता है काम, दिन की कमाई से बनाता है दो रोटी, खा लेता है कभी अचार तो कभी नमक से ही, रात होते ही बना लेता है धरती को अपना बिछौना और किसी बांस पर लटकी फटी पुरानी चादर को अपनी छत, मस्त सोता है बिना चिंता किए पंखे या कूलर की, बोर होता ही जुट जाता है फिर उसी लगन से अपनी रोजी रोटी कमाने में। जी हाँ, मजदूर है ये। सपने बहुत नहीं है इसके, पर दूसरों के सपने पूरे करता है। ईंट गारा पत्थर ढोते कब एक मैदान पर घर इमारत पुल खड़े हो जाते हैं, अथवा बन जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग लॉट या कोई ऑफिस, पता ही नहीं चलता, पर ये मजदूर है, लगा रहता है धीरज से अपनी कृति बनाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में। जी हाँ, मजदूर है ये। धन्यवाद। कविता तो लंबी है लेकिन उसको कुछ पंक्तियों में कहने की कोशिश करूंगी।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: नारी पर बहुत बार लिखा जा चुका है पर एक बार फिर कुछ लिखने का और बोलने का प्रयास कर रही हूँ। नारी को क्या कहकर बुलाओगे तुम
1: जी।
0: नारी को क्या कहकर बुलाओगे तुम, क्या शब्दों में उसे परिभाषित कर पाओगे तुम?
1: बहुत सुंदर।
0: कोशिश करके देख लो, क्या नारी के किसी पर्याय से न्याय कर पाओगे तुम?
1: बहुत अच्छे।
0: पुरुष प्रधान समाज ने नाम तो कई दिए उसे, अगला अर्धांगिनी घर की इज्जत पुरुष की परिछाई, और माना कुछ ने नारी को लाचारी अनचाही, धरती पर बोझ माँ बाप के कंधों पर दहेज की गठरी, क्यों कोसते हो उसे क्यों गर्भ में मारते हो? कुप्रथा कुरीतियां तो पुरुष ने बनाई पर लांछन की माला क्यों स्त्री को पहनाई?
1: क्या बात।

0: नकाब से ढका,
1: बहुत सॉरी, बहुत ही करता है।
0: नकाब से ढका कभी उसे पर्दे में छिपाया, घर के फर्नीचर की तरह उसको सजाया,
2: बहुत सुंदर
0: रुतों के पहरे बिठाए, जंजीरों में डाल दी, गाय थी क्या नारी जो खूंटे से बांध दी।
1: बहुत अच्छे।
0: भोग की वस्तु कभी पायदान समझते हो, बस करो समाज के ठेकेदारों, क्यों नारी को इंसान नहीं सजावट का सामान समझते हो।
2: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर।
0: यह समस्या तुम्हारी है कि नारी को तुमने न समझा न जाना। कभी नारी के अंतर मन में झांका होता, तभी तो उसकी गहराई को आंका होता। तो अब तुम्हारे दिए नामों का न मोल कोई, तो अब तुम्हारे दिए नामों का न मोल कोई। मुक्त किया नारी ने स्वयं को, खोल हर बंधन कोई। पहचाना है अपना अस्तित्व, अपना वजूद उसने, जाना है अपना लक्ष्य इस सदी में उसने। आज मैं देती हूँ नारी को एक नया नाम, नारी है शक्ति, शक्ति संकल्प की, शक्ति हर दिशा के छोर को, हर उच्चतम शिखर को चूमने के संकल्प की, ताकि स्वप्न हो सके साकार। स्वप्न एक डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभियंता, अधिकारी, नेता, अभिनेता, सैनिक, या बनने का कलाकार, या फिर करना खेल जगत में कायम विश्व रिकॉर्ड। बस इसी एक लक्ष्य को साधे उसका मन, कोमल विमल
1: अविरल
0: गतिमान,
3: अति सुंदर,
0: न दम्भ न गर्व, चेहरे पर केवल एक स्मित मुस्कान, मानव धैर्य का प्रतिबिंब। नारी है शक्ति नव जीवन के सृजन की, स्फुरन की, पोषित करने की, शिक्षित करने की, और संस्कारों से दीक्षित करने की। नारी है धैर्य, नारी है प्रेरणा, नारी है शील, नारी संवेदना, सबकी पीड़ा, सबकी चिंता, प्रेम और स्नेह से सिंचित दुलार से मरहम करती, हर घाव भरती, हर पीड़ा हरती।
1: बहुत सुंदर।
0: अपने शोषण कर्ता को भी एक आह भरकर कर देती क्षमा, उसके तुच्छ व्यवहार को, उसके तुच्छ व्यवहार को अपने एक अश्रु से धोकर आगे बढ़ जाती। सागर से गहरा और आकाश से भी बड़ा है नारी का हृदय, तो ब्रह्मांड से भी बड़ा है। नारी की उपमा बस नारी ही है, कोशिश करके देख लो, क्या शब्दों में परिभाषित कर पाओगे तुम, क्या नारी के किसी पर्याय से न्याय कर पाओगे तुम।
3: क्या बात, क्या बात,
0: धन्यवाद।
3: बहुत अच्छी कविता है।
1: मैं अगले प्रतिभागी के रूप में संध्या रानी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए और अपनी कविता का पाठ करें।
2: नमस्कार, मेरी कविता है आकाशवाणी। आकाश से उतरकर जब आती है वाणी, धरा भी पुलकित हो जाती है, क्योंकि उसका नाम है आकाशवाणी। सबके मन को बहलाकर, ज्ञान रत्नों से सजाकर, कुछ नया करने की राह दिखलाती है, क्योंकि यह है आकाशवाणी। अनेक विषयों की जानकारी देकर हमारा श्रृंगार करती है, देश विदेश की खबरें सुनाकर हमें जागरूक करती है, क्योंकि इसका नाम है आकाशवाणी। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाती हूँ, महिलाएं। महिलाएं चाहे घरेलू हो या कामकाजी, दिन भर चक्की की तरह पीसती रहती हैं। कभी ये नहीं हुआ तो कभी वो नहीं हुआ, इसी उधेड़ बुन में जिंदगी बीत जाती है। हर किसी की फरमाइश पूरी करने को जी तोड़ कोशिश करती हैं, फिर भी जरा सी बात पर कभी पति बरस पड़ते हैं, तो कभी बच्चे रूठ जाते हैं, और मेहमान तो नाक भों सिकोड़ कर चले जाते हैं। हर कोई चाहता है उससे अपनी उम्मीदों पर खड़ा उतारना, लेकिन यह कोई नहीं समझता कि वह भी हार मास की बनी है।
1: बहुत
0: बढ़िया
2: कविता है। फर्क है, फर्क है जमीन और आसमान में, इंसानों के जज्बाती रिश्तों में, विचारों में, नक्षत्रों की चमक और चाल में, खट्टे मीठे अनुभवों के सवाल में फर्क है।
1: बहुत अच्छा।
2: फर्क है हंसते और रोते हुए चेहरों में, कथनी और करनी के तेवरों में, सर्द और गर्म हवाओं के झोंकों में फर्क है, पवित्रता और अपवित्रता के भाव में, आज और कल के अभाव में, नैतिकता

0: अनैतिकता की चाल में, जमाने की भागती रफ्तार में फर्क है।
1: अद्भुत अद्भुत अद्भुत
0: फर्क है अश्लील और शील शब्दों की धार में, अपनी अपनी दृष्टि और विचार में, हमारी और आपकी आप बीती के इजहार में फर्क है। और दूसरी कविता है, मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ, दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ पाया होगा कितना मैं जानती नहीं, दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ पाया होगा कितना मैं जानती नहीं, कभी सजा होगा, कभी सजा होगा शाहजहां का महल, कभी सजा होगा शाहजहां का महल, कोई तड़पा होगा स्वच्छंद काननों में उड़ने के लिए, घोड़ों की टापों की आवाजें आई होगी चांदनी चौक से, घोड़ों की टापों की आवाजें आई होगी चांदनी चौक से, रौनक की शान होगी लाल किला की गुंबजों पर, रौनक की शान होगी लाल किला की गुंबजों पर, कितनी बार सजी और उजाड़ी गई हूँ मैं, कितनी बार सजी और उजाड़ी गई हूँ मैं, क्यों पीछे याद करूँ, क्यों पीछे याद करूं बर्बादी की दास्तानों को,
1: बहुत अच्छा, बहुत
0: क्यों पीछे याद करूं बर्बादी की दास्तानों को, जो वक्त का मोहताज है,
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: जो वक्त का मोहताज है, फिर उमंगों में आज है, बिचर रही हूं उस मुक्त पवन की तरह,
1: बहुत सुंदर,
0: लहरों में रेगिस्तानी झोंकों में, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: आदरणीय राकेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे भी अपना कविता पाठ करें।
1: बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है, तुम नहीं थे तो कुछ स्वर अधूरे रह गए।

0: एक गई,
1: बहुत
0: एक छोटी सी कविता से मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ। ये प्रेम कविता है, इधर बड़ी चर्चित हुई मेरी ये कविता, सुनिएगा। जो

छोटी सी प्रेम कविता जो कभी लिखा था भावनाओं के परवास को क्रम देने के लिए, मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए कि मेरे दिल के किसी कोने से लिखी गई ये कविता आपके दिल में पहुंचकर उतर करके ठहर सके। मैं कविता पाठ करता हूँ, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। मेरी कविता का शीर्षक है उसकी याद फिर से आई।

0: बहुत खूब
1: बहुत खूब
2: जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पाठ किया गया तमाम हमारे प्रतिभागियों के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि कविताओं के माध्यम से हम इसी तरीके से सामाजिक मंगल की, सामाजिक सद्भावनाओं का प्रसार और प्रसार करते रहेंगे। धन्यवाद श्रोताओं,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे प्रोफेसर राम रतन प्रसाद, डॉक्टर संध्या रानी, श्रीमती रश्मि भटनागर और श्री राकेश धर द्विवेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री राकेश। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है 8:30 और ये वक्त है फिल्म संगीत का। और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से जो है फिल्म गुरु से। और मुझे लगा कि इस वक्त क्योंकि आज रविवार है और परिवार सब एकजुट बैठा होगा, खाना वाना हो चुका होगा और अब चल रही होगी आमों की महफिल, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जबरदस्त गीत आपको सुनवा दिए जाएं।

और अब भारत के कई अंचलों के आंचल को भिगोने लगा है मॉनसून, तो अपनी छुट्टियां अपनी वेकेशन आप कर लीजिए प्लान, क्योंकि अगर आपको भीगने का मन है तो बस फटाफट उन शहरों में पहुंच जाइए जहां मॉनसून अब तक पहुंच चुका है, और अगर भीगना नहीं चाहते हैं तो फिर आप वो शहर चुन लीजिए जहां पर अभी मॉनसून जरा दूरी पर है।

और अब कुछ यही है कि जो बादलों का दिल है वो खुलने लगा है और बारिश का मौसम बस आने लगा है, और वक्त ये कह रहा है कि फिलहाल आपसे इजाजत ले ली जाए, फिर मुलाकात होगी आपसे 11:10 पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग

0: और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य

0: आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया।

0: लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saqlain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy as well as generate

नमस्कार, 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज की फनकार हैं राधिका चोपड़ा। नमस्कार, 45 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और रात 9:55 मिनट पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। शब के 10 बजे आप मुशायरा सुनेंगे और 10:30 पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामिले इरशाद। फरमाइश फिल्मी नकमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक, माफ कीजिएगा। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर तक उर्दू न्यूज बुलेटिन और 11:45 पर हवालियां पेश करेंगे जाफर हुसैन बदायूनी कव्वाल और हमनवा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे जिया मोहिउद्दीन डागर का सरस्वती वीणा पर बजाया राग मियां की मल्हार। शब के 12:30 आखिरी शब प्रोग्राम में

मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज की फनकारा हैं राधिका चोपड़ा। प्रोग्राम में सुनिए राधिका चोपड़ा की गाई चंद गजलें और गीत।

0: शमीम जयपुरी का कलाम पेश कर रही थी राधिका चोपड़ा। इसके साथ ही एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुए हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिर्रेख, कुर्सियोंग, कम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जुनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीजी बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। आठवीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकत दारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बाराक को अक़वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एजाज मेजर बाराक की मिसाली खिदमात और अक़वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बाराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बाराक फिल वक्त लेबनान में अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस एजाज से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मौके, इख्तराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नजरिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत जिसकी कद्र फिल वक्त तकरीबन 9 अरब अमरीकी डॉलर है, तवक्को है अगले 7 से 8 बरस में बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर हो जाएगी। कौमी अवार्ड से सरफराज मलयालम फिल्मों के अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल।

0: हार्मोन्स बैलेंस की अगर बात की जाए, कहीं कभी कभी जब हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, तवाज़ुन गड़बड़ा जाता है, तो उसमें भी मददगार साबित हो सकता है खीरा। बीमारी से लड़ने की ताकत की अगर बात की जाए, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं या कुव्वत मुदाफियत, तो उसमें भी इजाफा करता है। अब खीरा खाने का सही वक्त क्या होना चाहिए, यह भी बहुत अहम सवाल है। सुबह या दोपहर में खीरा खाना सबसे अच्छा माना जाता है। खाली पेट खीरा खाने से डिटॉक्स के फायदे आपको मिल सकते हैं, फासिद मवाद जो है आपके जिस्म से खारिज हो सकते हैं, और रात में खीरा कम मिकदार में खाना चाहिए, ऐसा माहिरीन का कहना है। क्या खीरा रात में खा सकते हैं? खा तो सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मिकदार में नहीं। सलाद के रूप में आप इसको खा सकते हैं, इसका जूस इस्तेमाल किया जा सकता है। खीरे के साथ में नींबू और पुदीने का इस्तेमाल करें तो जिस्म से फासिद मवाद दूर हो जाते हैं, और डाइट प्लान में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर चाहते हैं वजन नहीं बढ़े तो ये आपके मेदे को भरा भरा रखता है खाने के बाद, और आपका वजन जो है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। और खवातीन हो या मर्द हजरात हों, दोनों के लिए फायदेमंद है। जैसा कि मैंने बात को बताया कि जिल्द में निखार लाता है, जिसमें पानी की कमी को दूर करता है। हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर रहता है, जिस्म को ठंडा रखता है और वजन को भी कंट्रोल्ड में रखता है। खीरा खाने के क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं? जी हाँ, कुछ चीजें जरूर हैं जिनको आप मद्देनजर रख सकते हैं। ज्यादा खीरा खाने से पेट फूल सकता है या फिर गैस बन सकती है, और रात में ज्यादा खाने से आपका निजाम हाजमा जो है वो मुतासिर हो सकता है। इसलिए कम मकदार में रात को आप इसको इस्तेमाल करें, और हो सके तो इसको आप अवॉइड करें, नजरअंदाज भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, उन्हें एक कम मकदार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खीरे में चूंकि 95% पानी होता है और ये लो कैलोरी फूड है, डिटॉक्सिफायर है, तो ये सब तमाम इसमें सिफात मौजूद हैं, इसलिए इस खीरा खाने के बहुत सारे फायदे हैं इनके साथ साथ। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है जनाब, लेकिन क्या करें, वक्त रेत की मानिंद हाथ से फिसल जाता है। फिर भी काफी कुछ है खीरे में। तिब्बी फवाइद की अगर बात की जाए, अपनी गजा में इसको आप शामिल कर सकते हैं, और खास तौर पे गर्मी का मौसम है, खीरे को आप रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, प्याज, जो लोग प्याज खाते हैं वो टमाटर के साथ खीरा और ये सब, पुदीना वगैरह, काला नमक डालिए और जनाब फिर इसका रायता बनाइए, और चाहे किसी भी तरीके से इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत फायदे करता है। सैंडविच वगैरह में भी लोग इस्तेमाल करते हैं खीरे को, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जनाब खाने से, वो हमने आपको बता दिए। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। और अब पेश खिदमत है मुशायरा।
1: आज की शेरी नशिस्त बहुत ही मखसूस है, सिर्फ चंद दोस्त, चार दोस्त यहाँ मौजूद हैं, और तकदीम और ताखिर का कोई लिहाज नहीं, एक छोटे से दायरे में बैठे हुए। अब चूंकि आशफ्ता चंगेजी साहब माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि अता फरमाएं अपना ताला।
2: इज्जत अल्लाह, मैं अर्ज करता हूँ अफसर
1: जी, अता फरमाएं।
2: दिल डूबने लगा है, तवानाई चाहिए।
1: वाह वाह,
3: दिल डूबने लगा है,
2: दिल डूबने लगा है, तवानाई चाहिए। कुछ और मुझको जहरे शनासाई चाहिए।
1: वाह वाह,
2: कुछ और, दिल डूबने लगा है, तवानाई चाहिए। कुछ और मुझको जहरे शनासाई चाहिए। और कल तक थे मुतमईन के मुसाफिर हैं रात के।
1: वाह,
2: कल तक थे मुतमईन के मुसाफिर हैं रात के, अब रोशनी मिली है तो बीनाई चाहिए। कल तक थे मुतमईन के मुसाफिर हैं रात के, अब रोशनी मिली है तो बीनाई चाहिए।
1: बहुत अच्छा शेर, वाह
2: आदम, शुक्रिया। कल तक थे मुतमईन के मुसाफिर हैं रात के, अब रोशनी मिली है तो बीनाई चाहिए। और शेर अर्ज करता हूँ, अरमान था तुम्ही को के सब साथ में रहें।
1: वाह,
2: अरमान था तुम्ही को के सब साथ में रहें।

0: अब तुम ही कह रहे हो कि तन्हाई अरमान था तुम ही को कि सब
1: तन्हाई चाहिए,
0: अब तुम ही कह रहे हो कि तन्हाई चाहिए। तौफीक है तो सते सहरा भी देख लें, तौफीक है तो सते सहरा भी देख लें, ये क्या कि अपने घर की ही अंगनाई चाहिए, ये क्या कि अपने घर की ही अंगनाई चाहिए। और एक खास तौर पे एक शिरज कर रहा हूँ, बस पामाल मजमून है, लेकिन देखिए मैंने कहने की कोशिश की, शायद आप हजरात को पसंद होगा, कि हल्की सी इस जमाही से मैं मुतमईन नहीं, हल्की सी इस जमाही से मैं मुतमईन नहीं, बंदे कबा का खौफ क्या अंगनाई
1: चाहिए, अच्छा अच्छा
0: बंदे कबा का खौफ क्या अंगनाई चाहिए। और एक और गजल के तीन चार शेरत करता हूँ, मतलब है कि अकेले हम कहाँ कायल हुए हैं,
1: अकेले
0: हम कहाँ कायल हुए हैं, सभी गिरविदाए कातिल हुए हैं, अकेले हम कहाँ कायल हुए हैं, सभी गिरविदाए कातिल हुए हैं। और एक मजमून बतौर इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, रकीबों में नए शामिल हुए हैं, अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, रकीबों में नए शामिल हुए हैं, रकीबों में नए शामिल हुए हैं। और यही अंजाम होना था हमारा, यही अंजाम होना था हमारा, भला दरिया कभी साहिल हुए हैं, यही अंजाम होना था हमारा, भला दरिया कभी साहिल हुए हैं।
2: शुक्रिया,
0: अभी आदाब से वाकिफ नहीं, रकीबों में नए शामिल हुए हैं। और चले तो साथ में थे होश में थे, चले तो साथ में थे होश में थे, खुदा जाने कहाँ गाफिल हुए, खुदा जाने कहाँ गाफिल हुए हैं। और उसी पर तोहमते आवारगी क्यों, शेर अर्ज कर रहा हूँ, उसी पर तोहमते आवारगी क्यों, इधर हम भी बहुत जायल हुए, उसी पर तोहमते आवारगी क्यों, इधर हम भी बहुत जायल हुए हैं। और आखिरी शेर है शायद किसी लायक हो, कि बहुत सहमी हुई परछाइयां हैं, बहुत सहमी हुई परछाइयां हैं, सिपाही शहर में दाखिल हुए हैं, बहुत सहमी हुई,
1: बहुत उमदा शेर,
0: बहुत सहमी हुई
1: परछाइयां,
0: बहुत सहमी हुई आदत, बहुत सहमी हुई परछाइयां हैं, सिपाही शहर में दाखिल हुए हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये शेर अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आदाब से वाकिफ नहीं हम, रतीबों में नए और एक गजल के
1: जी
0: हुक्म जो सर अर्ज करता हूँ, मतलब कि मिले मिले न मिले कुछ गिला नहीं होता,
1: मिले
0: न मिले कुछ गिला नहीं होता, असर किसी का भी अब देरपा नहीं होता, मिले मिले न मिले कुछ गिला नहीं होता, असर किसी का भी अब देरपा नहीं होता, पुराने लफ्ज बरतते हुए झिझकता हूँ, पुराने लफ्ज बरतते हुए झिझकता हूँ, पुराने लफ्ज बरतते हुए झिझकता हूँ, फिराको वसल से मतलब अदा नहीं, फिराको वसल से मतलब अदा नहीं होता।
1: भाई
0: पुराने लफ्ज बरतते हुए झिझकता हूँ, फिराको वसल से मतलब अदा नहीं होता, अजीब रिश्ता है मिलने को रोज मिलते हैं, अजीब रिश्ता है मिलने को रोज मिलते हैं, जो होना चाहिए वो मौजजा नहीं होता, अजीब रिश्ता है मिलने को रोज मिलते हैं, जो होना चाहिए वो मौजजा नहीं होता। और तेरी खुशी के लिए ये भी झूठ बोलूंगा, तेरी खुशी के लिए ये भी झूठ बोलूंगा कि तेरे बाद कोई सिलसिला नहीं, कि तेरे बाद कोई सिलसिला नहीं होता, और ये महफिलों से जो बचता हूँ ये भी नाटक है, ये महफिलों से जो बचता हूँ ये भी नाटक है, अकेले रहने में नक्शे आना नहीं होता। और आखिरी शेर, किसी के साथ भी नारे लगाने लगता हूँ,
1: किसी के साथ
0: भी नारे लगाने लगता हूँ, जो पूछिए तो मुझे कुछ पता नहीं होता, किसी के साथ भी नारे लगाने लगता हूँ, जो पूछिए तो मुझे कुछ पता नहीं होता। और आखिरी शेर है कि अगर सलीके से कुछ फैसले किए होते, अगर सलीके से कुछ फैसले किए होते, जो रातों रात हुआ है हुआ नहीं।

0: बहुत अच्छे
1: अशोक चंगी जी साहब के बाद मैं जनाब विंद सागरी से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए।
0: शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ, जमीर बेचते अपना अमीर हो जाते, जमीर बेचते अपना अमीर हो जाते मगर निगाह में अपनी हकीर हो जाते। जमीर बेचते अपना अमीर हो जाते मगर निगाह में अपनी हकीर हो जाते। गुलों से दोस्ती करते, गुलों से दोस्ती करते तो खुशबुओं की तरह,
1: गुलों से दोस्ती करते तो खुशबुओं की तरह
0: हवा के दोष पर उड़ते सफीर हो जाते। गुलों से दोस्ती करते तो खुशबुओं की तरह हवा के दोष पर उड़ते सफीर हो जाते। चल देखें जो हादसात हमें और आजमा लेते,
1: जो हादसात हमें और आजमा लेते
0: तो हम भी संग पे खैची लकीर हो जाते। जो हादसात हमें और आजमा लेते तो हम भी संग पे खैची लकीर हो जाते। हवा साथ जो हादसात हमें और आजमा लेते तो हम भी संग पे खैची लकीर हो जाते। शेर देखें, हवाए शहर अगर छू के भी गुजर जाती,
2: हवाए शहर अगर छू के भी गुजर जाती
0: हमारे गांव के बच्चे शरीर हो जाते। हवाए शहर अगर छू के भी गुजर जाती हमारे गांव के बच्चे शरीर हो जाते। शेर देखें, ये हवस के कदमों की आहट अगर न पा जाते,
1: हवस के कदमों की आहट अगर न पा जाते
0: खंडर के सारे परिंदे असीर हो जाते। खंडर के सारे परिंदे असीर हो जाते। शेर देखें, जो हम भी बुझते चिरागों की लौ चुरा लेते,
1: जो हम भी बुझते चिरागों की लौ चुरा लेते
0: तो जुल्मतों के लिए एक नजीर हो जाते।
1: क्या अच्छा शेर का, वाह।
0: जो हम भी बुझते चिरागों की लौ चुरा लेते, जो हम भी बुझते चिरागों की लौ चुरा लेते तो जुल्मतों के लिए एक नजीर हो जाते। शेर देखें, इसमें काफी खास और ध्यान रखें। जो हम भी फिक्रो नजर की कमान में रहते,
2: जो हम भी फिक्रो नजर की कमान में रहते
0: तो हक की जंग में अर्जुन का तीर हो जाते। जो हम भी फिक्रो नजर की कमान में रहते तो हक की जंग में अर्जुन का तीर हो जाते। चल देखें कि हमारे शहर के शोला बयान तोहमतगर कुशादा जहन जो होते कबीर हो जाते। कि गुज़िश्ता ऐसी होती जो फुर्सतें हमको,
2: गुज़िश्ता ऐसी होती जो फुर्सतें हमको
0: तो अपने वक्त के एरिंद मीर हो जाते। जमीर बेचते अपना अमीर हो जाते मगर निगाह में अपनी हकीर हो जाते।
1: क्या क्या काफी हो, क्या क्या शेर
0: जी। एक गजल के और दो तीन शेर सुन लीजिए। गुमशुदा लम्हात की जंजीर लेकर आई है,
2: गुमशुदा लम्हात की जंजीर लेकर आई
0: गुमशुदा लम्हात की

0: जंजीर लेकर आई है, गम की परवाही अजब तासीर लेकर आई है।
1: क्या बात
0: है, गुमशुदा लम्हात की जंजीर लेकर आई है, गम की परवाही अजब तासीर लेकर आई है। गम की परवाही अजब तासीर लेकर, सर फिरी पागल हवा टूटी हुई दहलीज तक फिर वही खुशबू वही तहरीर लेकर आई है। फिर वही सर फिरी पागल हवा टूटी हुई दहलीज तक फिर वही खुशबू वही तहरीर लेकर आई है। शेर देखें डॉक्टर साहब कि मेरी रुसवाई किसे नीचा दिखाने के लिए,
1: मेरी रुसवाई किसे नीचा दिखाने के लिए
0: मेरे माजी से मेरी तस्वीर लेकर आई है। मेरे माजी से मेरी तस्वीर लेकर आई है। से देखे कि मौत मेरी जिंदगी को कैद करने के लिए एक बेआवाज़ सी जंजीर लेकर आई है। मकता इसमें देखे कि रिंद मेरी जात तो बेरब्त मंजर थी, मगर रिंद मेरी जात तो बेरब्त मंजर थी, मगर जिंदगी अपनी अलग तस्वीर लेकर आई है। जिंदगी अपनी अलग तस्वीर लेकर आई है, गुमशुदा लम्हात की जंजीर लेकर आई है, गम की पुरवाई अजब तासीर लेकर आई है। शुक्रिया बहुत।
2: क्या क्या शेर सुनाया जनाब दिन साहब आपने, और अब मैं जहमत कलाम दूंगा प्रोफेसर रुनवान चिश्ती को। चिश्ती साहब तशरीफ।
3: जी हाजिर हूँ, एक गजल पेश खिदमत है। अर्ज है कि वो जहर को अमृत कहते हैं जो चाहने वाले हैं बाबा, वो जहर को अमृत कहते हैं जो चाहने वाले हैं बाबा, चूमेंगे नशे में हर गुल को गो होंठ पे छाले हैं बाबा, चूमेंगे नशे में हर गुल को गो होंठ पे छाले हैं बाबा। सैलाब तो आया और गया लेकिन है अजब घर की हालत,
1: लेकिन है अजब घर की हालत
3: बिखरे हुए कच्चे कमरे में बोसीदा रिसाले हैं बाबा। सैलाब तो आया और गया लेकिन है अजब घर की हालत, बिखरे हुए कच्चे कमरे में बोसीदा रिसाले हैं बाबा। इंसान के सरों के नजराने चढ़ते हैं यहाँ सजदों की जगह, कमाल साहब आपकी तरफ चाहता, इंसान के सरों के नजराने चढ़ते हैं यहाँ सजदों की जगह, ये किसके माबिद हैं साईं, ये किसके शिवाले हैं बाबा। इंसान के सरों के नजराने चढ़ते हैं यहाँ सजदों की जगह, ये किसके माबिद हैं साईं, ये किसके शिवाले हैं बाबा। तूफान से अगर बचने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, इंसान के सरों के नजराने चढ़ते हैं यहाँ सजदों की जगह, ये किसके माबिद हैं साईं, ये किसके शिवाले हैं बाबा। तूफान से अगर बच निकले हम फिर आन मिलेंगे अपनों से, तूफान से अगर बच निकले हम फिर आन मिलेंगे अपनों से, ये घर ये किताबें ये बच्चे अब तेरे हवाले हैं बाबा। तूफान से अगर बच निकले हम फिर आन मिलेंगे अपनों से, ये घर ये किताबें ये बच्चे अब तेरे हवाले हैं बाबा। इतना तो कभी इससे पहले मगरूर तुझे देखा ही नहीं, इतना तो कभी इससे पहले मगरूर तुझे देखा ही नहीं, इंसान नुमा कुछ सांपों के क्या डंक निकाले हैं बाबा, इंसान नुमा कुछ सांपों के क्या डंक निकाले हैं बाबा। अगर इजाजत हो तो चंद शेर गजल के और
2: नहीं साहब, मैं तो गुजारिश करने वाला था आपसे।
3: अर्ज करता हूँ कि ये सच कहने में रुसवाई नहीं है,
0: سچ کہنے میں رسوائی نہیں ہے
3: وہ دشمن ہے میرا بھائی نہیں ہے، یہ سچ کہنے میں رسوائی نہیں ہے۔

0: वो दुश्मन है मेरा, भाई नहीं है। लड़ाई हश्र तक जारी रहेगी,
1: लड़ाई हश्र तक जारी रहेगी।
0: उसूलों की ये पसपाई नहीं है, लड़ाई हश्र तक जारी रहेगी। उसूलों की ये पसपाई नहीं है आगा, लड़ाई हश्र तक जारी रहेगी। उसूलों की ये पसपाई नहीं है, और उसे एजाज देना चाहता हूँ। चंगेज साहब आपकी खिदमत में आपने लफ्ज सिपाही इस्तेमाल किया था, मैंने भी कर लिया है। अर्ज करता हूँ कि उसे एजाज देना चाहता हूँ, सिपाही हो के बलवाई नहीं है। उसे एजाज देना चाहता हूँ, सिपाही हो के बलवाई नहीं है। नहीं आता है मेरे घर में सूरज,
1: नहीं आता है
0: मेरे घर में सूरज। है सब कुछ इसमें अंगनाई नहीं है, है सब कुछ इसमें अंगनाई नहीं है। चलो हमने ही अपना घर जलाया,
1: चलो हमने ही अपना घर जलाया।
0: कोई हमसाया बलवाई नहीं है, चलो हमने ही अपना घर जलाया। कोई हमसाया बलवाई नहीं है। ये कैसा शहरे नापुरसा है लोगो,
2: ये कैसा शहरे नापुरसा है लोगो।
0: यहाँ सच्चों की सुनवाई नहीं है, यहाँ सच्चों की सुनवाई नहीं है। और मकता है कि मकते में आप पढ़िए, सुखन गुस्तराना बात नहीं है बल्कि रोए सुखन किसी की तरफ हो तो रूसिया। अगरचे बोलता है वो भी उर्दू, मगर लहजे में सच्चाई नहीं है,
2: गुजारिश है कि यह फजल लौट
1: जी
0: इनायत। इसमें एक लफ्ज नहीं आया है तो गोया इसको एक मुर्दा लफ्ज था जिसे मतलूक करार दिया था, असातजा ने उसको जिंदा करने की कोशिश की है। ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के एक शायर हैं जॉन एलिया, उनके यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद मतलब हिंदुस्तान के शौरा ने भी इसको जिंदगी देने की कोशिश की, तो मैंने भी कोशिश की है। खिली है धूप सर पर साहिबा नहीं, खिली है धूप सर पर साहिबा नहीं, कहीं दुनिया में अब जाए अमान नहीं। ये सच्चाई है अंदाजे बयान नहीं, वहाँ कोई नहीं है मैं जहाँ नहीं। ये सच्चाई है अंदाजे बयान नहीं, वहाँ कोई नहीं है मैं जहाँ नहीं। और परिंदों की तरह हिजरत न करना, जमीन नहीं उस तरफ या आसमान नहीं। परिंदों की तरह हिजरत न करना, जमीन नहीं उस तरफ या आसमान नहीं। शेर पेश करता हूँ कि ये दश्ते गम ये बच्चे और ये प्यास, मियाँ दरिया पे क्या कोई जवान नहीं। ये दश्ते गम ये बच्चे और ये प्यास, मियाँ दरिया पे क्या कोई जवान नहीं। अर्ज करता हूँ कि मैं इस कारण से जिंदा हूँ अभी तक, सिपाही मेरे घर के पासबा नहीं। खुद अपने दिल में रहता है अजल से, वो आवारा सही बेखानमा नहीं। खुद अपने दिल में रहता है अजल से, वो आवारा सही बेखानमा नहीं। खिली है धूप सर पर साहिबा नहीं, कहीं दुनिया में अब जाए अमा नहीं। आपके हुक्म की तामीर होगी, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अब जनाब कमाल अहमद सिद्दीकी साहब से दरखास्त है, जो इस मुशायरे की निजामत भी फरमा रहे हैं, कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब कमाल अहमद सिद्दीकी साहब
2: आइए। तामीर हुक्म में पेश कर रहा हूँ कुछ अशआर, मुलाजा फरमाए। रोज नौखेज तमन्नाओं का आता है खराज, रोज नौखेज तमन्नाओं का आता है खराज। ख्वाब का मुल्क जो तस्खीर किया है मैंने, रोज नौखेज तमन्नाओं का आता है खराज। ख्वाब का मुल्क जो तस्खीर किया है मैंने, एक एक लम्हे की रुदाद लिखी है ऐसे,
1: एक एक लम्हे की रुदाद लिखी है ऐसे,
2: एक एक लम्हे को जंजीर किया है मैंने। एक एक लम्हे को जंजीर किया है मैंने, एक एक बल्ब नजर आया।

मोहम्मद रफी की आवाज में तमिलिशात प्रोग्राम की पहली पेशकश थी बॉयफ्रेंड फिल्म से। हसन जयपुरी ने इस नगमे को कलमबंद किया। मौसीकी शंकर जयकिशन की थी और जहां तक फरमाइशों की बात है तो जनाब पहला ईमेल आज के तमिलिशात प्रोग्राम में शामिल हो रहा है जयराज प्लॉट राजकोट से। मधुसूदन भट्ट, जैस्मीन भट्ट और आरती भट्ट का इसी नगमे को सुनना चाहते थे हमारे बहुत सारे सामीन। थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे क्योंकि एक झड़ी सी लग जाती है जैसे 10:30 बजते हैं। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी और ही फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है। कार्टर रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे का। और आप हैं कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी। और इसी नगमे को सुनना चाहते थे उबरकोट मौला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और ये फरमाइश है रघुवी नगर से दिलावर खान हसीना बानो अलीजा नायाब की। और आप हैं टावर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, साथ में बिट्टा बजाज। और ये फरमाइश मौसूली कैथल हरियाणा से हमारे सामने जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। और आप हैं अलीगढ़ डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश की थी इस नगमे की टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा ने। बड़ा खूबसूरत ईमेल आप भेजते हैं रंग बिरंगा और खास बात यह है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू का इस्तेमाल भी आप करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, ये मोहब्बत है आपकी। वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। और अगला ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हो गया, इसको साइडलाइन करना पड़ेगा जनाब। रेलवे रोड गंज डंडवारा से फरमाइश की थी मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी ने। और आप हैं मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, साथ में संजीव जैन। और करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी और ये फरमाइश आई है गंडा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया की। और इसी नगमे को इंजॉय कर रहे थे मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। और अब आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शहीद फिल्म का नगमा और मौसीकी और नगमा निगार हैं प्रेम धवन। तो ये पहले नगमा सुन लेते फिर उसके बाद आपके बहुत सारे नाम शामिल करेंगे। और इससे पहले कि नगमा आपके समातों की नजर हो एक बात और कहना चाहेंगे, आज का तामिल इशाद प्रोग्राम जारी रहेगा शब के 11:00।

मोहब्बत एक खुशबू है जनाब, उड़कर आपके महबूब तक पहुंच जाएगी और जरूर उसे अंदाजा हो जाएगा कि आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जैसा कि हम समझते हैं आप हमसे और उर्दू सर्विस से कितनी मोहब्बतें करते हैं, उसकी वजह ये इतने सारे ईमेल्स आते हैं और कभी कभी वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते सभी। कोशिश तो रहती है जनाब ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जाए, लेकिन क्या करें, जैसे ही 10:30 बजते हैं बस लोगों की उंगलियां हरकतें करने लगती हैं। और यूं कहें कि जैसे मौसीकी के तार पर कोई अपना सांस छेड़ देता है, वैसे उंगलियां भी वही हरकतें करती हैं और बड़ी खूबसूरत एक धुन बन जाती है आपकी उन उंगलियों से। चलिए तो जनाब वक्त जाया न करते हुए नाम शामिल कर लेते हैं। इस नगमे को पसंद किया था कस्बा गरवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिन नाज और मुस्कान आसिफ ने, और आप हैं कादरगंज रोड गंज डंडवारा से शादाब शमशाद अंदरी खानम सारा फातिमा शेख, और ये फरमाइश आई है एन फारूक शेख शमा परवीन बेबी मुस्कान की गणेशपुर गंज डंडवारा एटा यूपी से, और मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसल मोहम्मद हसैन पवार हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। इसी नगमे को सुनना चाहते थे किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास आशा देवी और भानु प्रिया, और ये

0: ऐसे ही चंद खूबसूरत नगमों का सिलसिला जारी रहेगा तमिल इरशाद प्रोग्राम में। फिलहाल तो वक्त हुआ है खबरें बड़े सगीर से कि उर्दू न्यूज बुलेटिन का, तो आइए सुनते हैं उसके बाद उर्दू सर्विस से आपका पसंदीदा प्रोग्राम तमिल इरशाद जारी रहेगा।
1: ये आकाशवाणी है बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जुनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। आठवीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकत दारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासी, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफजान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और अवाम से अवाम के माबेन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीक की। डॉ जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन चार साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और यह जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रूनुमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के कयाम के 75 साल का जश्न मनाया था। मगरबी बंगाल की खवातीन और बच्चों की नशोनुमा और समाजी बहबूद की वजीर अग्निमित्रा पॉल ने सिलीगुड़ी में आज आला सतह की इंतजामिया जायजा कमेटी की मीटिंग की सदारत की। अपना ओहदा संभालने के बाद मोहतरमा पॉल ने यह शुमाली बंगाल के खित्ते का पहला सरकारी दौरा है। तबादले ख्याल में बल्दियाती उमूर, खवातीन और बच्चों की नशोनुमा, समाजी बहबूद, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त, सफाई सुथराई, नालियों की सफाई, कूड़े का बंदोबस्त, ट्रैफिक से मुतालिक जवाबित और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी जेर बहस आए। बाद में मीडिया से खताब करते हुए मोहतरमा पॉल ने कहा कि जल्द ही दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कम्पोंग और सिलीगुड़ी को 5 हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने इन कस्बों की तामीर के लिए ताउन देने की बात कही है जिससे सियाहत, तजारत, सनात और इलाकाई मईशत को फरोग मिलेगा। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जय पर अमल आवरी करने वाली 36वीं रियासत बनने के लिए

तैयार है। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम है। सेहत से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार रियासत में ABPMJAY पर अमल आवरी के सिलसिले में कल एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करेंगे। इस मुफाहमत नामे पर नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मसावी और काबिल रसाई हिफजान सेहत की हसूलियाबी की जानब सफर में यह मुफाहमतनामा एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने का आज आखिरी दिन है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोर्टल आज आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तालिब इल्मों से कहा है कि वक्त खत्म होने से पहले पहले अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि रियासती हुकूमत बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सभी जरूरी इकदाम कर रही है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि इस साल मामूल के मुताबिक 92% बारिश की पेशगोई के बावजूद मराठवाड़ा के कुछ अजला, मगरबी विदर्भ, शुमाली महाराष्ट्र और दीगर मकामात में एल नीनो के असरात की वजह से खुश्कसाली से मुतासर इलाकों में बारिश कम होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को मौसम की बदलती हुई सूरत हाल से निपटने में मदद के लिए वक्तन फवक्तन एडवाइजरी जारी कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी की मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मौके, इख्तराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नजरिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत, जिसकी कदर फिल वक्त तकरीबन 9 अरब अमरीकी डॉलर है, तवक्को है कि अगले 7 से 8 बरस में बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर हो जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून शुमाल मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों, पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, जेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकामात पर तेज और इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की सी मुतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हबस से कुछ राहत मिली। कौमी अवार्ड से सरफराज मलयालम फिल्मों के अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 बरस के थे। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने कैरियर में उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में अदाकारी की। अपने मुनफरिद अंदाज में मजाहिया किरदारों को निभाते हुए सलीम कुमार ने मजाह को एक इम्तियाजी जहत अता की। उन्होंने 2010 में बेहतरीन अदाकार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और स्टेट फिल्म अवार्ड मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस अदाकार ने अपने उम्दा कैरियर में मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग किस्म के किरदार निभाकर अपनी गुनागुं और यादगार अदाकारी की तारीख रकम की है। मंगोलिया के उलान बातर ओपन में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपनी मुतासिर कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। 61 किलोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के असील को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को 0 के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया।
57 کلوگرام کے زمرے میں ویکی

0: मंगोलिया के गानबातार को सिफर के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिर्रिक, कुर्सियोंग, कम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालय शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जुनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शिमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम भी जारी है तामिल इरशाद। इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामिन की नजर।
2: 10 दिन बीत गए बैजू, मैं तो थक गई चलते चलते।
3: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
2: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
3: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आप में थोड़ा सा।
2: ये

ये मिजाइया नगमा आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी छुबंतर, नगमा निगार थे जानिसार अख्तर और मौसीकी थी ओपी नैयर की। तो जनाब इस नगमे को हमारे बहुत सारे सामीन ने पसंद किया था, उनके नाम भी शामिल करना चाहेंगे। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। और विजय चौहान, इंदुकर, तेजस्वी चौहान, अनिकेता, अनिकेत चौहान हैं, वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से इसी नगमे को सुन रहे थे। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले। अगला फरमाइशी मेल मौसूल हुआ सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का। और यह फरमाइशी ईमेल रघुवीर नगर दिल्ली से मिला है जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख और बीबी अलिस्बा शेख का। और आप हैं गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विकास बारासा और रोशनी बारासा और उनके बहुत सारे साथी। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी की फरमाइश लेवाई छत्तीसगढ़ से मौसूल हुई थी, इसी नगमे को सुनना चाहते थे। पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन कुम्हार गली कोलगांव से। और आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किशोर ताशुका। और आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश बत्ता का नेरा मोहल्ला पटियाला से आपकी फरमाइश हमें मिली। और इसी नगमे को सुन रहे थे कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक और साथ में निहारिका, सुशांत नायक। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल ले लेते हैं। बबलू शेख सगीर, शेख वजीर हैं और मोटाला महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश हमें मौसूल है। खान जी पीर उदयपुर से इस नगमे को सुनना चाहते थे, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अरशफ खान। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा आप तमाम सामीन की फरमाइश पर। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी हैं, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर और खुशबू, चरादा बार नवापारा अभ्यारण, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको साइडलाइन हम कर देते हैं और करना भी पड़ेगा। अगला ईमेल किसका है देख लेते हैं। विनोद वडलकर, वीणा वडलकर विविधा के साथ में है रायपुर छत्तीसगढ़ से। और सुयश गौड़, सुयश आशीष गौड़ इनका पूरा नाम है, तन्मय पूर्वी गौड़ और पवन गौड़ है, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से। गणेश वाड़ी कोल्हापुर से हैं, संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। अगले नगमे को आपकी नजर भी करते हैं। आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रेटा भाटिया और मयंक भाटिया। और बुरले मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां और अजीम खान। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं। हस्सू बाबा, मोहम्मद हसैन और शफिया अरहान खोकर हैं, धुनी वाले मार्ग खंडवा एमपी से। और दिलीप रामकर, हर्षरामकर, अक्षय रामकर की फरमाइश है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और शब्बीर मुल्ला जी हैं, बरगद बेल हुबली कर्नाटक से। और ये फरमाइश आई है उन दोस्तों की जो हो गए हैं शामिल। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा खानम और रईसा और उनके बहुत सारे साथी। तिवर्ता छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं। एक और ईमेल

जी आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में आर पार फिल्म का नगमा ओपी नैयर की मौसीकी में। इस नगमे की फरमाइशें शामिल करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद।

पार पार फिल्म का ये नगमा किस किस ने पसंद किया था वो भी बताना चाहेंगे। बुल्लाना वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा तैमानकर और श्लोक कुमार इसी नगमे को सुनना चाहते थे। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने और पी एस नहावकर और उनके कुछ और साथी, रमेश कटांकर, वैशाली कटांकर, धनंजय की फरमाइश थी गांधी बाग अकोला से और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और साथ में थे सुरीत रमेश साहू और ये फरमाइश ईमेल गांधी रोड गंज टंडवारा से मिला मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद और मुन्ने सलमानी का और आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से इसी नगमे की फरमाइश की थी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और अहले खाना ने और आप हैं नंद किशोर घटे, अंजलि करवा और बाबा बाला साहेब करवा, बीड शहर महाराष्ट्र से और यवतमाल से फरमाइश आई अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे की इसी नगमे को सुनना चाहते थे। एम ए वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी फुलोंग निजामबाद तेलंगाना से और अगला ईमेल मौसूल हुआ जुम्मा नगर खंडवा से अल्तमश समीना और मुदस्सर का और आप हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, साथ में जाहिरा बेगम अंसारी इस्लामाबाद गंज टंडवारा से और अगला फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ राजनगर कांति निकेतन से। हमारे सामने कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रानी मुकेश गुप्ता और अगला ईमेल भी रिपीट है, इसको करते हैं जनाब साइडलाइन और ये हैं देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत मानेवाड़ा रोड नागपुर से और इसी नगमे की फरमाइश की थी अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सबाहत ने सांगली जत शहर से और अगला नगमा अब आप तमाम सामेन की नजर किया जाएगा और आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंद्रा कुमार और बिट्टू कुमार और आज का जो मुशायरा था आपने सुना और उसमें उनवान चिश्ती की जो शायरी थी इनको पसंद आई, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका और आपकी ये जो राय है हम मुतालिका महकमे तक जरूर पहुंचाएंगे और हम दिगर सामाइन से भी कहना चाहते हैं आप हाँ उर्दू सर्विस के जितने भी प्रोग्राम सुनते हैं उनके मुतालिक अपनी राय हमें जरूर इरसाल किया करें और उसके लिए पता यही रहेगा जिसपे आप तामिली शायद प्रोग्राम के लिए

रिहायशी भेजते हैं, सिर्फ इतना उसमें लिखना होगा आपको प्रोग्राम इंचार्ज, और बाकी वही ईमेल है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। बहुत शुक्रिया नीलू साहिबा। और अगला ईमेल मिला है बबलेश पवार डैनी पवार मास्टर मनीष का गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा और मंगल जनागल, रोशनी जनागल अंकुर की फरमाइश है श्री गंगानगर राजस्थान के MD पतरोड़ा से, और यह फरमाइश ईमेल वैशाली शैलेश गोहनकर, सुमित गोहनकर, ध्वनि गोहनकर परिका है आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से, छिपा कॉलोनी खंडवा से अगला नकमा सुनना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और साथ में अयूब खत्री, और ये फरमाइशी ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी हमने कर दिया है रन आउट। जॉन डिकेस्टो रोजी के साथ में, विलिस डिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से, और तालुका निवासक खोपटी से फरमाइश की है बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़ ने, और बड़े गैबी चौराहा वाराणसी से हमारे बहुत पुराने सामे अरुण कुमार मालवीय दर्द और साथ में उनके अहले खाना, इसे नखमे को सुनना चाहते हैं इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गेडी झारखंड से, और अगला ईमेल मास्टर नईम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी नईम रजा सिद्दीकी का पश्चिम थोक गंज डंडवारा से, और कृष्णा कॉलोनी हासी सुभाष योगी राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू आसिफ शेख, साथ में उनके मोहम्मद नोमान शेख और मोहम्मद सुलेमान शेख हैं गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से, ये फरमाइश आई है जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल के, बहुत सारे नाम शामिल हो गए। अब बारी है एक नगमे की, और ये नगमा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है जबक, चित्रगुप्त की मौसीकी और नगमा निगार प्रेम धवन।

और वैसे सबक फिल्म के इस नगमे को आपने भी पसंद किया। आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव और कोमल यादव सिमगा छत्तीसगढ़ से। नथु राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिरा शर्मा की फरमाइश मंडी हरजी राम मलोट से मिली है। अगला ईमेल मिला है सिद्धेश में यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोदा रामटेके और शिव्या रामटेके का। आप हैं वाडी खामगांव से अनंता वाडी, रामेश्वर वाडी, शुभम और उनके बहुत सारे साथी गांव।

0: इसी हिसाब से फरमाइश की थी राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। इसी नगमे को सुन रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तृप्ति साहू।
1: ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही
2: वही वही वही वही
1: वही वही वही वही वही।
0: अब आपको सुनाते हैं आधी रात के बाद फिल्म का नगमा रफी, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। चित्रगुप्त की है मौसीकी और इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद है। नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव, इमाम मंजिल गिरडी झारखंड से फरमाइश की हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम ने। अगला नगमा आपकी नजर करते हैं। आप हैं वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे और अगला मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और दिव्यांशी विश्वकर्मा, रश्मि जरना और भरत कुमार की फरमाइश है। राजकोट गुजरात से एक नाम का इजाफा है इसमें, भरत कुमार आपका भी वेलकम है जनाब इस प्रोग्राम में। अगर महाराष्ट्र से गजानंद कुमार, पद्मावती कुमार साथ में मधुरा इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। सिडको छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामग और अंजलि सुनील और ये फरमाइश आई है। गांव कुमार हेड़ा से सैयद मसरूर हैं सहारनपुर से, शाइना हसन भी साथ में, नाजिया और उनके कुछ और साथी, और आप हैं अहमद भाई फूल वाले, जूही इकबाल, इमरान अहमद, छोटे बलिया करजत मुंबई से। अगला ईमेल है रिपीट, इसको भी वही करना पड़ेगा जो ट्रीटमेंट दूसरे ईमेल्स का हुआ है। और ये ईमेल मौसूल हुआ है बाजार रोड मोंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूर, कमरुनिसा, शबिस्ता और उनके अहले खाना। और अगला ईमेल नसवारा चौक मलकापुर से मिला है, संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से बचकमल, डॉक्टर बसंत बिरगो, मोतीलाल यादव और मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु की फरमाइश भी है। गाना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीत जस्सी, गीता और उनके अहले खाना। और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश है राष्ट्रपाल गजभिये, राजिका गदभिये और अनिश्का गजभिये की। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। गुजरात के गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, साथ में प्रथम सोनी। और अजमेर शरीफ से फरमाइश आई है गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी की। इसे नगमे को सुनने के मुंतजर राहुल मनवर, सल्ला मनवर, बी प्रियांशी यवतमाल से। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की हरविंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा ने। आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू और सीमा साहू पोटिया कला दुर्ग से। और अगला ईमेल गांव लोगर ठाकुरावाला से मिला है, फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और साथ में हैं उनके राजदीप और उनके कुछ और साथी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। किशोर नगर अमरावती से हिरमन शिंदे, शीला देवी शिंदे और उनके अहले खाना। और अगला ईमेल दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मिला है मेरठ कैंट से, और एक नहीं कई सारे नगमों की फरमाइश आपने भेजी है। पटेली रोड गंज टंडवारा यूपी से एम खलील कुरेशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा और अहले खाना। अस्तुपुरा जिला मऊ से इस नगमे को सुनने के मंतजर हैं मदर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी साहू लच्छनपुर के छत्तीसगढ़ से। और दत्तरिंगी भाटापारा से फरमाइश की हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन्मणि वर्मा ने। और मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल हैं नर्मदा पाक मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश आई है पुरानी भिलाई 314 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेग हमीदुल सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी की। और जो मुशायरा तामिर इरशाद प्रोग्राम से पहले सुनवाया गया वो भी आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए जनाब बहुत शुक्रिया आपका। और ये फरमाइशी ईमेल मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक के साथ में गव्या मल्होत्रा और पुरातला ब्रह्मा से वलीउल्लाह अंसारी, असमन अंसारी, साथ में मोहम्मद सुल्तान अंसारी।

0: के दो तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से हजारे खतर किलो हर्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए आप सुनिए जिया मोहिद्दीन डागर का सरस्वती वीणा पर बजाया राग मियां की मल्हार।

इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं। शब के 12:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप तनवीर से खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका की ओहियो रियासत के टोलिडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाकये में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तश्वीशनाक है। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफद आज 2 रोजा दौरे पर असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगा। इस दौरे का मकसद भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वजीर खारजा डॉ जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासी, दिफाई, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और आवाम से आवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की भी तौसीख की। डॉ जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और यह जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रूनुमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बाराक को अक्वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एजाज मेजर बाराक की मिसाली खिदमात और अक्वामे मुत्तहिदा की कयाम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ है। जनाब मोदी ने कहा कि मोहतरमा बाराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बाराक फिलवक्त लेबनान में अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम अमन के मिशन में एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज न्यूयॉर्क में मुनक्किदा एक तकरीब में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एजाज से नवाजा। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने बैनुल अक्वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन, इमारतों की तामीर और इमलाक की खरीदो फरोख्त पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया है। जनाब अमित शाह ने त्रिपुरा के सरहदी इलाकों के ताल्लुक से बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यह हिदायत दी गई। वजीर दाखला ने यह हिदायत भी जारी की है कि पिछले 5 साल के जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। जनाब अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मनुष्यात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। 12वीं जमात के इम्तहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरखास्त देने का कल आखिरी दिन था। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने तालिब इल्मों से कहा है कि वो वक्त खत्म होने से पहले पहले अपनी दरखास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। कौमी अवार्ड से सरफराज मलयालम फिल्मों के अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 बरस के थे। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में अदा

0: अधिकारी की। अपने मुनफरिद अंदाज में मजाहिया किरदारों को निभाते हुए सलीम कुमार ने मजाह को एक इम्तियाजी जहत अता की थी। उन्हें 2010 में बेहतरीन अदाकार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और स्टेट फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। अमेरिका की ओहियो रियासत के टोलिडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाकये में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत तशवीशनाक है। मुकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब हुई। ये दो रोज तक जारी रहने वाला सालाना फेस्टिवल है, जो मौसीकी के प्रोग्रामों और तारीखी मुकामात की सैर के लिए जाना जाता है। टोलिडो के डिप्टी पुलिस चीफ जो हेफरमैन ने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि दो अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अगली दहाई के दौरान तेल की आलमी मांग में इजाफे में तकरीबन आधा भारत की तरफ से होगा, जबकि बिजली की आलमी खपत में इजाफे का 15% हिस्सा भारत का होगा। सेंट पीटर्सबर्ग बैन अल-अक़वामी इक्तिसादी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट के सरबराह इगोर सेचिन ने कहा कि 2035 तक भारत की तेल की खपत में 44% तक इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है और इस तरह ये बढ़कर 80 लाख बैरल यौमिया तक पहुंच जाएगा। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफद दो रोजा दौरे पर आसाम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगा। इस दौरे का मकसद भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। इस दौरान बातचीत उन शोबों पर मरकूज होगी जिनमें यूरोप और शुमाल मशरकी भारत की मुश्तरका दिलचस्पी है। इसमें काबिले तजदीद और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, पायदार शहरी बुनियादी ढांचा, सेहत के खिदमात और दवासाजी के सनअत शामिल हैं। वफद में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सफीर और सीनियर नुमाइंदे शामिल होंगे। वफद की क्यादत भारत और भूटान में यूरोपीय यूनियन के सफीर हर्फ डेल्फिन करेंगे। दौरे के दौरान ये वफद आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात करेगा। इसके अलावा भारत में यूरोपीय कारोबारी इदारों की फेडरेशन की क्यादत में एक तजारती वफद भी रियासत के हुक्काम से मुलाकात करेगा। मंगोलिया के उलानबातर ओपन में भारतीय पहलवानों के ने आज भी अपनी मुतासिरकुन कारकिर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते। 61 किलोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के असैल को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को 0 के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया। वहीं 57 किलोग्राम के जुमरे में विकी ने मंगोलिया के गानबादर को 0 के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया है। अमेरिका की ओहियो रियासत के टोलिडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हवाई गोलियां चलने के एक वाकये में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफद आज दो रोजा दौरे पर असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगा। इस दौरे का मकसद भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय।

0: पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political,

आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार मध्य रात्रि के 1:10 गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों के, आपको दिल तक आपके पहुंचते हैं और इस सफर में हम साथ रहते हैं। तो चलिए पुराने नगमों की फहरिस्त आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहला गीत मन्ना डे की आवाज में आपके लिए आ रहा है।

फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अब आइए सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी का स्वर है और फिल्म हीर रांझा से अगला गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे, उन यादों को ताजा कर रहे हैं इन गीतों के जरिए। अगली आवाज मोहम्मद रफी की सुनवा रहे हैं आपको, आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

अब आइए सुनते हैं फिल्म प्यारा दुश्मन से रफीक सागर की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी और बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने।

अभी आपने सुना इतना चुलबुला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत से पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आपको सुनवाते हैं अगली आवाज किशोर कुमार की।

अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए आ रहा है, जिसमें आप सुनेंगे आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी, भूपेंद्र व अन्य आवाजों में। ये गीत

राज की बातें सरे महफिल किसी से क्या कहें, सामने आ जाएगा सब, हम अभी से क्या कहें।

0: हिंद की। फिल्म जेल यात्रा से आप सुन रहे थे इस गीत को, आरडी बर्मन का संगीत था। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों

यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डाउकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। अनिर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया है कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू।

0: इन गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि बस खो जाओ, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा। यहीं खत्म होता है नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और अब होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी।

0: तो लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लाविओ कोवोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व के 3रे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर खेले गए 4 घंटे 20 मिनट के मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। द 8th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. A high-level delegation from the European Union will arrive in Guwahati, Assam today for a 2-day visit.

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बज चुके हैं, अभी सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय के 4:20 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आज सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें आज आप सुनेंगे शेर गाजीज एस गोविंद राजन का रागम कल्याणी में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म में शेर गाजी एस गोविंद राजन का रागम कल्याणी में

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की हुई, ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज का विषय होगा अश्वथासन और तितली क्रिया। 5:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम स्वरंजनी में आज आप सुनेंगे नितिन शर्मा का राग ललित में गायन। इंद्रप्रस्थ पर सुबह 6:10 का वक्त होगा कार्यक्रम वंदना का, और जिसमें आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत। 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। छह बजकर पचपन मिनट पर आपके लिए लेकर आएंगे संस्कृत में समाचार। 7:10 का वक्त होगा संगीतिका का, और 7:30 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 हिंदी में समाचार और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आपके लिए होंगे उर्दू में समाचार और 8:45 पर स्वरगंगा में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 9:15 पर आज के लिए हमारे मेहमान कार्यक्रम में एक स्पेशल पेशकश होगी। 866.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ

जन काया पलट खाए मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बह पड़े उपकारी ऐसे दीन दयाल सतगुरु मेरी पीरी दे मालक छेवे पातशाह धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना नाल मना रहियां हन यथा शक्त पेटावा अर्पण कर रहियां हन सतगुरु जी मेहरामत करनी सर्वत साध संगत दियां हाजरियां तिल फुल पेटावा दर ते प्रवान करनियां अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा नाम दान बख्शना यात्रा सफला करनी सतगुरां दे गुरता गुरपुरब दी खुशी अंदर बेअंत संगता दिने 9 बजे तो लैके 12 बजे तक सुंदर जलाओ सजा रहियां हन शाम नूं

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: श्लोक महला पहला जे हुआ का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्याणी है पितरी चोर करे बढ़िया हाथ दलाल के मुस्तिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे वाला पहला
1: ज्यों जोरू सिर नावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित

परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नाल का ज्यों तेल पड़ी।

पौड़ी आपे ही करना क्यों कला आपे ही पे तारी है। देखे किताब पढ़ा अंदर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब को ही आई वारी है। जिसके जी प्राण है जो सोए मन विसारी है, आप रखिए अपना आपे ही का स्वर।